0: जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि 30 दिवसीय योग शिविर में आप नित प्रतिदिन आकर के योग आसन प्राणायाम सभी मिलकर के करते होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नित प्रतिदिन हम एक आसन एक प्राणायाम को जब हम करते आ रहे हैं तो एक शब्द की उत्पत्ति के साथ में हम करते आ रहे हैं, साथ ही साथ उस शब्द के बारे में हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी देते आ रहे हैं जो कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। तो आज जिस हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे वह है उद्गीत। लेकिन उद्गीत प्राणायाम के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे आयुष्मान उद्गीत। अब आयुष्मान उद्गीत कैसे आयुष्मान बना, हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आयुष्मान के बारे में। आयुष्मान नाम का लगभग लंबे जीवन के साथ ही धन्य होता है। इसका जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे शब्द अर्थ होते हैं। अपने बच्चे को आयुष्मान नाम देने से पहले उसका अर्थ जान भी लेना बहुत ही अच्छा होता है। कई बार आपने देखा है कि कई बच्चों के नाम आयुष्मान होते हैं। तो आपको पता है कि आयुष्मान का अर्थ क्या होता है? आयुष्मान का मतलब होता है नाम के लोगों को समाज में भी बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन आयुष्मान का अर्थ होता है दीर्घ आयु, यानी कि आयुष्मान राशि का नाम उन्हीं लोगों पर सूट होता है, रखा जाता है जो कि इसके लिए बने होते हैं। आज आयुष्मान का अर्थ हम आपको बताने जा रहे हैं। आयुष्मान का अर्थ होता है जिसकी आयु बहुत ही दीर्घ हो। आयुष्मान नाम के व्यक्ति जो होते हैं वह साहसी, आत्मविश्वासी, साहसी होने के कारण वो जोखिम के सारे काम भी उठाते हैं। साथ ही साथ आयुष्मान का जो अर्थ है वह शाब्दिक अर्थ है। आयुष का अर्थ भी लगभग यही होता है कि लंबा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। यह भारत में एक लोकप्रिय नामों में से एक है आयुष्मान, जिससे योग की भाषा में अगर हम कहें कि लंबे जीवन के साथ ही धन्य होता है। लंबा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण किसको नहीं पसंद है? सभी लोगों को लगता है कि हमारा ऐसे ही स्वास्थ्य अच्छा रहे, लंबा जीवन रहे और कल्याणकारी रहे। तो इन सब के लिए योग की भाषा में हमने जोड़ा आयुष्मान उद्गीत प्राणायाम। अब उद्गीत प्राणायाम आयुष्मान कैसे बना, हम सबसे पहले उद्गीत प्राणायाम के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर के जानते हैं और साथ में करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम को करने से पहले हम उस प्राणायाम के बारे में जान लेते हैं। यह प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ियां, पल्स गति, श्वास प्रश्वास गति, अमंजन और खपत तथा निरंतर उत्पन्न हुए पसीने में कमी आती है। इसका उपयोग तनाव प्रबंधन में भी किया जा सकता है। तनावग्रस्त, निराश, हताश व विक्षिप्त व्यक्ति को इसके अभ्यास से बल मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं उद्गीत क्या है। सबसे पहले हम बता दें, उद्गीत का अर्थ है ऊंचे स्वर में या फिर श्वास की ऊपर नीचे की गति को जो कि वर्णित अवस्था में पाई जाती है। उद्गीत प्राणायाम जो है, हम जानेंगे इस अभ्यास को करने के लाभ, तरीका और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। उद्गीत प्राणायाम को ओमकारी शब्द भी और जाप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अभ्यास के दौरान ओम का जाप किया जाता है। यह एक बहुत ही सरल प्रकार का प्राणायाम है, जिसका अभ्यास करते समय अगर सही ढंग से ध्यान लगाया जाए तो इसके कई तरह के शारीरिक और मानसिक लाभ भी आते हैं। तो आइए आज हम सभी मिलकर के इस प्राणायाम के अभ्यास का तरीका और इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले

करने का तरीका यानी कि विधि हम आपको बताने जा रहे हैं और साथ में भी करेंगे। सबसे पहले आप योगा मैट पर पद्मासन की स्थिति या सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि आपकी योग स्थान का वातावरण बहुत ही शांत प्रिय होना चाहिए और साथ ही साथ अगर हो सके तो उसे सुगंधित भी कर लें। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमें कोई ऐसी जगह पर हम जाएं जहां पर बिल्कुल एकांत हो। हम कहीं भी किसी प्राणायाम को करने के लिए वैसे वातावरण को बना सकते हैं। तो आइए दूसरे पॉइंट पर। अब दोनों आंखों को बंद करके गहरी सांस लें और इसे धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम का जाप करें। ध्यान रखें कि यह जाप आप उच्चारण कर रहे हो उसका ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित हो। शुरुआत में यह प्राणायाम का अभ्यास 5 से 10 मिनट तक करें और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। सबसे महत्वपूर्ण की बात उद्गीत प्राणायाम में ये होती है कि यह ध्यान योग प्राणायाम से कुछ मिलता जुलता प्राणायाम है। श्वास की गति को कितनी बार मध्यम रखना है, कितनी बार तीव्र गति में जाना है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है। उद्गीत प्राणायाम में ओम के उच्चारण के साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि यदि किसी भी लोगों को ओम के उच्चारण करने से कोई पाबंदी है या कोई कुछ किसी प्रकार का अवलोकन, तो आप भंवरे का गुंजन भी कर सकते हैं कुछ इस तरह, श्वास भरते हुए

इसका मतलब ये हुआ कि श्वास को हम जितना हो सके अपने फेफड़ों में और पेट में भर लेंगे। उसके बाद की गति को हम बिल्कुल मध्यम गति से छोड़ते हुए श्वास को धीरे धीरे निकालेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि श्वास जब पूर्ण रूप से फेफड़ों से और पेट से खाली हो जाएगी तो हमारी आवाज भी उसी तरीके से परिवर्तित हो जाती है। इसको इस प्राणायाम को करने के लिए यानी उद्गीत प्राणायाम को करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो कि आज इसके साथ जुड़ा हुआ है वह है आयुष्मान उद्गीत। यह श्वास से निर्मित है, श्वास से बना हुआ प्राणायाम है। श्वास से बना हुआ प्राणायाम हम साथ साथ करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि यह प्राणायाम करने के लिए महत्वपूर्ण ये लगता है कि हम किसी भी प्राणायाम को उतने ही विश्वास से करते हैं। आइए अब हम जानते हैं, अभ्यास से पहले इन बातों पर जरूर ध्यान देना है। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते समय नाक से ही श्वास लेना और मुंह से ही श्वास लेने का प्रयास करें। जिन लोगों को नाक से खून आने की समस्या है उन्हें इस प्राणायाम का अभ्यास करने से बचना चाहिए। जिन लोगों को गंभीर हृदय रोग या फिर रक्तचाप की शिकायत है वे डॉक्टरी परामर्श से ही यह प्राणायाम कर सकते हैं।

रातों से और चिंता जैसी कई मानसिक समस्याओं से राहत दिलाने में कारगर है। अनिद्रा की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास करना लाभदायक है। यह प्राणायाम हृदय रोग, उक्त रक्तचाप और मिर्की जैसे गंभीर रोगों के जोखिमों को कम करने के लिए सहायक है। यह प्राणायाम एकाग्रता के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ मन को शांत और स्थित रखने में भी मददगार होता है। यह प्राणायाम त्वचा पर निखार भी लाता है। आइए इस प्राणायाम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। बेहतर होगा कि आप इस प्राणायाम का अभ्यास सुबह 8 बजे से पहले कर लें और इसके आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यह प्राणायाम का अभ्यास करते समय श्वास लेने और छोड़ने में अधिक जोर ना लगाएं और इस बात का ध्यान दें कि उद्गीत प्राणायाम करने के स्टेप सही हो, क्योंकि अभ्यास के दौरान थोड़ी सी भी गलती समस्या का कारण बन सकती है। इस अभ्यास को करने के लिए वातावरण का शुद्ध होना और बहुत ही अच्छे से अपने मन को एकाग्र करते हुए भी करना चाहिए। हो सके तो आप उस समय जिस समय उद्गीत प्राणायाम कर रही हैं, तो ढीले ढाले वस्त्रों का ही प्रयोग करें। तो ये था आज का आयुष्मान उद्गीत प्राणायाम। हर बार की तरीके से हमने आज भी एक नए शब्द की उत्पत्ति की है, क्योंकि उद्गीत प्राणायाम को आयुष्मान इसलिए बताया क्योंकि आयुष्मान का अर्थ हमने बताया दीर्घ व लंबी आयु, और उद्गीत प्राणायाम श्वास से निर्मित प्राणायाम है। तो यानी श्वास से चलेंगी तो ही लंबा और दीर्घ आयु यानी स्वास्थ्य और कल्याणकारी होगा। तो साथ ही साथ हमने आज उद्गीत प्राणायाम के फायदे सावधानियां भी बताई। इसी तरीके से दोस्तों, हम सभी नित सवेरे आकर के योग की पाठशाला में हर एक दिन एक नए शब्द के साथ प्राणायाम कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद, इसी श्रृंखला में कल हम फिर से मिलेंगे एक नए शब्द और एक नए प्राणायाम के साथ में। लेकिन अभी प्राणायाम के बाद में हम 10 से 15 मिनट योग मेडिटेशन यानी कि ध्यान योग साथ में करेंगे, और इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे एक नए शब्द, एक नए आसन प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, जो कि एक नामों के साथ में सीरीज चल रही है, योग के साथ में एक नाम को जोड़ करके। जैसा कि पहली सीरीज में हमने आपको बताया था नौकासन यानी कि अलौकिक नौकासन, उसी के साथ में एक नया नाम अब हम आज आपके सामने बताने वाले हैं, जो कि है प्रकाशमय वृक्षासन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। आपने देखा होगा कई बार जब हम कोई भी सीरीज देखते हैं, कोई भी पुरानी सीरियल्स को देखते हैं, कोई आध्यात्मिक सीरियल्स को देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जब घोर तपस्या करते थे तो वो पेड़ों पे जाकर के या फिर पहाड़ों पे जाकर के एक पैर पे खड़े होकर के इस आसन को करते थे, जो कि बहुत प्रचलित है, जिसका नाम वृक्षासन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यह वृक्षों की तरीके से सिर्फ सीधे खड़े रहना ही है। यह वृक्ष की तरह तो लगता है, लेकिन श्वास का लेना, निरंतर रूप से श्वास को कम करना, कैसे लेना है, क्या अंतर में कुछ ऐसी उपलब्धियां जिसे हम पाना चाहते हैं, कुछ ऐसी गतियां जिन्हें हम अपने रूप में उसे जानना चाहते हैं, ये सारी गतिविधि हमारे वृक्षासन के अंतर्गत आती है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वृक्षासन प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। सबसे पहले तो साधारण रूप में वृक्षासन होता है, दूसरा ध्रुव आसन जिसे भागीरथ आसन भी कहा जाता है, उसके बाद में द्वितीय प्रकार यानी कि क्रम पूर्ण एक आसन भागीरथ का दूसरा, ये सारे प्रकाशमय वृक्षासन के अंतर्गत आते हैं। वृक्षासन करने से पहले मैं बता दूं कि यह प्रकाश की तरीके से बहुत ही ज्यादा तेज और हमें रोशनी प्रदान करने वाला होता है। जिस तरीके से हम पेड़ों पे या फिर पहाड़ों पे पहुंचकर एक अलौकिक तेज को प्राप्त करते हैं, चारों तरफ एक रोशनी रोशनी, ठीक वैसे ही यह आसन को करने के बाद भी हमें अपने शरीर में कुछ इसी तरीके से अनुभूति होती है। वृक्ष के समान आकृति होने के कारण इसे वृक्षासन तो कहा ही जाता है। सर्वप्रथम समावस्था में हमें खड़े हो जाना है, फिर शरीर को संतुलित रखते हुए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और पैर के पंजों को बाएं पैर की

टांग के मूल पे लगाएं। ध्यान रहे दाहिने पैर के पंजे की उंगलियां जमीन पर टिकी रहें। इस प्रकार एक पैर पर संतुलन बनाएं। अब दोनों हथेलियों को मिलाएं और सीधे आकाश की तरफ उठाएं। दोनों हाथों की कोहनियां सीधी रखें और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। ये है प्रकाशमय वृक्षासन का पहला, जिसमें हमें सीधे खड़े हो जाना है। वजन एक पैर पर हमें पूर्ण रूप से डाल देना है। दूसरे पैर का तलवा, जांघ और पिंडली घुटने पर नहीं रखना है। हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर उठाना है। नजर सामने और एक बिंदु पर ही टिकी होनी चाहिए। 20 से 30 सेकंड रुकें और सामान्य सांस को लेना है और छोड़ना है। धीरे धीरे बदल कर दूसरे पैर की ओर हम आ सकते हैं। समय इसका होना चाहिए 5 से 10 सेकंड, ताकि हमें फिर दूसरे पैर को ऊपर उठा करके हम अवस्था को चेंज कर सकते हैं। वापस ताड़ासन की स्थिति में आए, यानी दोनों पैरों को उठाना है, पंजों को उठा करके पंजे नीचे रहेंगे और एड़ियां ऊपर। अब आपको यही प्रक्रिया दाहिने पैर पर खड़े होकर दोहरानी है। इस प्रकार यह क्रिया लगभग क्रमशः 4 से 5 बार दोहरानी है। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास को लेंगे। पूर्ण स्थिति में स्वाभाविक श्वास प्रवास करें। हाथों को नीचे करते समय श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। इस तरीके से वृक्षासन के फायदे, आइए अब हम आपको बताते हैं। बैलेंस और एकाग्रता बढ़ती है, पैरों और टखनों की ताकत बढ़ाती है, पोस्चर सुधरता है, मन शांत होता है और एकाग्रता आती है, जो कि स्टूडेंट्स को ये जरूर से अपनाना चाहिए। हर एक फायदे से कहते हैं ना, हर एक योग के अलग अलग फायदे होते हैं, तो खास करके विद्यार्थियों को यह आसन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में पैर पिंडली पर आराम से रखें, ताकि दीवार कुर्सी का हल्का सहारा भी आप स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं। पहले के दिनों में 10 से 15 सेकंड ही आप इसको कर सकते हैं और फिर आप इसे धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी सावधानियाँ। अगर आपको यह आसन करते समय चक्कर आते हों या घुटनों में दर्द हो, तो दीवार के पास सहारा ले सकते हैं। पैरों को सीधे घुटनों पर न टिकाएं। संतुलन बिगड़े तो तुरंत पोज को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक आसन और, जो कि इसी का दूसरा प्रारूप है, वो है भागीरथ आसन। वृक्षासन को करने के साथ साथ भागीरथ आसन जरूर करना चाहिए। भागीरथ आसन का नाम ध्रुव आसन भी है। भक्त ध्रुव एवं भागीरथ ऋषि ने इस आसन से साधना की थी, जो कि वृक्षासन का दूसरा प्रारूप है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने किया प्रकाशमय वृक्षासन, जिसको करने से हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश का आगमन होता है। इस तरीके से हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नई सीरीज में, एक अलग नाम और एक अलग योग के साथ में। तब तक के लिए करें योग, रहने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप पहले से अच्छे और बहुत अच्छे होंगे और नित सवेरे आकर के योगशाला में योग प्राणायाम करते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस रोग में कौन सा प्राणायाम उचित होता है। थोड़ी बहुत जानकारी हम देंगे उस रोग के बारे में और साथ में जानकारी देंगे प्राणायाम के बारे में, यानी कि आसनों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक। दोस्तों, ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। ज्यादा टेंशन करना और काम के प्रेशर को लेकर के जब काम पूरा नहीं होना या फिर फैमिली प्रॉब्लम को लेकर के लोगों को चिंताएं घेरे रहती हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक का खतरा जो है वो अमूमन ज्यादा सा बढ़ गया है। योग का अभ्यास करने से ऐसे खतरों में बहुत ही जल्दी से सुविधाएं मिलती हैं हमें उन्हें ठीक करने की। हृदय रोग का कारण बनने वाले उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और उक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है, जिससे हृदय गति कम करने में मदद मिल सकती है। योग करने वाले लोगों को में अन्य लोगों की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, ये सभी को पता है। तो आइए आज हम बताने वाले हैं कि हृदय रोग के जो रोगी होते हैं उन्हें कौन सा आसन प्राणायाम करना चाहिए। स्पेशली हार्ट अटैक जब किसी को आता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। दाहिने हाथ में दर्द होना, सीने में दर्द होना। अभी हाल में ही हमने एक डॉक्टर से सलाह करी थी, यानी कि हमारा एक प्रोग्राम था डॉक्टर्स की सलाह में, तो उन्होंने बताया कि यदि आपके चेस्ट पेन हो रहा है, यानी अगर चलते फिरते चेस्ट पेन हो रहा है, तो यह कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ
कुछ मसल्स की दिक्कत हो सकती है, कुछ हड्डियों की दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप आपके हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, आप कहीं हिल डुल नहीं रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको चेस्ट पेन है तो ये बिल्कुल आपको हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कौन से प्राणायाम अगर हमें अभी से ही शुरू कर देने हैं तो यह खतरनाक से खतरनाक बीमारी नहीं हो सकती है, जो कि मुख्य आसन है भुजंगासन, गौमुख आसन, मलासन, ताड़ासन और ब्रिज पोज। मैं आपको बता दूं कि भुजंग आसन के बारे में भुजाओं से संबंधित होता है, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। ये इसीलिए करा जाता है क्योंकि जब भुजाओं से संबंधित हम कुछ प्राणायाम करते हैं तो हार्ट जो होता है यानी कि हृदय की मांसपेशियां जो है वो खींचती हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आराम से उस तक पहुंचता है और हमें हृदय संबंधी जो भी रोग होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। और हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। सावधानी ये बरतनी चाहिए कि यदि हम कोई आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो अगर हमें ज्यादा पसीना आ रहा है या घबराहट सी हो रही है तो हमें उस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, रुक रुक के उस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिसको करने से हमें बहुत ही शांति और खुशी प्रदान हो, वही आसन प्राणायाम को हमें आगे नित्य नियम में करने चाहिए। आइए दोस्तों, हम दूसरे एक रोग की तरफ चलते हैं, जो कि है गठिया। गठिया दोस्तों हाथ में हो सकती है, पैर में हो सकती है, और आप तो गले में, गर्दन में, कमर में, कहीं पे भी ये गठिया का दर्द पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा आसन प्राणायाम करना चाहिए। गठिया के रोगों को जो कि रोगी होते हैं, उन लोगों को अनुलोम विलोम कपालभाति जरूर से करना चाहिए। दिन की दिनचर्या शुरू करने से पहले अनुलोम विलोम को हमें नित्य नियम अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए, जिससे गठिया जैसी गंभीर बीमारियां जो कि शुरू होने से पहले ही खत्म होने की संभावनाएं 100 नहीं 200% होती हैं। अगर हम अपना वेट, जो कि हमारा वेट हो जाता है बहुत ज्यादा, उससे भी हमें ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं गठिया जैसी। घुटनों में दर्द होने लगता है, पैर की एड़ियों में दर्द होने लगता है और हाथों की भुजाओं यानी कि जहां ज्वाइंट पेन्स होते हैं वहां पे दर्द होने लगता है। अगर आपको ये नित्य प्रतिदिन हो रहा है तो तुरंत से तुरंत आप आसन प्राणायाम के साथ साथ अपने अपने जो कि आसपास के डॉक्टर हैं, आप उनसे संपर्क करें और इसकी दवाएं शुरू कर दें, क्योंकि गठिया रोग जो है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह रोग और भी बढ़ता जाता है। लेकिन मात्र एक योग प्राणायाम के माध्यम से हम किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी को खत्म कर सकते हैं। तो हम अभी से ही क्यों न अपना लें ये सारे योग प्राणायाम। अनुलोम विलोम को करने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर के नित्य क्रिया करने के बाद में आपको शामिल करना है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार आता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और तनाव चिंता को कम भी करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है यह सर्वोपरि और सर्वप्रथम प्राणायामों में से एक है, क्योंकि कपालभाति और अनुलोम विलोम मुख्य 8 प्राणायामों में से एक है, जिस जो की करने से पूरे संपूर्ण शरीर की जो की गतिविधियां होती हैं उन पर वो सुचारू रूप से काम करता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी की, जो की है शुगर यानी की मधुमेह। इसमें हमको कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, नित्य प्रतिदिन हमें अपने कौन सा जो कि डेली रूटीन अपनाना चाहिए शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, आज हम आपसे बात करेंगे। शुगर लेवल को कम करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम और जो कि हमें इस रोग में करना चाहिए वह है कपालभाति। कपालभाति शुगर लेवल को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप से जाना गया है। कपालभाति इसीलिए क्योंकि वह श्वास निर्मित है, श्वास को श्वास से जोड़ करके किया जाता है। श्वास की गति को बाहर छोड़ना, अंदर लेना, यह कपालभाति की प्रथम प्रक्रिया है। कपालभाति को करने से हमें मन चित्त को एकाग्र बैठ करके बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, और अपने मुख मंडल पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में इस प्राणायाम को शुरू करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होता है और वह उनके शरीर की तंत्र तंत्रिकाओं को
और दिमाग की नसों को मजबूती देता है। इसी के साथ शरीर में ऊर्जा भी देता है। कपालभाति प्राणायाम शरीर में रक्त प्रभाव को बेहतर करने के साथ साथ मन को भी शांत करता है। दोस्तों, हम आपको बता दें शुगर लेवल के बारे में और मधुमेह के बारे में। कहा जाता है कि मधुमेह के रोगियों को परिश्रम अपने शरीर से जरूर से

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ रिश्ता है इस जगह से? स्ट्रेंज, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्यों? रंजना?

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9761 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

Good morning, Gonda. 89.6 FM रेडियो का स्लीपर, दिस इज आशुनति और चल रहा है प्रोग्राम आपका अपना मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गोडा। तो भैया उठ जाइए मेरे शहर के शेरों, अभी तक क्यों सो रहे हो, अभी तक उठ जाओ क्योंकि भैया घड़ी में वक्त हो चला है 8:32 बस स्टूडियो क्लॉक और ये टाइम ऑफकोर्स आपके मॉर्निंग शो को बेहद खास बनाने वाला, यानी कि आपकी अपनी एंट्री वाला प्रोग्राम है जिसमें अगर आप बताते जनाब कि आप उठ चुके हैं, अलार्म को स्नूज करना बंद करें, क्यों हर मिनट में एक होता है कि 5 मिनट और 5 मिनट और, ये बंद कीजिए और उठ जाइए। और आज का हमारा जो ख्याल है वो है कि भागती गाड़ियों और शहर के पीछे दौड़ते हैं खोकर अपना आज, हम बस आने वाले कल को जोड़ते हैं, मगर बंद कमरों की बंदिशों में ये कैसा जीना है, हम भूल ही गए हैं कि पहली बारिश में कैसे भीगना है। दुनिया भर की हर खबर अब हमारी उंगली पर है, पर घर में बैठी माँ का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ घर पर है। ड्राइंग रूम में बजते कहने को 108 टीवी चैनल्स हैं, शोर बहुत है बाहर, पर ना जाने क्यों दिल के वो सारे सुकून के पल खोए खोए से हैं। जमाने को पाने की इस अंधी और थका देने वाली होड़ में हम खुद को ही पीछे छोड़ आए हैं, न जाने कब कहाँ किस मोड़ में। और यही था आज के लिए आपका मॉर्निंग वाला ख्याल, यानी कि थॉट और पोइट्री ऑफ द डे, जो आपको ये बता रहा है भाई कि इस दुनिया में जहाँ आप भागने पे लगे हुए हैं, तरह रुकिए रुकिए सबर कीजिए, 108 टीवी चैनल्स हैं लेकिन सुकून आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है ना। क्यों नहीं मिल रहा है, पहले तो एक रेडियो चैनल से भी काम हो जाता था, लेकिन क्योंकि अब हमारी दुनिया में हमें हर चीज़ बस कहीं ना कहीं से पकड़नी होती है, छीननी होती है, जीतनी होती है, हमेशा कॉम्पिटिशन ऑन। सोते भी है, अरे वो देखो 8 बजे सो गया था, तुमको सोना ही नहीं है, उसकी 8 घंटे की नींद पूरी है, तुमको जागते ही रहना है, सोने का भी कंपटीशन हो रहा है भाई। और सही बताऊँ, कंपटीशन वहाँ करो जहाँ उसका फ़ायदा हो, सोने का कंपटीशन करना है तो उस जगह पे जाके करो जहाँ आपको उससे प्रॉफिट मिल रहा हो, बट नहीं, हमें तो अपनी रातों की नींद उड़ानी है, दिन का सुकून उड़ाना है, दिल का चैन उड़ाना है और हर किसी से कॉम्पिटिशन करना है, भले ही वो कॉम्पिटिशन हमारे मतलब का हो ना हो, हु केयर्स। इसे अंधी दुनिया में भागते भागते हम सच में अंधे होते जा रहे हैं गाइस। तो भैया मॉर्निंग वाला ख्याल आपको यही कहता है कि दुनिया के पीछे तनिक भागना छोड़ दो, अपने खुद की एक थॉट प्रोसेस बनाओ, आपकी खुद की जिंदगी है, खुद का मंजिल है, दूसरों के रास्ते पर कब तक चलने वाले हो बॉस। और जरा माँ से पूछ के आओ वो कैसी हैं, क्योंकि मुझे पता है हम सबसे पूछते हैं, दोस्तों को मैसेज करते हैं, फलाने को कॉल, ढिमकाने को कॉल, लेकिन घर में बैठी हमारी माँ से पूछते नहीं कि माँ आपने कुछ किया क्या, आपने खाना खाया क्या, आप कैसी हैं, आपका दिन कैसा रहा। जनरली ये हम नहीं पूछ पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें लगता है माँ तो हमारे साथ रहती ना, तो उनसे पूछने का क्या मतलब है। तो भैया ये सारी हरकतों को थोड़ा साइड कीजिए और आज के मॉर्निंग की एक बेहतरीन से खूबसूरत सी शुरुआत कीजिए, क्योंकि आशुनति आ गई है आपके साथ मॉर्निंग वाले शो को और स्पेशल बनाने के लिए। तो मेरे शहर के शेरों, मॉर्निंग का यूं ही एनर्जी बरकरार रहने वाला है, इसी के साथ आइए दिल को खुश करने वाला गाना सुनते हैं दिल से, छैया छैया, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पर, जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि ये एनर्जी पूरे 11 बजे तक यूं ही चलने वाली है आपके साथ, आपके अपने एफएम रेडियो 11.6 FM पर। स्टे ट्यून्ड।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

और वही तो हम भी कह रहे हैं बॉस, जागे जागे अरमा है, जागने का वक्त हो चला है, क्योंकि आप सुन रहे हैं मॉर्निंग का अपना वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा। दिस इज आरजे नदी आपके साथ मौजूद है आपके अपने वाला स्टूडियो में, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा का अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम रेडियो ज्ञानस्थली। फिलहाल ये बताइए दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल था, मैं जो सुबह से आपको उठाने के लिए मुर्गे की तरह बांग लगा रही हूँ, वो सारी चीज़ें साइड में करके आप कितने बजे उठते हैं? क्योंकि हमको पता है जो लेट उठते हैं वो घर पर डांट बहुत पड़ती है, और इन इंडिया यानी कि हमारे भारत देश में तो वैसे भी लेट सोने वाले को न जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है, एक अलग ही नाम मिल चुके होते हैं, आलसी, कुंभकर्ण, ये वो फलाना ढिमकाना, और हमें लगता है भैया क्या हम इतने ख़राब हैं। हाँ, कभी कभी सोचते भी है ना कि जल्दी उठ जाते तो काम जल्दी हो जाता, पर नहीं उठ पाए हैं तो लेट हो गए हैं, ये वो। बट इसके अलावा क्या आपको पता है जो लोग बहुत देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, उनका दिमाग बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलता है? ये बात शायद आपको ना पता हो, लेकिन हाँ, अगर आप देर से सोकर उठते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, क्योंकि आपको साइंटिस्ट ने एक ऊँचे दर्जे पर रख दिया है। अब आइए बताते हैं आपको एक ज़बरदस्त हम फैक्ट ऐसा होने वाला है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। हालांकि अब मुझे पता है आपकी रातों की नींद पहले से उड़ी हुई है, आप रात के 2 से 3 बजे सोने वाले लोगों में से आते हैं, आप वो नाइट आउल है जो आउल को भी पीछे छोड़ चुके हैं। इसके अलावा आप दिन भर रात भर रील स्क्रॉल करते हैं, वो अलग पॉइंट है, लेकिन अगर आप रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी कि वो लोग जो मेरी तरह रात के वक्त में सोचते हैं कि शैतानों की शक्ति जाग चुकी है और अब हम सारे काम निपटा लेंगे, तो मुबारक हो, आपके लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताई, और वो ये बताई है कि आपका दिमाग बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा तेज हो सकता है। अब इसके पीछे जो बहुत रीजंस हैं वो हैं आपके इतिहास के पन्नों से जुड़े हुए। इतिहास के पन्ने यानी कि वो वक्त जब एवोल्यूशन चल रहा था, उस वक्त आपको भी याद होगा कि जब हम लोग कहीं ना कहीं गुफाओं के अंदर रहते थे, कपड़ों की जगह पर पत्ते पहना करते थे, उस वक्त लोग रात में जाकर प्रोटेक्ट करते थे किनको, अपनी फैमिली मेंबर्स को यार, ऑफ कोर्स, और किसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो ज़माना जब धीरे धीरे बदल रहा था, लोग रात के अंधेरे में यूं तो सो जाया करते थे, बट कुछ लोग ऐसे थे जो रात में जागा करते थे, और जो उस वक्त रात में जागता था उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहता था। धीरे धीरे ये बदलाव आता गया, लोगों ने रात में जागने को एक अलग तरीके से देखा। जहां पूरी दुनिया सोने को एक अच्छा साइन मानती है, एक रिकवरी का साइन मानती है, हमारे भारत में सोने को स्लीप शेमिंग किया जाता है। यानी कि अगर आप सो गए हैं कहीं भी, क्लासरूम में, ऑफिस में, हालांकि नहीं सोना चाहिए, वो अलग चीज़ है, बट जहां जापान आपको ऑफिस में सोने के लिए हार्ड वर्किंग का सिंबल देता है, हमारे यहाँ काम चोरी कहा जाता है। जहाँ चाइना के स्कूल्स में, बाकी स्कूल्स में हर लंच के बाद आधे घंटे की नैप दी जाती है, हमारे यहाँ अगर आप लंच के बाद सो जाते हैं तो चौक मार के उठा दिया जाता है। जहाँ अगर आप घर पे सो रहे हैं और घर वाले मिक्सर ऑन ना कर दें, पंखा बंद ना कर दें, ठंड है तो ब्लैंकेट छीन के ना ले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह 4 बजे उठने वाला ही अपनी ज़िंदगी में सबसे कामयाब इंसान होता है। बट साइंस टोटल इसका उल्टा बोलती है। साइंस कहती है कि अगर आप देर तक सोते हैं तो आपका दिमाग बाकी लोगों से ज़्यादा तेज़ चलता है। इवन एक यूनिवर्सिटी है बेल्जियम में, और उसने अपनी स्टडी के दौरान, यूनिवर्सिटी ऑफ लीज ने बताया है कि सुबह उठने के करीब 10 घंटे बाद जो जल्दी उठते हैं उनका दिमाग धीरे धीरे थकने लग जाता है, लेकिन जो देर से उठने वाले लोग हैं उनका दिमाग रात के वक्त भी बहुत तेज़ काम करता है। इवन कहें तो रात में ही सबसे ज़्यादा तेज़ काम करता है, उनके दिमाग की सारी सुपर पावर्स जो हैं वो रात में एक्टिव हो जाती हैं, जिसको हम कई मजाक में कहते हैं कि भैया राक्षसों की या फिर शैतानों की शक्तियां तो रात में ही एक्टिव होती हैं। और ये बात आपके घर वाले आपको ताने में जरूर मारते होंगे कि तुम तो शैतान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ रात में ही चलता है, तुम्हारा दिमाग दिन में नहीं चल पाता है। और ये बात सच भी है, आप शैतान नहीं है, आप इंसान हैं, लेकिन हाईली एक्टिव हैं आपका दिमाग, आपकी आईक्यू बहुत सुपर फास्ट है, और इसी की वजह से जब नाइट का टाइम आता नहीं तब आपका दिमाग जाता है पीक पर, आपको सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, और अगर आप सही जगह काम नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको रात भर में ओवर थिंकिंग भी बहुत होती है, आप बहुत सोचते हैं, क्या सोचते हैं ये आपको भी नहीं पता, क्यों सोचते हैं, कभी कभी यही सोचते हैं कि हम इतना क्यों सोच रहे हैं, नहीं सोचना चाहिए पर हम सोचते हैं ना, क्योंकि ये दिमाग अपने उस टाइम पर बहुत पीक लेवल पर होता है और वो बहुत ज़्यादा सोचता भी है। इसके अलावा
आपका दिमाग, जो लोग देर तक सोते हैं उनके दिमाग में एक आउट ऑफ द बॉक्स वाला थॉट होता है। हाई आईक्यू वाले लोगों के अक्सर अंदर एक आउट ऑफ द बॉक्स जाने कर सोचते रहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर दुनिया में किसी ने पहली बार दूध पिया था तो कैसे पिया था, उसे कैसे पता था कि ये दूध पीने वाली चीज है। इमेजिन वो ये चारी बातें रात के अंधेरे में बैठ के सोच रहे, ओवरथिंक कर रहे कि जब आईना बना था तो किसको पता था कि आईना रेत से ही बनेगा, किसी और भी चीज से तो बन सकता था ना। अगर मछली जल की रानी है तो मछला जल का राजा क्यों नहीं है, मगर मच्छ जल का राजा क्यों है। और ये सारे ख्याल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उनके दिमाग में चल रहे होते। जब पूरी महफिल के अंदर बैठ के लोग काम की बात सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि लंच कब आएगा भाई, खाना है, हमको भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि वो वहां फिट नहीं हो पा रहे। हाई आईक्यू वाले लोगों के अंदर एक और चीज है, वो ये है कि वो चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो छोटी छोटी चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसके एग्जांपल में आपकी अपने फेमस आइंस्टाइन की भी एक कहानी शामिल आती है कि भैया आइंस्टाइन जिन्हें लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, जिनका आईक्यू इतना अच्छा है, जिन्होंने साइंस में बहुत कमाल कमाल की थ्योरीज दी हैं, वो साइंटिस्ट बंदा जब एक ट्रेन में बैठा था और टीटी ने उसे टिकट के लिए पूछा तो वो अपनी टिकट ढूंढने में बिजी थे कि कहां गया मेरा टिकट। टीटी ने कहा चलिए कोई बात नहीं, हमें पता है आपको, हम जानते हैं आप टिकट लिए होंगे। बोले तुमको तो पता है कि तुम हमको जानते हो, लेकिन हमको नहीं पता है कि हमको किस स्टेशन पे उतरना है, हम भूल चुके हैं, हमको इसीलिए टिकट चाहिए ताकि हम ये जान पाए कि हमको कौन से स्टेशन पे उतरना है। अब आप सोचिए आइंस्टाइन जिन्हें न जाने लोग उनके बचपन में कितनी दफा बेवकूफ कह चुके थे कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा लाला, तुम नहीं कर पाओगे ला, बाद में जा करके उन्होंने ही साइंस में कितनी गजब गजब की थ्योरी दी है। तो अगर आप लेट नाइट तक जगते हो, देर तक सोते हो, तो मुबारक हो, आप आलसी नहीं हो, आप इंटेलिजेंट हो। अगर आप चीजें भूल जाते हो रख करके, आपको याद नहीं आता कि मम्मी ने किचन में दूध बंद करने भेजा था कि दाल वाली गैस बंद करने भेजा था, अगर आप कमरे में गए हो तो आप सोच नहीं पाते कमरे में आए क्यों, तो चार्जर लेना था कि चार्जर का कुछ और लेना था। अगर आप इसके बीच में कंफ्यूज रहते हैं, चाबी रख कर कहीं भूल जाते हैं, तो ये सारे सिंबल्स हैं हाई आईक्यू के, यानी कि आपका दिमाग बाकी लोगों से अलग और थोड़ा सा एक्टिव है। तो भाई गुड मॉर्निंग वाले शो में आई थिंक आपकी अपनी गुड मॉर्निंग वाली चीज़ें हो चुकी हैं, और अगली बार जब आपको कोई बोलेगा कि भैया तुम बहुत देर तक सोते हो, तो आप गुस्से की जगह पर इतराएंगे कि हाँ क्योंकि हम अलग हैं, थोड़े से अलग हैं, तुमसे सबसे हटकर हैं। और इसी हटकर को आइए बढ़ाते हैं आगे मॉर्निंग वाले शो की एनर्जी को बरकरार रखते हुए, आइए एंजॉय करते हैं उदित नारायण की आवाज में जागे जागे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप बताइए कि आप कितने बजे उठते हैं, बताइए बताइए। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो 11.69 FM गोंडा शहर की धड़कन विद राजू नती।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

और क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं जो अक्सर बस ये ही गाना अपना एंथम बना चुके हैं और कहते रहते हैं रब्बा अब तो और सहा ना जाए, कुछ तो बोल बोल बोल काफी है, मेरी किस्मत के दरवाजे भी खोल, क्योंकि जो आपने दे रखा है वो तो पसंद आ नहीं रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा है, और आप बस रब्बा से गुहार लगाए पड़े हैं कि कुछ तो हो जाए। बट इसका असल सीक्रेट छुपा है आपके अपने ही अंदर। चलिए बता दें भैया कि ऐसा क्यों है कि जो ख्वाब आप देखते हैं, जो डे आप डिसाइड करते हैं, जो प्लान्स आप बनाते हैं, वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्यों उनके पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ हार का सामना करना पड़ जाता है, कई बार ऐसा हो सकता है। तो भैया ऐसा काहे होता है? हम सोचते हैं ना कि यार इतना सब कुछ तो सॉलिड किया था, सब कुछ बेहतर किया था, प्लान्स बनाए थे, डेट सेलेक्ट किया था, बट ऑल सडन ये क्या हुआ, क्यों हुआ, अच्छा क्यों नहीं हुआ, होता है ना। और वहाँ पर वो इंसान, उसने तो कुछ किया भी नहीं था, वो बस करे जा रहा था और ऑल सडन उसको कोई सक्सेस मिल गई। इन दोनों के बीच में आइए डिफरेंस समझाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी, वापस से स्वागत करते हैं आपके अपने वाले शो मॉर्निंग स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरश्रवती, मौजूद हूँ आप सभी के साथ, और ये है आपका अपना रेडियो 11.39.6 FM।

कहते हैं कल से जल्दी उठा जाएगा। मम्मी को चिल्ला चिल्ला के बता देते, मम्मी कल से जल्दी उठेंगे, कल से उठकर जिम जाएंगे, वॉक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इवन कई लोग तो नए जूते भी ले आते हैं कि भैया कल से तो जिम जाना पक्का, कल से तुम्हारा भाई जिम जाएगा, कल से तुम्हारी बहन सुबह उठ के योगा करेगी। लेकिन जैसे ही अगली सुबह आती है, जैसे वो मंडे का दिन आता है, हमारे सारे जितनी भी मोटिवेशन होती है वो कहाँ चली जाती है? क्यों हमसे नहीं उठा जाता? क्यों हम हर बार अलार्म की क्लॉक में बस यही कहते हैं कि 5 मिनट और वो 5 मिनट कब? सुबह के 9 बजा देते हैं और तब आपको पता चलता है कि उठ करके अब तो बहुत लेट हो गया। पीछे से मम्मी का ताना मिलता है कि कल कोई बहुत उड़ रहा था और कह रहा था कि हम जिम जाएंगे, हम 4 बजे उठेंगे, क्या हुआ ऐसे लोगों का? तो ये क्यों होता है? क्या इसके पीछे आपका दिमाग जिम्मेदार है या आप खुद जिम्मेदार है? चलिए बताते हैं। तो भैया इसके पीछे आप नहीं, आपका दिमाग सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है और उसके बाद होते हैं आप जिम्मेदार। क्यों? तो इसके पीछे का कारण ये है कि जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं, उसे कहीं लिखते हैं, कोई दिन आप डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन से मैं उस पल को बिल्कुल ही बदल दूंगा, तो मुबारक हो, आपका दिमाग पहले ही वो सपना जी चुका होता है। जो ख्वाब आपके दिमाग के अंदर पहले से ही कंप्लीटेड है, उसके लिए वो काम नहीं करता है। हमेशा कहा जाता है कि कामयाबी के जो रास्ते हैं वो बहुत ही खामोशी के साथ जाते हैं। और अगर आप इस साइलेंट मोमेंट को नहीं समझते, आप खामोशी को नहीं समझते हैं कि किस तरह से आप बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए अगर आप अपने सपनों के लिए काम करेंगे, तो ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये तब तक आपको समझ नहीं आता जब तक आप इस पर काम नहीं करते हो। अगर आप UPSC क्लियर करना चाह रहे हो और आपने पूरे खानदान में बता रखा कि हमारा बेटा तो IAS बनेगा, हम UPSC करके मानेंगे, हमारा ये क्लियर हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, तो यकीन मानिए आपका दिमाग वहां पे ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है ये ख्वाब हमने पहले ही जी लिया है, ये सपना हमने पहले ही पूरा कर लिया है। क्योंकि जब आप 10 लोगों के बीच में बैठकर कोई चीज डिस्कस करते हैं, स्पेशली योर एम्स, योर ड्रीम्स, तो आपके घर वाले बहुत तारीफ करते हैं कि अरे वाह, बहुत ही अच्छा है बच्चे, तुम कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग को पहले से ही वो एप्रिसिएशन मिल चुकी होती है, वो प्रेज मिल चुकी होती है, जिसकी क्रेविंग आपको तब होनी चाहिए जब आप वो काम कर लो। बट हम पहले ही वो सारी तारीफें लूट लेते हैं। इसके अलावा कई लोग आपको ताना देना शुरू कर देते कि हाँ पता है तुमसे कितना होगा, तुम कितना सुबह उठोगे, रोज तो तुम 10 बजे उठते हो, तुम 4 बजे उठोगे। आपका दिमाग इसको भी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो सही और गलत के बीच के अंदर का जो फर्क होता है उसको नहीं मेजर कर पाता। वो नहीं मेजर कर पाता है कि आप क्या सपना देख रहे हो और क्या हकीकत है। इसीलिए ब्रूस ली ने भी कहा था कि अपने बारे में कभी भी एक भी घटिया लफ्ज ना निकालें, क्योंकि आपके दिमाग को नहीं पता कि जो चीज़ें आप बोल रहे हो वो मजाक में है, हकीकत में है, सच है, झूठ है, या बस यूं ही आपने बोल दिया। वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना जानता है। इसीलिए जो लोग बैठे बैठे सोचते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं कि किसी दोस्त के फ्यूनरल में है, तो वो असल में रोने लग जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग को ये नहीं पता होता कि वो सिर्फ एक इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे हैं। और यही होता है तब जब आप अपने सपनों के लिए काम करते हैं और चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता देते हैं कि हमको तो IAS बनना है, हम बन के दिखाएंगे, हम साइंटिस्ट बन के दिखाएंगे, हमने ये थ्योरी पे काम कर लिया है। उसके बाद आपका दिमाग वो सारी तारीफें, वो सारी निगेटिव चीज़ें अपने पास रखकर आपको आपके मेन मोटिव से भटका देता है कि भाई ना अब हो चुका है, तारीफ भी मिल गई है और इधर से हमको कहीं ना कहीं ट्रॉमा भी मिल चुका है, तो अब हम काम नहीं करेंगे, आप सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे, मेरे घर वालों को तो पहले ही यकीन है मैं उठती नहीं हूँ 4 बजे, तो उठ के क्या फ़ायदा, क्यों यकीन दिलाना है इनको। और यही करके फिर आप सुबह 9 बजे तक आराम से घोड़े बेच के सोते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी किसी साइंटिस्ट की थ्योरी आती है, जब भी कोई बहुत बड़ा आदमी सामने अचानक से निकल के आता है और आपको अचानक से न्यूज़ आती है कि ओह ये कुछ नया था यार, वो एक्चुअल में खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें कामयाब होना है, इसलिए क्योंकि उनका फोकस वहीं पर होता है। हम एक मोमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं, परफेक्ट मोमेंट जिसे हम कहते हैं, जो असल ज़िंदगी में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। परफेक्शन के पीछे भागना हमारी एक ऐसी आदत हो चुकी है जो हमें थका तो बहुत चुकी है, लेकिन हम रुकने का नाम नहीं लेते। हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हमने खाना बनाया है वो परफेक्ट होना चाहिए, इसके अलावा जो सर्व किया जा रहा है उसकी प्लेट एकदम मास्टर शेफ स्टाइल में होनी चाहिए। अगर आप घर के खाने और एक मास्टर शेफ के खाने को डिसाइड करने वाले हैं दोनों में से, तो आपको लग सकता है कि हाँ प्रेजेंटेशन में मास्टर शेफ आगे है, हो सकता है उनका टेस्ट भी आगे हो।

0: सुकून आपको अपनी माँ के हाथ में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें अलग होती है। आपका दिमाग हर एक परफेक्शन के पीछे भागता रहता है। आप जिन चीजों को परफेक्ट समझकर ढूंढते रहते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ना परफेक्ट मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ना परफेक्ट हाइट एग्जिस्ट करती है, ना परफेक्ट वेट एग्जिस्ट करता है, इवन ना परफेक्ट आप एग्जिस्ट करते हैं। गलतियां करना हमारा काम होता है और आपके दिमाग को गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। जब तक आप गलतियां नहीं करती हैं आपके एक्सपीरियंस कम होते हैं। और अगर आप बता देते हैं पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कि हम तो सब कुछ कर लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यकीन मानिए आपका दिमाग उस चीज़ को नहीं अचीव कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपने अपनी बात ईगो पर ले ली है, जो कि हम बहुत ही ख़राब इमोशन समझते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में ईगो है तो क्या ही होगा, तो भैया हम आपको बता दें कि ईगो एक ऐसी इमोशन है जिसके अंदर आप अपने कामयाबी के रास्ते लिख सकते हैं, क्योंकि ईगो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हार्ड इमोशन होता है। ईगो अगर आपने सही जगह पर लिया है तब तो आप उसके लिए काम करते हो, बट अगर वो कहीं गलत जगह पर आया है तो यकीन मानिए वो आपको बर्बाद करने तक का हुनर रखता है। तो कहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है? ईगो को हमेशा हमने बस यही सुना है कि बहुत ख़राब चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट जब आप सबसे हार कर, सबके तानों से हार कर बीच में अपना ईगो लेकर आते हैं ना, तो आप खुद में नहीं थकते। आज तक उसको हासिल नहीं कर लेते, आप रुकने का नाम नहीं लेते। तो यहाँ भी कोई परफेक्ट जैसी चीज़ नहीं थी, इसके पास दोनों हुनर है, आपको कामयाब करने का भी, आपको बर्बाद करने का भी। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन आपके पास है कि आप क्या चूज़ करने वाले, कौन से रास्ते पर जाने वाले। हमेशा दो रास्ते होते हैं, या फिर कहें तो एक ज़िगज़ैग रास्ता होता है जो दोनों से मिलता जुलता जाता है, बट आप कहाँ जाते हैं या आप खुद डिसाइड करते हैं। आप लोगों को बताकर जाना चाहते हैं कि खामोशी से जाना चाहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि भाई कामयाबी हमेशा खामोशी से लिखी जाती है। जब आपको कोई ताना दे तो उसको जवाब में ये मत कहिएगा कि मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा, बल्कि करके दिखा दीजिएगा, क्योंकि जब कामयाबी बोलती है, जब आपके काम बोलते हैं तो शब्द खामोश हो जाते हैं, और जब तक शब्द बोलते हैं तब तक आपको खामोशी में काम करना होता है। तो भैया अगली बार परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार मत कीजिए, परफेक्ट लम्हे का इंतज़ार मत कीजिए, कोई परफेक्ट दिन, परफेक्ट इंसान, परफेक्ट जगह आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। शुरू कीजिए आज से, अभी से, तुरंत लग जाइए अपने सपनों की तरफ, भिड़ जाइए। किसी से भी ज़िद करना हो तो कर जाइए, ज़िद करनी भी अच्छी होती है अगर बात आपके लिए अच्छी है, आपके करियर के लिए अच्छी है, आपकी अपनी फैमिली के लिए अच्छी है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ ज़िद करना हमारे लिए अच्छा है तो वहाँ आप ज़िद कीजिए, और लगता है कि ये ज़िद हमारी बेमतलब है, बेबुनियाद है, तो करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो भैया याद रखिएगा कि आपका दिमाग और आप मिलकर डिसाइड करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाने वाले हैं। अगर आपने सोचा और सबको बता दिया तो यकीन मानिए वो सपना आप पहले ही जी चुके हैं, और जिए हुए सपने को दिमाग दोबारा से काम नहीं करता है। बट अगर आप उसको अपने अंदर रख कर अपनी मेहनत पे लगे रहते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। योर ब्रेन डिसाइड्स योर सक्सेस। ओके, समझ गए ना आप? समझ गए ना? हाँ जी, अगर आप इतनी सारी ज्ञान की बातें हम अब समझ चुके हैं तो आइए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, और अब हम नहीं बोलेंगे कि रब्बा और सहाना चाहे कुछ तो बोल बोल बोल, क्योंकि रब्बा जवाब नहीं देंगे, जवाब आपके अंदर है, ढूंढना भी आप ही को है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपको सब्र और आपको दुआएं मिल सकती हैं, रब्बा आपकी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, बट तभी पूरा कर सकते हैं जब आप अपनी आदतों को बदल के अपने काम पर लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि काम करो बालक, फल की चिंता मत करो। अगर आप फल की चिंता में लगे रहेंगे तो काम कैसे करेंगे बताइए ज़रा, नहीं कर पाएंगे ना। ये बात आप हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन इसका सही लॉजिक यही है कि अगर आप फल के पीछे पड़ जाते हैं और सोचते रहते हैं तो फिर आपका दिमाग बस उस फल को ही टेस्ट करता है, उसके पीछे के स्ट्रगल्स को छोड़ देता है, वो सपनों को दोबारा नहीं जीता जिसे वो एक बार जी चुका है। और अपने बारे में कभी भी निगेटिव चीज़ें मत बोलिए, ना किसी और को बोलने दीजिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है कि आपका दिमाग सच और भ्रम के बीच में एक फ़र्क नहीं कर पाता, वही एक्सेप्ट करता है जो आप बोल देते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे गुड मॉर्निंग गोंडा विद राजीव नथी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के उस बात, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
3: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है।
4: बताए दे।
3: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

छोरा, ओ छोरा गंगा किनारे।

इठलाती है, बल खाती है, तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो रूपवती है,

और बैक टू बैक इन दो जबरदस्त गानों के बाद आप सभी का वापस से स्वागत करते हैं आपके अपने मॉर्निंग स्पेशल वाला शो गुड मॉर्निंग गोना में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर श्रीमति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

भाई इतनी सारी बातें और इतने जबरदस्त गानों के बाद अब वक्त हो चला है आपके चैट बॉक्स की तरफ बढ़ने का, आपके मैसेजेस और आपकी इन मोहब्बत से भरे पैगामों को पढ़ने का। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास किन किन के मैसेज आ गए हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि चैट बॉक्स कहाँ मिलता है तो मैं आपको बता दें, ये आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन आपको मिलता है प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के नाम से, जिसे आप इंस्टॉल करके हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं आपके चैट बॉक्स में। तो भैया आइए देखते हैं कि आज के शो में पहला मैसेज आया किन जनाब का था। तो हमारे पास जो मैसेज आया था वो आया था महेंद्र दीपन जी का, और बहुत ही लंबा मैसेज लिखते हुए उन्होंने कहा था, गुड मॉर्निंग आरजीनदी मैम, गुड मॉर्निंग टू यू महेंद्र दीपन जी, आप कैसे हैं? एंड आपने अपना इंट्रो दिया है, आई एम महेंद्र दीपन फ्रॉम विलेज रुन डिस्ट्रिक्ट नागपुर राजस्थान, विशिंग यू अ वेरी ब्यूटिफुल रिफ्रेशिंग मॉर्निंग, थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू, एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश होप एंड अ न्यू चांस टू मेक लाइफ ब्यूटिफुल। आपकी प्यारी आवाज़ खूबसूरत अंदाज के साथ इस सुबह का स्वागत करते हुए ये सुबह और भी खास हो गई है। Have a wonderful and cheerful morning, ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड इसके बाद रोशनी रावत जी हमारे साथ जुड़ी है उन्नाव से, लिखा है गुड गुड गुड गुड गुड गुड, ओ माय गॉड इतना सारा गुड हो चुका है मेरी मॉर्निंग को। एंड ओके क्यूट क्यूट क्यूट, ओके थैंक यू सो मच, इतनी क्यूट हूं भी नहीं जितना आपने लिख दिया है, लेकिन आपकी ये मोहब्बत बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और ऑफ कोर्स आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं रोशनी जी। महेंद्र जीवन जी की तरफ से इमोजीज आए हैं सॉन्ग को लेकर के, थैंक यू सो मच। एंड सविता दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रभात सभी को, सुप्रभात आपको भी। एंड आपने लिखा है उन्नति मैम जी, आप अपने जीवन में उन्नति करें, साथ ही हम सब लोग उन्नति करें आपके पीछे पीछे। नहीं नहीं, आप हमारे आगे आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं, या फिर ऐसा करते हैं साथ साथ में चलते हैं, ना आगे ना पीछे, साथ साथ में चलते हैं और एक ही ऑटो में बैठेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वाद के लिए। इसके बाद था हमारी गुलाब शाह सिद्दीकी जी का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम लिखा है आपने, वालेकुम अस्सलाम, कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत ज़बरदस्त था आपका मजाक। इसके बाद है गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग अति मैम, गुड मॉर्निंग टू यू गुलाब शाह जी, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। सविता दुबे जी ने लिखा है अति मैम, इसीलिए मेरा दिमाग नहीं आज, किसने कहा? आपके अंदर तो इतना है कि कई बार आप हमें ही कन्फ्यूज कर देती हैं। मुझे आपसे बंगाली भाषा सीखनी है ताकि मैं बंगाल में जा करके सौंदेश ऑर्डर कर सकूं, आप समझ रही हैं ना मेरी बात? तो भैया आपसे मुझे सीखना है। एंड मैं 5 बजे उठती हूं, कमाल की बात है, और हम आज तक 5 बजे नहीं उठे हैं, मतलब उठे हैं लेकिन वो तब जब मुझे सूरज के साथ कंपटीशन करना था कि देखते हैं कौन पहले निकलता है, मैं या तुम, तो वो पहले निकल चुका था, वो अलग बात है कि पीछे से हम भी थे। इसके बाद है कि हम तो रात के 10 बजे सोने के बाद सीधा 6 बजे उठते हैं, साइंटिस्ट कुछ भी कहें। तो भाई साइंटिस्ट का जो पैमाना होता है वो होता है 7 out of 10, यानी कि 3% लोग अभी भी ऐसे होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, और उन अलग की गिनती में हमारे महेंद्र दीपन जी भी शामिल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। गीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, गुड मॉर्निंग आरजीनदी मैम, गुड मॉर्निंग टू यू गीता जी, कैसी हैं आप? आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। रेखा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुड मॉर्निंग लिखा है आपने, गुड मॉर्निंग टू यू रेखा जी। एंड आर के श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग आरजीनदी जी, गुड मॉर्निंग टू यू, क्या बात है, कितना शानदार एक्सप्लेन कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ के लिए। इसके बाद अक्रम अली जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, गाने में आवाज़ ओके, गाना बहुत पसंद आया है, नाइस सॉन्ग, का बताई हम तुम का भैया, खाई के पान बनारस वाला वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है, और बहुत ही एनर्जेटिक गाना है ये, वेरी नाइस रिमिक्स, थैंक यू सो मच। मैं 4 साल जीवन अकेले जिया, चुप रही इसीलिए गोंडा आ गई। अरे आप गोंडा आ गई तभी तो आप हमसे मिल पाए, तभी तो हम आपसे सौंदेश ऑर्डर करना सीख पा रहे हैं, अदरवाइज मैं कैसे सीखती बंगाली भाषा? आप गाना बाहर लेकर आता है सविता जी, और आप कल आई थी, बहुत अच्छा लगा था, स्पेशली आपके स्माइल देखकर मेरा दिन बन जाता है कि आप कितना हंसती मुस्कुराती है, और मैं उम्मीद करूँगी आप यूं ही पूरी ज़िंदगी हंसती मुस्कुराती रहें। एंड इसके बाद आपके बहुत सारे इमोजीज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निकल पैदल उन्नति मैम 20 घंटे हुए, जी हाँ निकल कर आई थी पैदल पैदल, पहिया पहिया चल के आई थी मुझसे मिलने के लिए, और मुझे देखकर, या मैं कहूँ मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिलहाल हमारी मुलाकात छोटी थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। इसके बाद सचिन राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सॉन्ग के बीच में आज एक ऐसे जनाब का जन्मदिन है जिनका एक गाना आपको बेहद पसंद है,
जी हाँ, जो रहे थे इंडियन आइडल के पहले विनर 2004 में, और जैसे ही वो विनर हुए थे उसके बाद रिलीज हुआ था उनका अपना एक एल्बम, नाम था आपका अभिजीत। आई होप आपने गेस कर लिया होगा आज किसका बर्थडे होने वाला है। इंडियन आइडल के फेम सिंगर अभिजीत सावंत आज यानी कि ऑफकोर्स आज के दिन 7 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उनका जन्म 1981 में मुंबई में हुआ था। अभिजीत इंडियन आइडल सीजन 1 के विजेता रहे थे। अभिजीत के जिंदगी को बदल के रख दिया था इस शो ने। जैसे ही उन्होंने शो जीता था उसके बाद ही उन्होंने रिलीज की थी अपनी खुद की एक एल्बम, नाम था आपका अभिजीत। उसके दो गाने जो सुपर डुपर हिट रहे थे जिसमें से एक आपका अपना पसंदीदा होगा, और उनके गानों की एक और ख़ास बात थी, उनके गाने इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि लोगों के जुबान पर रहते थे, दिन भर लोग उनको गुनगुनाते थे, ना चाहते हुए भी उनके गानों का स्वाद जो था वो लोगों की जुबान से उतर ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी उन्होंने, बहुत ज़्यादा तारीफ, फेम, नेम सब कमाया था, लेकिन ऑल सडन उनके हाथ से फिलहाल सब कुछ चला गया और अभी वो लाइमलाइट में तो नहीं है बट यकीनन जहाँ भी होंगे आई होप अपनी टैलेंट को बरकरार रखते होंगे। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में अभी तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है बट एक वक्त था जब वो बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाते थे। तो आइए उन्हीं की आवाज़ में एंजॉय करते हैं अभिजीत सावंत यानी जिनका आज बर्थडे है, उनकी आवाज़ में एंजॉय करते हैं उनका सुपरहिट गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा, उनकी एल्बम का पहला और सबसे कामयाब सॉन्ग। एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना FM रेडियो 11.6 FM विद राजनीति

हाँ जी, और वो कोई नहीं, वो हम ही आए हैं। और एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गुना में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजी उन्नति, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन पर। वक्त हो गया है यानी कि 10 बज चुके हैं, इसका मतलब आप समझ गए ना, गुड मॉर्निंग गुना में वक्त है अब आपके अपने इंस्पायरिंग सेगमेंट का, यानी कि उन लोगों की कहानी का एक टाइम, एक वक्त जब आप जानते हैं कुछ ऐसे लोगों की कहानियाँ जिन तक आपने शायद न्यूज़पेपर में ये स्टोरीज नहीं पढ़ी होंगी, जिनकी कहानियाँ आपको इंटरनेट ने नहीं पहुँचाई होंगी, तो उनकी कहानियाँ हम लेकर आते हैं। वो लोग जो आपको इंस्पायर्ड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो लोगों से हटकर कुछ अलग करने की चाह रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। इसी के अलावा ये वो लोग हैं जो लोगों की बात भी नहीं सुनते, जो ये नहीं सुनते चार लोग क्या कह रहे हैं, जिनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हाँ, घर वाले इनको ओझा के पास ज़रूर ले जाते हैं ये सोचकर कि शायद इन पर भूत चढ़ा है, भूत उतार दिया जाए, बट ये भूत कामयाबी का होता है, ये भूत कुछ कर दिखाने का होता है, तो ये भूत झाड़ फूंक से जाता भी नहीं। तो ऐसे ही इस कड़ी में आज हम आपको मिलाने वाले हैं, आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिन्हें बिहार का कैनल मैन कहा जाता है, यानी कि वो इंसान जिसको हम नहर वाला शख्स कह सकते हैं। इसके अलावा वो इंसान जिसे दूसरा दशरथ मांझी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ये तो जानते होंगे दशरथ मांझी कौन है, आई होप आपको पता होगा कि दशरथ मांझी कौन है। दशरथ मांझी वो हैं जिन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया था। अब आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे इंसान से जो बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें कोई आर्थिक मदद तो कभी किसी से नहीं मिली, घर वालों को लगा कि इनके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, इनको ले चलो, इनको ओझा के पास ले चलो, झाड़ फूक कराओ, इनके ऊपर से ये जो भूत चढ़ा है इस भूत को उतरवाओ। लेकिन ये भूत कोई वो भूत नहीं था जो लोगों को डराता हो, ये भूत तो था कि अपने गाँव के लिए कुछ कर दिखाना है। बात दरअसल ये थी कि भैया बिहार के एक छोटे से गाँव में जहाँ पानी नहीं आ रहा था, और वो गांव था गया में, अब पानी नहीं आ रहा था जिसकी वजह से जो गांव के जवान थे और इनका खुद का जो बेटा था वो गांव छोड़कर चला गया था। गांव छोड़कर जाने की वजह से ये देख रहे थे कि धीरे धीरे गांव के लोग कम होते जा रहे हैं, और ये कमी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ इसलिए गांव छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी नहीं आ रहा तो फसल सही से नहीं हो पा रही है, और इन सबके बीच में जो एक सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि हमारे गाँव में कोई नहर नहीं है। फिर क्या था, फिर इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, अपने सामान खोदने के लिए कुछ चीज़ें ली और चल पड़े। पहले तो दिन भर ये जानवरों को चराते थे, जानवर लेकर जाते थे, जब जानवर अपना चारा खाना शुरू कर देते तो उस दौरान ये वहीं पर पहाड़ काटना शुरू कर देते। धीरे धीरे लोगों ने इनको देखा, लोगों ने इनका मजाक बनाया कि अरे ये क्या हरकत है, ये कोई हरकत होती है, तुम क्या कर रहे हो ये। और वहीं पर कुछ लोग उनको आए और ये समझाने लगे कि तुम्हारे अकेले से कुछ नहीं होने वाला, तुम ये पहाड़ क्यों काट रहे हो, पानी आना होगा, अपने आप आएगा, सरकार कुछ करेगी, ये होगा वो होगा, हज़ारों बातें उनसे कही गई, बट जनाब वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वो लगातार पहाड़ काटना शुरू करते रहे, और ये पहाड़ लगभग बहुत ही लंबी एक नहर के रूप में कन्वर्ट हो गया। लोगों ने सोचा कि भैया इन पर तो चढ़ गया है भूत। घर वालों को पता चला कि इनके घर का एक मेंबर बाहर जा करके अकेले कुल्हाड़ी ले गई, फावड़ा ले करके बस लगा हुआ है पहाड़ काटने में। लोगों ने सोचा इन पर भूत चढ़ गया। परिवार वालों ने उनको पकड़ा और सीधे ओझा के पास ले गए। ओझा का तंत्र मंत्र करवाया गया ये सोच कर कि ये भूत उतरेगा, अकल आएगी तो पहाड़ काटना छोड़ देंगे, हो सकता है इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। हर तरह की चीज़ें करा कर देख ली, झाड़ फूंक भी हो चुकी थी, लेकिन ये भूत नहीं उतरा जनाब, ये भूत यूँ ही चलता रहा। कई सालों तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पहाड़ काटे बिना किसी उम्मीद के। धीरे धीरे ये पहाड़ कट कर नहर के रूप में आ चुके थे, और जब बारिश हुई तो इस बारिश में उनके गांव तक पानी भी पहुंचा। जी हाँ, ये थी उनकी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो इम्पॉसिबल लग रही थी, जो लग ही नहीं रहा था शायद कोई पूरा करता। भैया दशरथ मांझी एक वो शख्स थे जिन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो कहीं ना कहीं उस पहाड़ की वजह से मर गई थी, उन्होंने उनको खो दिया था।
उनकी डेथ हो चुकी थी और बस वो उनके प्यार में पागल हो चुके थे। वो जानते थे कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है, जब कोई अपना चला जाता है तो तकलीफ़ क्या होती है। वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते थे और इसीलिए उन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बनाया ताकि कोई और किसी से ना बिछड़े, कोई और किसी से जुदा ना हो पाए, सिर्फ एक रास्ते की वजह से किसी और को ये दिन ना देखना पड़े। वहीं पर ये जनाब ऐसे थे जिन्होंने देखा कि जब गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, वजह सिर्फ नहर का पानी है, तो इन्होंने ठान लिया कि मैं खुद ही नहर बनाऊंगा, सरकार का इंतज़ार भी मुझे नहीं करना। धीरे धीरे करके भले ही लोगों ने इनको कुछ भी करार दिया हो, पागल कहा हो, इनके ऊपर भूत चढ़ गया हो कहा हो, इनको ओझा के पास लेकर गए हो, इवन ये भी कहा हो कि तुमसे ना हो पाएगा, जो अक्सर हम भी सुनते रहते हैं, अक्सर चार लोगों की फिक्र में हम काम करना छोड़ देते हैं। इनको तो चार नहीं 400 लोगों ने आकर ताने मारे थे, खुद की फैमिली भी सपोर्ट में नहीं थी, बट जुनून ऐसा था कि उस पहाड़ को काट कर नहर तैयार की गई और जब बारिश हुई तो उसी नहर से पानी बहकर गाँव तक भी पहुँचा और फसलें लहरा रही हैं। इसके बाद बिहार सरकार ने इनको पुरस्कार भी दिया। इसके अलावा लोगों ने इनकी बहुत तारीफ की, बट तारीफ से किसी का घर नहीं चलता बॉस। जी हाँ, हम आपको बता दें, इन्हें कोई आर्थिक मदद कभी किसी से मिली ही नहीं। ये आज अपनी पत्नी के नाम से दो बड़े तालाब खोद रहे हैं जिससे पानी इकट्ठा हो सके और उनके गांव में तालाब भी हो सके। बट कमाल की बात ये है, ये इंसान जो लोगों के लिए इतना कुछ करता है, जो अपने गाँव के लिए नहर बनाते हैं, अपने पत्नी के नाम पर तालाब खोदने में लगे हुए हैं, वो इंसान आज भी सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के घर के अंदर रहता है। पुरस्कार तो मिला है लेकिन मदद नहीं, आर्थिक मदद नहीं। और ये इंसान का नाम अगर आपको मैं बता दूं तो शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन चलिए हम आपको बता ही देते हैं, इनका नाम है लौंगी भुइया। लौंगी भुइया ये इनका असल नाम है और ये बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि यार उम्र का तकाजा है, उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हम क्या ही कर लेंगे, अभी तो मेरी बैठ के खाने की उम्र है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, ये सारी बातें नहीं सोचते थे। लोग इनसे कहते भी थे कि भैया घर पे बैठो सुकून से, दाल रोटी खाओ। वो कहते नहीं, दाल रोटी खाने से क्या होगा, हमारे गाँव को पानी की ज़रूरत है और उस पानी की ज़रूरत को पूरा करने का जिम्मा इन्होंने अपने कंधों पे उठा लिया। तो वही कहते हैं भाई कि जुनून की ना कोई सीमा नहीं होती, सपनों की कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर आप कुछ कर दिखाने का जुनून रखते हैं तो उसको मुकम्मल करने की ताकत भी आपके अंदर होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातें सुनकर पीछे हट जाते हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप दूसरों से चिल्ला चिल्ला के कुछ बताते हो हम ये करने वाले हैं, तो अक्सर वो आपका काम नहीं होता। इसलिए चुपचाप अपना काम करते जाइए, एक दिन खुद खुदा भी आकर बोलेंगे बता तेरी रजा क्या है। तो आइए एंजॉय करते हैं इंस्पायरिंग सेगमेंट को। ये थी हमारी पहली कहानी लौंगी भैया के बारे में। अगली कहानी किसकी होगी सुनने के लिए बने रहिए, आप सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। फिलहाल लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक और आप एंजॉय करें केके की आवाज़ में आया रे, जो कि हमारी प्रीति जी भी आ चुकी है, हमारे मिश्रा जी भी आ चुके हैं, तो आपका भी स्वागत करते हैं और आप एंजॉय करते रहिए। और इसके बाद हम मिलेंगे बैक टू बैक का आपके लिए पेश है कुछ बेहतरीन नगमे, पहला केके की आवाज़ में, दूसरा आपके अपने पंकज जी की आवाज़ में ना कचरे की था, क्योंकि आजकल एक गाना है जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और वो गाना मुझे कहीं ना कहीं इसी गाने की याद दिलाता है। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

स्वागत करते हैं एक बार आप सभी का वापस से आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी मॉर्निंग चौकी रति, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और ऑफ कोर्स चल रहा है आपका अपना इंस्पायरिंग सेगमेंट, यानी कि वो कहानियां जो आपको इंस्पायर्ड करती हैं। तो इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक ऐसे बच्चे की, या फिर कहें तो एक ऐसे लड़के की, जिसने मात्र 87,000 के अंदर एक ऐसा ड्रोन बनाया जो चाइना के रडार में भी नहीं आ रहा था और जिसको इंडियन डिफेंस ने 3.5 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया है। जी हाँ, हम आपको बता दें साइचेन और गलवान के बॉर्डर पर लोगों पर नजर रखना, दुश्मनों पर नजर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इंडिया की आर्मी को चाइना के जैमर्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। इंडिया जो भी ड्रोन्स बनाते, जो भी काम करते, उसे कहीं ना कहीं चाइना के जैमर्स रडार से कैप्चर करके जैम कर लेते, उसका GPS ट्रैक कर लेते। और जो अभी तक इंडिया के हाथ में था, इंडिया के कंट्रोल में था, जो इंडिया के लिए काम कर रहा था, वो अचानक से वो चाइनीज कंट्रोल में चला जाता, उसे चाइना कंट्रोल करने लग जाता। और इसी बात से इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। वो अपने लोगों को उन बर्फीले पहाड़ियों पर ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इन पहाड़ियों पर चढ़कर देखना, लोगों पर नज़र रखना, खड़ी पहाड़ियाँ, बर्फीली पहाड़ियाँ। इस दौरान GPS या फिर ड्रोन कहें तो वही सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार था लोगों पर नज़र रखने के लिए। लेकिन चाइना के जैमर्स उन्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि बार बार उनका GPS हैक कर लिया जाता, उसे रडार से ट्रैक कर लिया जाता और उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। इस बात से इंडियन

0: आर्मी बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी और उस वक्त निकल कर आया एक ऐसा लड़का जो अपनी उम्र में तो बहुत छोटा था लेकिन उसके कारनामे इतने बड़े हुए कि खुद रक्षा मंत्रालय ने उसे 3.5 करोड़ रुपए ऑफर करके उसका वो आविष्कार, वो रडार में ना आने वाला ड्रोन खरीद लिया। हिमाचल प्रदेश के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 5वें सेमेस्टर के एक छात्र ने ऊंची ऊंचाई वाले जितनी भी जगह थी उनके लिए, जब उन्होंने देखा कि सारे जैमर्स हमारे ड्रोन्स को कैप्चर कर लेते हैं, रडार में ढूंढ लेते हैं और इसी वजह से हमारी इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, तब उस लड़के ने, जिसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं, बस उसने सोच लिया था कि अब और नहीं, अब मैं हूँ तो मैं कुछ करूँगा, अपने देश के लिए कुछ करूँगा, अपनी इंडियन आर्मी के लिए कुछ करूँगा। हिमाचल प्रदेश का रहने वाला ये छात्र कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 5वें सेमेस्टर का स्टूडेंट है और वहीं पर इसने मात्र अपने कमरे में बैठकर 87,000 रुपीस के अंदर, यानी कि 87,000 रुपए में उसने एक ऐसा ड्रोन बनाया था जो दुश्मन के रडार में आता ही नहीं था। जी हाँ, हम आपको बता दें, उसका ये ड्रोन चाइना के रडार में कैप्चर नहीं हो रहा था, ना इसका जीपीएस वो ट्रैक कर पा रहे थे, ना उसको हैक कर पा रहे थे, ना उसका इस्तेमाल कर पा रहे थे। चाइना के हाथ से ये ड्रोन बिल्कुल बाहर था, अकेले बैठकर उसने इस ड्रोन को बनाया था। हम आपको बता दें, इस ड्रोन को बनाने से पहले उसने ओपन कार्डबोर्ड ड्रोन प्रतियोगिता में भाग भी लिया था। इस प्रतियोगिता में भारत भर के बहुत सारे लोग आए थे, प्लस साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाओं के लगभग 50 टीमों ने भाग लिया था। शर्मा जी की टीम, यानी कि इस लड़के की टीम, चौथे स्थान पर रही थी और इसको 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी के अलावा अब ये जो ड्रोन उसने बनाया है उसमें मात्र 87,000 रुपए खर्च किए गए थे और उसका एक नया ढांचा तैयार किया गया था। अब आप जानना चाहते होंगे कि इस महान हस्ती का नाम क्या है, इस बच्चे का नाम क्या है, तो चलिए हम आपको बता दें, इनका नाम है सर्वेश शर्मा। हिमाचल प्रदेश के एक छात्र है ये और इनके पिता दिहाड़ी मजदूरी किया करते हैं। इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है और जहाँ 50 टीमें मिलकर दुनिया भर से, भारत भर से जो 50 टीमें आई थीं, जहाँ सब लोग अपनी ड्रोन प्रतियोगिता में ड्रोन दिखा रहे थे, वहाँ पर इन्होंने भी अपने ड्रोन को शामिल किया था और वहाँ इन्होंने 4th place पर जीत हासिल की थी। 4th place पर आने के लिए इनको 10 लाख रुपए मिले थे और उन्हीं रुपयों से इस्तेमाल करके इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा ड्रोन बनाया जो चाइना से थोड़ा बाहर था। आपको भी पता है, चाइना अपने रोबोट्स और अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चल रहा है। इवन आजकल चाइना के तारों पर एक सांप नजर आता है और वो सांप कोई मामूली सांप नहीं है, वो करंट से चलने वाला है जो देखता है कि बिजली के तार कहाँ टूटे हैं, कहाँ फॉल्ट आया है, और उसको कोई इंसान भी नहीं चलाता, वो खुद बिजली की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता रहता है, उसको ठीक भी करता है। तो भाई, जहाँ चाइना इतना आगे चल रहा है टेक्नोलॉजी में, वहाँ उसको बीट करना, अपनी आर्मी को हेल्प करने का सपना लिए ये जनाब सामने आए थे, सर्वेश शर्मा। ये तो हम कई बार कह देते हैं कि भैया कि तुमसे तो रहने दो, ये सारे ख्वाब छोड़ दो, सारे सपने छोड़ दो, बट अगेन फिर से यहाँ पर वही साबित होता है कि जब आप चिल्लाते नहीं हैं, जब आप किसी को बताते नहीं हैं, तो आपके कारनामे पूरी दुनिया में शोर मचाते हैं, बट वहीं जब आप खुद ही इतना शोर मचा लेते हैं तो फिर आपकी बातें बातें ही रह जाती हैं। सर्वेश शर्मा को रक्षा मंत्रालय की तरफ से 3.5 करोड़ रुपीज ऑफर करे गए थे और उन्होंने अपना ड्रोन इंडियन आर्मी को दे दिया है। अब उस ड्रोन का इस्तेमाल करके इंडियन आर्मी साइचान और गलवान के बॉर्डर पर नजर रख रही है, चाइना वाले उस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं और उसको हैक भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई, ये तो कहानी थी एक ऐसे स्टूडेंट की जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, 5th semester में है, जिसका दिमाग अगर आप अभी नोटिस करेंगे तो ऑफकोर्स बहुत आगे जाएगा। लेकिन हम आपको एक और भी बात बता दें, भारत में जब भी कोई टैलेंट नज़र आता है तो भारत का टैलेंट लेने के लिए सबसे पहले हाथ अमेरिका बढ़ाता है। चलिए देखते हैं कि सर्वेश जो अपने भारत के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, वो उनका फ्यूचर मुझे तो काफ़ी ब्राइट लग रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आपके बच्चे के अंदर भी कोई टैलेंट है ना, तो उसको दबाइए मत, उसे ये मत कहिए कि खाली भैया किताबों के पीछे पड़े रहो। 90% 99% ही सब कुछ नहीं होता है। समटाइम्स आपकी जो दूसरी चीजें हैं, आपकी जो क्राफ्टिंग का तरीका है, आपके जो खेल कूद का नजरिया है, वो भी बहुत कमाल का होता है। फिलहाल खेलकूद से मुझे याद आया, आजकल इंडिया बड़े मेडल्स जीत रहा है। आपने देखे होंगे एशियन गेम्स में इंडिया की लड़कियों ने और लड़कों ने दोनों ने धूम मचा रखी है। बट अफसोस की बात यह है कि हमारे भारत में क्रिकेट से ज़्यादा ध्यान हम किसी पर देते ही नहीं। इंडियन हॉकी टीम जीत रही है, इंडिया की बाकी टीम्स जीत रही हैं, बट हमको तो बस क्रिकेट की ही पड़ी रहती है। इसी वजह से हमारे सारे एथलीट जो कहीं ना कहीं भारत के लिए गोल्ड लेकर आते हैं, वो सब्जी बेच रहे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे होते हैं। अफसोस की बात है। फिलहाल लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं एक और कहानी के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय करते रहिए, और आई होप आपको इन कहानियों से कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलता होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत इंस्पायर्ड करते हैं अपने सपनों पर काम करने के लिए। अगर आपको भी करते हैं तो चैट बॉक्स में बताइए, और एंजॉय करते रहिए मेरे साथ आपका अपना मॉर्निंग का स्पेशल वाला शो गुड मॉर्निंग ओडा विद राजे उन्नति।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

बॉलीवुड के जब इन गानों को हम सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके जो बॉलीवुड के फेवरेट सुपरस्टार्स हैं, उन्हें हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं, जो कि कमाल की बात भी है। कभी कभी हमें लगता है कि ये हमारे सुपरस्टार्स बहुत कमाल के हैं, बट उनके छोटे छोटे एक्शंस जब हम नोटिस करते हैं तो हमें लगता है नहीं यार, हमने बेवजह इनको इतना नेम फेम दे रखा है। और वहीं पर एक ऐसे सुपरस्टार सामने आए हैं हाल फिलहाल में ही, जिनकी कहानी आपको इंस्पायर्ड कर सकती है। ना, उनकी कहानी थोड़ी अलग है। रीज़न है उनका फोकस। वो किस हिसाब से फोकस करते हैं, किस तरह से उनका कंट्रोल है खुद के बॉडी, खुद के माइंड पर, ये चीज़ हमारे इंस्पायरिंग सेगमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म, जो उसको वो ग्लोबल रूप से डेब्यू कर रहे हैं, अपने हॉलीवुड फिल्म के अंदर एंट्री कर चुके हैं, उसके लिए प्रमोशन कर रहे थे। और प्रमोशन करने के लिए वो मुंबई आए थे। मुंबई में लोग उनसे मिलने गए, मीडिया वहाँ पहुँची, एंड कहा जाता है कि ये सुपरस्टार अपने आप में बहुत सिंपल, बहुत सादा है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को पहाड़ों, पेड़ों और बर्फीले पानी के बीच में बनाया है। इनका शरीर आम शरीर से थोड़ा अलग है। प्यार से लोग इन्हें कमांडर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी पहली फिल्म जो थी वो कमांडो थी और लोगों ने इनको बहुत पसंद किया था। बॉडीबिल्डर बेटे हैं, एंड हम आपको बता दें 3 साल की उम्र से ये भारत की प्राचीन युद्ध कला को भी सीख रहे हैं। हमेशा जंगल में मेहनत करते हैं, पेड़ों से लटकते रहते हैं, कहीं ना कहीं बर्फीले पानी के अंदर बैठ के भी ध्यान करते हैं। वो बर्फीला पानी जिसको हम छूना भी पसंद नहीं करते। ठंड के वक्त में अगर ठंडा पानी भी टंकी से आ जाए तो हम हाथ पीछे कर लेते कि ही तो बहुत ठंडा है, नहाएंगे नहीं भैया इससे। वहीं पर वो बर्फीले पानी के अंदर बैठ के खुद को ट्रेन कर रहे हैं। इनके पिता एक आर्मी ऑफिसर हैं और नाम है विद्युत। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड का सुपरस्टार आज हमारी लिस्ट में क्या कर रहा है, इंस्पायरिंग फिल्म, इंस्पायरिंग सेगमेंट में क्या कर रहा है। तो भैया, विद्युत के हाल फिलहाल में कुछ ऐसे कारनामे हैं जो बड़े वायरल हो रखे हैं और मुझे उन कारनामों में बहुत दिलचस्पी है। इसके पीछे रीज़न है उनका माइंड का फोकस। वो किस हिसाब से, किस बेखुदी के साथ फोकस करते हैं। अब आप अगर अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए खोल कर रखें तो आपकी आंखों से पानी आता है और आप फटाक से अपनी पलके झपका लेते हैं। कई बार जब हम गेम खेलते हैं कि देखते हैं किसकी पलके पहले झपकेंगी, तो बहुत ज़्यादा देर तक हम रुक भी नहीं पाते, बस इंतज़ार करते हैं कि शायद वो हार जाए। और कई बार अगर वो नहीं हारता, वो अपनी ज़िद पे बैठा हुआ है, तो हम खुद ही अपनी पलके झपका कर ही कह देते हैं जाओ जाओ मैं नहीं खेल रहा। लेकिन विद्युत ने अभी अभी कुछ ऐसा किया है जो भैया उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और आई होप उनके हाथ पैर भी कांप रहे होंगे, क्योंकि लगातार 16 मिनट के लिए उन्होंने अपनी पलके ही नहीं झपकाई। वो ध्यान मुद्रा में तो यूं चले गए, ऐसा लगा वो कोई स्टैचू हैं। जी हाँ, उन्होंने लगातार 16 मिनट के लिए अपनी पलके नहीं झपकाई। 16 मिनट बिना पलके झपकाए एकदम शून्य के रूप में खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक स्टैचू है। इस दौरान बैकग्राउंड में उनका संगीत बजता रहा, विद्युत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने पलके नहीं झपकाई। आप भी अगर कभी ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, या अपनी आंखों को खोल कर रखने की कोशिश करते हो, तो आपको भी पता होगा कि आप कितनी जल्दी अपनी पलके झपकाते हैं। आपको यकीन भी नहीं है, लेकिन आप 1 मिनट में न जाने कितनी दफ़ा अपनी पलके झपका लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बट वहीं पर लगातार 16 मिनट के लिए बिना पलके झपकाए खड़े रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनकी आ रही है एक फिल्म और इन्होंने हॉलीवुड में फिल्म की हुई है। अब आपको बता दें, उस फिल्म में इन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर का रोल अदा किया है जो अपने योगा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नाम है धालसिम। धालसिम का किरदार ये निभा रहे हैं। फिल्म का नाम है स्ट्रीट फाइटर। दुनिया भर में धालसिम को एक शांत स्वभाव और रहस्यमय योगी प्लस योद्धा के रूप में माना जाता है, और हॉलीवुड को भी पता था ये योद्धा उन्हें कहाँ मिलेगा। वो सीधे इंडिया आए, उन्होंने विद्युत से बात की और उन्होंने विद्युत को ये ऑफर किया।
अब आपको बता दें, स्ट्रीट फाइटर में उनका जो टीजर रिलीज किया गया उसमें विद्युत बहुत ही कमाल के नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही उनके जो ध्यान करने का तरीका है, उनके जो फोकस करने का तरीका है, वो जो भारत की प्राचीन युद्ध कला को सीखते आ रहे हैं, उनके खुद के फादर जो है वो आर्मी में है, वो आर्मी में सर्व कर रहे हैं और उन्होंने लगातार खुद को ट्रेंड किया है। जहां लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो आराम की जिंदगी की तलाश में रहते हैं, वहीं विद्युत का कहना है कि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करता है। और यही बात भैया मैं भी मानती हूं कि मोटिवेशन तो एक वक्त के बाद खत्म हो जाता है, आपको हर दिन मोटिवेट होने की जरूरत है, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है जो आपको हर वक्त मोटिवेटेड रखती है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ जरूर करके ही दिखाते हैं। डिसिप्लिन में दर्द बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है, पेन बहुत होता है, और डिसिप्लिन सब्र बहुत ज़्यादा मांगता है। डिसिप्लिन आपको अगर देखना है तो आप फाइटर्स के अंदर देख सकते हो, आप मेडिटेटर्स के अंदर देख सकते हो, या उनके अंदर देख सकते हो जो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए बैठे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत नेचुरल वे में अपना वेट लॉस कर रहे हैं, वो भी मोटिवेशन हो के नहीं, मोटिवेटेड तो वो नहीं हो पाते हैं, कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी खुद से नफरत है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो सालों तक चलती है। लगातार खुद को उन चीज़ों से रोकना जिनसे आप नहीं रोक पा रहे हैं। एक नशा होता है फास्ट फूड का, एक नशा होता है ख़राब आदतों का, उन आदतों से खुद को दूर रखना, उन चीज़ों से खुद को दूर रखना जो आपको नुकसान पहुंचा रहे, जो ट्रेंड में चल रही, जहां हर दूसरा बंदा आपको हाथ में न जाने क्या क्या लेकर घूमता नज़र आएगा, कोक पीता नज़र आएगा, वहीं अगर आप उसको छोड़कर कुछ ऐसी चीज़ें पी रहे हैं जो आपके कल्चर में है, जो शायद आपके लिए अच्छी हैं, आपके विल पावर के लिए अच्छी हैं, दैट्स हिट्स द डिफरेंट। अब आप भी जानते हैं कि आजकल अल्कोहल बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता जा रहा है, हालांकि जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उसने अल्कोहल कंज्यूम करना धीरे धीरे कम कर दिया है, और अल्कोहल कंपनी की तरफ से सच में ये आया है कि नई जनरेशन अब इसको कंज्यूम नहीं करती, वो प्रोटीन के पीछे भाग रही है। लेकिन प्रोटीन को क्या सिर्फ हम प्रोटीन पाउडर से ही पूरा कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए और भी तरीके होते हैं, बट यही चीज है जो आपको डिसिप्लिन में समझनी होगी। डिसिप्लिन कोई ट्रेंड नहीं है, डिसिप्लिन आपके सदियों से चला आ रहा एक चीज़ है, जिसको आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ को बेहतर करते हैं, माइंड का फोकस बढ़ता है, और इसी फोकस को रिप्रेजेंट किया है विद्युत ने अपने इस प्रमोशनल इवेंट में। तो फिलहाल लगातार 16 मिनट के लिए अपनी आंखें खोल के रखना बहुत बड़ी बात होती है, कभी आप ट्राई कीजिएगा बैठ करके, दिए की तरफ नज़र रखिएगा। कहते हैं अगर फोकस बढ़ाना हो तो कैंडल के सामने बैठकर कैंडल की लौ पर ध्यान देना, इसकी फ्लेम पर ध्यान देना, और लगातार बिना पलके झपकाए उसे देखने से आपका फोकस बढ़ता है, लेकिन आंखों में दर्द होता है, आंसू आते हैं। अगर आप कंट्रोल कर ले जाते हैं तो बताइएगा, चैलेंज लीजिए, खुद को चैलेंज कीजिए और देखिए कि आप इस कदर फोकस में लीन हो सकते हैं, कि आप कर सकते हैं, आपका माइंड इतना फोकस कर सकता है। अगर कर सकता है तो मुबारक हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं। तो भैया मोटिवेशन अपने पास रखिए, लेकिन उससे भी आगे रखिए खुद के डिसिप्लिन को, खुद के विल पावर को। कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत पसंद होंगी, बट अगर वो आपके लिए अच्छी नहीं है तो उन्हें छोड़ना बिल पावर और डिसिप्लिन का काम है। फिलहाल लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, और ऑफ कोर्स अब वक्त है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ बढ़ने का। तो आज का शो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। बस इस गाने के बाद आपके मैसेजेस की तरफ आते हैं, आपके फीडबैक्स को लेने आते हैं, आज का शो आपने कितना इंजॉय किया, और सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कहानी आपको किसकी लगी, क्या आपने सबसे ज़्यादा मज़ेदार आपको लगा बताइएगा ज़रूर। फिलहाल सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

आहा, क्या बात है भैया, ये गाना सुन के नैनेक्सम की याद आई ना, आई ना, आई ना, झूठ नहीं बोला, आई ना आपको याद, हाँ मुझे भी आई। फिलहाल आइए बढ़ते हैं आपके अपने चैट बॉक्स के अंदर और आपके कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, उन मैसेजेस को पढ़ लेते हैं। कौन है हमारे साथ जुड़ा हुआ? हमने जो आखिरी मैसेज पढ़ा था वो था हमारे सचिन जी का। इसके बाद सविता दुबे जी का मैसेज आया है, शुक्रिया मैम, लाऊंगी आपके लिए, ओ मेरे लिए संदेश आएगा, थैंक यू सो मच। एंड फिलहाल आप खुद ही आ जाइए, आपकी मुस्कुराहट देख के ही मेरा दिन मीठा मीठा हो जाता है। पप्पू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? एंड मिश्रा जी का मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप मिश्रा जी? एंड प्रीति शुक्ला जी फ्रॉम बहराइच जुड़ी हमारे साथ, उन्नति जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप? आगे श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, जिन जिन पर दुनिया ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ये बात तो भैया सच है कि अगर आप पर कोई हंसता है तो यकीन मानिए आप इतिहास रचने वाले हैं, लेकिन काम आपको लगातार करना पड़ेगा, रुकना नहीं। अगर आप रुक गए तो फिर इतिहास के पन्नों में नाम नहीं दर्ज होता है। इतिहास के पन्नों में नाम उन्हीं का दर्ज होता है जो स्ट्रगल से पीछे नहीं हटते, जिन्हें इस बात का डर नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते ही रहते हैं, लोग आज आपकी बुराई कर रहे हैं, कल आपके पक्ष में आपकी तारीफ करेंगे, तो लोगों का तो काम है कहना। और इसीलिए राजेश खन्ना बहुत पहले ही कह के चले गए थे कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो क्योंकि लोगों का तो काम है कहना। फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, और अगला मैसेज जो है एक्चुअली हमारे पास वो है इरफान शाह जी का, गुड मॉर्निंग टू यू, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और गाना अगला इतना ज़बरदस्त है कि बस अब मैं सोच रही हूँ आपके लिए प्ले कर ही दूँ, लेकिन गाने को लेकर के तारीफें आ चुकी हैं सविता जी की तरफ से, महेंद्र दीपन जी की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस स्टोरी लिखा है हमारे आर के जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और आर के जी ने लिखा है, वाकई इस बार काफ़ी मेडल लाया है इंडिया, लेकिन आपने एक कड़वा सच भी बयां कर दिया है कि दुर्भाग्य इस देश का है कि मेडल लाने वाले सब्जी बेच रहे हैं। जी हाँ, ये बात तो है कि भाई हमारे लड़के, हमारे बच्चे और हमारे रहने वाले, हमारे देश के होनहार एथलीट्स मेडल तो ले आते हैं, बट हम उन्हें सही पहचान नहीं दे पाते, उन्हें हम सही जगह नहीं दे पाते हैं। बस हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया में मेडल आ जाए, बट जब मेडल आ जाता है तो उसका क्या, फिर उस इंसान का क्या जो मेडल लेकर आया है? ये सवाल तो आपको खुद से करना ही पड़ेगा, है ना। एंड सविता जी ने बहुत सारी इमोजीज भेजी हैं, लिखा है, विद्युत जी अपने जीवन में उन्नति करें, थैंक यू सो मच। आसिफ अंसारी जी फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना हमारे साथ जुड़े हैं, शो तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड शो, लिखा है हमारे पप्पू जी ने, थैंक यू सो मच। एंड महेंद्र दीपन जी का मैसेज आया है, उन्नति मैम जी आज का आपका शो सच में बहुत अच्छा लगा, एक से बढ़कर एक इंस्पायरिंग कहानियों ने दिल छू लिया है और उसके साथ इतने शानदार गाने, क्या ही कहना। सच बताऊं मैम, मन कर रहा है आज का शो 2 घंटे और चलता रहे, आपकी आवाज़ और आपकी बातें सुनते सुनते टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब ये तो होता है, मैं जब भी आती हूँ टाइम धोखा दे जाता है, बट कोई बात नहीं, आपसे 3 से 4 वापस से मुलाकात होगी। रोशनी जी लिख रही हैं, उन्नति मैम जी आज का आपका शो सच में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच एवरीवन। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त अब आपसे विदा लेने का, तो आपसे चाहूंगी इजाजत, अब मुलाकात होगी आपसे 3 से 4 कॉलोनी गोंडा में आपकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए, तो अपनी फरमाइशें करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इंजॉय करते रहिए, आप सुन रहे गोंडा का अपना वाला FM रेडियो 89.6 FM, और आपको छोड़ के जाते हैं के की आवाज के साथ, भूल भुलैया से इंजॉय कीजिए लबों को, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9281976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
8: सत श्री अकाल, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त जया और आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर आपका अपना शो गांव की गूंज। आज हमारी पूरी टीम यानी मैं, समता दी, गीता दी और किरण दी खड़े हैं पंजाब की उस पावन धरती पर जहां हर सांस में मेहनत की खुशबू है और हवाओं में घी, गुड़ और प्यार की मिठास खुली हुई है। यहाँ की मिट्टी जैसे हर आने वालों को अपनेपन से गले लगा लेती है।
9: बिल्कुल सही कहा जया, जैसे ही हमारी गाड़ी ने इस खूबसूरत गांव नूरपुर कला की सीमा को छुआ, खिड़की से बाहर का नजारा देखकर तो मैं तो जैसे कुछ पल के लिए खो ही गई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी कलाकार ने पूरे खेतों पर पीले रंग की सुनहरी चादर बिछा दी हो। दूर दूर तक लहलहाती सरसों, उनके बीच से गुजरती हुई हवा और वो हल्की सी मिट्टी की खुशबू दिल को एक अजीब सी शांति दे रही थी।
10: और सिर्फ खेत ही नहीं समता, यहाँ के लोग भी उतने ही रंगीन और दिलदार हैं। रास्ते में हमें जो भी मिला, हर किसी ने मुस्कुराकर जी आया नू कहकर हमारा स्वागत किया। ऐसा अपनापन शहरों में कहाँ देखने को मिलता है। और गीता दी, आपने देखा वो बुजुर्ग बाबा जी जो बरगद के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे हुए हैं, देखिए कैसे हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं।
11: हाँ किरण, मैंने उन्हें बहुत गौर से देखा। उनकी सफेद दाढ़ी, रंग बिरंगी पगड़ी और चेहरे की झुर्रियों में छिपी वो गहरी मुस्कान, ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पर पूरे जीवन की कहानियाँ लिखी हूँ। जब हम उनके पास से गुजरे तो उन्होंने धीमे से कहा, पुत्र खुश रहो, रब रखा। उस एक आशीर्वाद में इतना स्नेह था कि मेरा तो दिल भर गया।
8: सच में यही तो है असली पंजाब, जहाँ खेतों में हरियाली है, दिलों में सादगी है और हर चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। यहाँ की हर गली, हर पेड़, हर हवा का झोंका जैसे कोई कहानी कह रहा है।
9: और जया, क्या तुमने गौर किया, दूर से ढोल की हल्की हल्की आवाज भी आ रही है। लगता है गांव में कहीं और छोटा सा जश्न भी चल रहा है, शायद फसल की खुशी या फिर कोई पारिवारिक समारोह हो सकता है। यहाँ तो हर छोटी बात भी उत्सव बन जाती है।
10: और हाँ, वो देखो उधर खेतों में काम करते किसान, उनके चेहरे पर थकान तो है लेकिन उससे कहीं ज्यादा संतोष और गर्व है। ये वही लोग हैं जो अपनी मेहनत से हमारे देश का पेट भरते हैं। सच में इनकी जिंदगी एक प्रेरणा है।
11: और इन खेतों के बीच से गुजरती हुई कच्ची पगडंडी को तो देखो, कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें अपने अंदर किसी सादगी भरी दुनिया में घसीट कर ले जा रही हो। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ हर पल जैसे ठहर कर जीने का मन करता है।
8: तो आइए आज हम आपको इस खूबसूरत गांव नूपुरपुर कला की सैर कराएंगे, यहाँ के लोगों से मिलवाएंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे और उनकी खुशियों और संघर्षों को महसूस करेंगे
9: और साथ ही जानेंगे कि इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो हर दिल को छू जाता है।
10: तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एक दिल को छू लेने वाला सफर,
11: और गांव की गलियों से खेतों की खुशबू तक
8: और इंसानियत की सबसे सच्ची आवाज के साथ
12: स्वागत है आपका गांव की गूंज में।

0: अरे वाह, इस मधुर संगीत ने तो जैसे पूरे माहौल में जान डाल दी है। ढोलक की थाप और हवा में घुली सरसों की खुशबू, दिल अपने आप ही झूमने लगता है। और इस वक्त हम खड़े हैं कहाँ? गुरु नाम सिंह जी के विशाल खेत में। और चारों तरफ नजर दौड़ाइए, जहाँ तक आंख जाए बस हरियाली ही हरियाली है। सच कहूँ, यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि इसे पंजाब का अन्न भंडार भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।
1: बिल्कुल किरण दी, और देखो ना, इस मिट्टी का रंग भी कितना गहरा और समृद्ध है। जैसे इसमें वर्षों की मेहनत, परंपरा और प्रकृति का आशीर्वाद मिला हो। गीता दीदी, आप तो हमेशा बारीकियों पर ध्यान देती हो, आपको यहाँ की खेती में सबसे खास क्या लगा?
2: यहाँ आकर सबसे ज्यादा जो चीज दिल को छूती है वो है परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम। एक तरफ पुराने समय के वो कुएं जिनमें कभी बैलों के सहारे पानी निकाला जाता था, उनकी यादें आज भी जिंदा हैं, और दूसरी तरफ आज की किसान ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम और सोलर पंप जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: अरे वाह, मैंने गौर किया कि यहाँ के खेतों में जो पानी है उसकी एक बूंद भी बेकार नहीं जाती। हर चीज को इतने व्यवस्थित तरीके से किया जाता है कि प्रकृति का सम्मान भी बना रहे और फसल भी अच्छी हो।
2: बिल्कुल, यहाँ का किसान अब सिर्फ हवा चलाने वाला ही नहीं रहा, बल्कि वो एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति बन चुका है। उसे पता है कि किस मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, कितनी खाद देनी है और पानी का सही उपयोग कैसे करना है। यही वजह है ना कि यहाँ की जमीन हर साल सोना उगलती है।
3: पंजाब को पांच नदियों की धरती भी कहा जाता है, और उन्हीं नदियों के आशीर्वाद इन खेतों में साफ दिखाई देते हैं। वो देखिए, वो सामने बहती नहर चांदी की लकीर जैसी चमक रही है।
1: सच में जया, ये नहरें ही तो इस गांव की जीवन रेखा है। जैसे शरीर में खून बहता है, वैसे ही इन खेतों में पानी बहता है, और पानी ही तो जीवन है, फसलों का भी और किसानों का भी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ खेती सिर्फ एक काम की नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यहाँ हर बच्चा, हर बुजुर्ग इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये खेत उनकी पहचान हो।
0: अभी मैंने गुरनाम सिंह जी से बात की थी तो उन्होंने बताया कि पुत्र, ये जमीन हमारी माँ है, हम इसे जितना प्यार देते हैं ये हमें उससे कई गुना वापस देती है। सुनकर सच में दिल भर आया।
2: और यही रिश्ता इस मिट्टी को इतना खास बनाता है, प्यार, मेहनत और विश्वास का रिश्ता।
3: तो दोस्तों, इस हरियाली, इस मेहनत और इस अनमोल मिट्टी को सलाम करते हुए चलिए इस ताजी हवा और खेतों की खुशबू के बीच सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: तो भी इसी तरह छू जाए जैसे हमें ये नजारा छू रहा है।
0: बने रहिए हमारे साथ,
2: क्योंकि सफर अभी जारी है गांव की गूंज के साथ।

0: अब हम गांव के अंदरूनी हिस्से में हैं और सच कहूं तो यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। यहां के घर ओहो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मजबूत, भव्य और किसी भी अकेलेपन से ये बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, जहां रंग बिरंगी पीढ़ियां छोटी कुर्सियां जैसे सजी हुई हों।
1: बिल्कुल समता, और जया तुमने एक बात और नोटिस की है, यहाँ के घरों की दीवारें सिर्फ सीमेंट की ही नहीं है बल्कि उन पर हाथों की मेहनत और कला की छाप है। मिट्टी के लेप से बने खूबसूरत पैटर्न, रंगों से कई चित्रकारी, औरतें इसे चौक पूर्णा कहती हैं। हर डिजाइन जैसे कोई कहानी कह रहा हो, खुशी की, त्योहारों की और परंपराओं की।
2: हाँ किरण, और ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये उनके जीवन का हिस्सा है। मालूम है, मैं एक घर के अंदर गई और वहाँ जाके देखा, फर्श इतना साफ कि जैसे अभी अभी धोकर चमकाया गया हो, बर्तन एकदम करीने से सजे हुए चमकदार, हर चीज अपनी जगह चकाचक।
0: बिल्कुल, और खास बात ये है कि ये सफाई सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी उतनी ही दिखाई देती है। मैंने ध्यान दिया, किसी भी घर के सामने कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं पड़ा है, हर गली साफ, हर मोड़ साफ सुथरा, जैसे पूरा गांव मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो।
1: और ये सब सिर्फ औरतों का काम नहीं है, यहाँ के पुरुष और महिलाएं दोनों ही बराबर मेहनत करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी खेतों में, कभी घर की देखभाल, कभी पशुओं की सेवा, हर काम दोनों समान मिलकर करते हैं।
2: और हाँ, मैंने एक घर में और देखा, चाची जी रसोई में तंदूर पर रोटियां बना रही थी और उनके साथ ही चाचा जी आंगन में झाड़ू लगा रहे थे और पशुओं को चारा भी दे रहे थे। दोनों के चेहरे पर थकान थी लेकिन उससे ज्यादा कहीं संतोष झलक रहा था।
0: और ये जो मेहनत है ना, यही इस मिट्टी की असली ताकत है। यूं ही नहीं कहा जाता है पंजाबियों के हाथों में सोना होता है, ये लोग जहां भी मेहनत करते हैं वहां समृद्धि अपने आप चली आती है।
3: सच में, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक भी हैं, ना सिर्फ अपने घर को साफ रखते हैं बल्कि अपनी जगह को भी उतना ही महत्व देते हैं। पेड़ पौधों का ख्याल रखना, पानी की बचत करना और गांव को स्वच्छ बनाए रखना, ये सब इनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है।
1: और देखो देखो, हर घर के बाहर छोटे छोटे गमले भी रखे हैं, कहीं तुलसी का पौधा, कहीं गेंदे का फूल, कहीं गुलाब, जैसे हर घर अपनी खुशबू से पूरे गांव को महका रहा हो।
2: देखो आंगन के उस कोने में वो जो बड़ा सा एक मिट्टी का तंदूर रखा है ना, उसकी तो बात ही अलग है। अभी अभी एक चाची जी ने हमें गरम गरम रोटी सेक कर खिलाई, जिस पर सफेद मक्खन इतना ज्यादा लगा हुआ था कि सच में रोटी का वजन संभालना मुश्किल हो रहा था।
0: और उस रोटी में सिर्फ स्वाद ही नहीं था, उसमें उनके हाथों की मेहनत और दिल का प्यार भी मिला हुआ था।
3: यही तो है पंजाब का असली दिल, मेहनत, सादगी, सफाई और ढेर सारा प्यार। यहाँ हर घर एक कहानी है और हर आंगन एक एहसास है
1: और हर इंसान एक मिसाल है मेहनत और जागरूकता की।
2: तो चलिए इस खूबसूरत जीवन शैली और इन सच्चे लोगों को दिल से सलाम करते हैं
3: और इस सादगी और प्रेम को समर्पित करता हुआ अब हमारा अगला गीत।

0: और इस समय हम लोग गांव के केंद्र यानी सांझी चौपाल पर हैं। और सच कहूं, यहां आकर ऐसा लगता है जैसे गांव की धड़कन यही बसती हो। इस विशाल बरगद के पेड़ को देखिए, इसकी जड़ों में जैसे वर्षों की कहानियां समाई हुई हैं। इसी छांव में बैठकर गांव के बड़े बुजुर्ग फैसले लेते हैं और शाम होते ही यही जगह हंसी और ठहाकों और किस्सों से गूंज उठती है।
1: बिल्कुल गीता दीदी, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा 4-5 बुजुर्ग एक साथ बैठे थे। कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, कोई अपनी पुरानी यादें सुना रहा था। एक बाबा जी कह रहे थे कि पहले के जमाने में फैसले भी दिल से होते थे और रिश्ते भी। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो आजकल कम ही देखने को मिलती है।
2: और यहाँ बड़े ही नहीं, यहाँ बच्चे भी चौपाल के आसपास खेलते नजर आ रहे हैं। कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह चौपाल हर उम्र के बच्चों को जोड़ने का काम करता है।
3: सही कहा समता दी, ये चौपाल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना है, जहाँ हर समस्या का हल, हर खुशी का जश्न और हर दुखी का सहारा है।
0: और हाँ, इसी चौपाल से जुड़ी एक बहुत बड़ी खास परंपरा है, सांझा चूल्हा। किरण, तुमने तो इसके बारे में सुना ही है ना?
1: हाँ गीता दी, और मैंने आज खुद भी देखा, कुछ घरों में आज भी लोग मिलजुल कर एक ही चूल्हे पर खाना बनाते हैं। कोई सब्जी बना रहा है, कोई रोटी बेल रहा है और कोई बच्चों को खाना परोस रहा है। वहाँ सिर्फ खाना ही नहीं बनता बल्कि रिश्ते पकते हैं।
2: सच में, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ सुख दुख में कोई अकेला नहीं होता है। अगर किसी के घर कोई परेशानी आ जाए तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है, और अगर खुशी का माहौल हो तो पूरा गांव एक साथ जश्न मनाता है।
3: यही तो है असली एकता, जहाँ मैं से ज्यादा हम की अहमियत होती है।
0: और चौपाल के इस माहौल में एक और चीज है जो दिल को बहुत खुश करती है, वो है यहाँ का अपनापन। मैंने एक बुजुर्ग दादी जी से बात की तो उन्होंने मुझसे बताया, बेटा यहाँ कोई पराया नहीं होंदा, सब अपने ही होंदे। सुनकर मन में, सच में मन भावुक हो उठा।
1: और देखो देखो, चौपाल से थोड़ी ही दूर पर वो खुला मैदान, वहाँ का जबरदस्त नजारा है।
2: अरे वाह, वहाँ तो कबड्डी की प्रैक्टिस चल रही है। क्या जोश है, क्या ऊर्जा है, हर खिलाड़ी जैसे मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा हो। कबड्डी कबड्डी की आवाज पूरे माहौल को और भी जोशीला बना रही है।
0: और इन नौजवानों को तो देखो, लंबे चौड़े मजबूत कद काठी, सच में हर एक गबरू जवान किसी शेर से कम नहीं लगता है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में जीत का जुनून साफ दिखाई देता है।
1: मैंने एक खिलाड़ी से पूछा, थकते नहीं हो क्या? तो वो हंस कर बोला, पंजाबी कभी थकते नहीं, बस थोड़ा रुक कर फिर दोगुनी ताकत के साथ खेलते हैं।
2: वाह, यही जज्बा तो पंजाब की पहचान है, मेहनत, हिम्मत और जोश का संगम।
3: और सिर्फ खेल ही नहीं, यहाँ के युवाओं में अपने गांव और परंपराओं के लिए गहरा लगाव भी है। वे आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए हैं।
0: सच में, ये चौपाल, ये सांझा चूल्हा, ये खेल का मैदान, सब मिलकर इस गांव की आत्मा को जीवित रखते हैं।
1: और यहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो, ताकि हम इन पलों को पूरी तरह से जी सकें।
2: अब तो मन कर रहा है कि हम भी इस माहौल का हिस्सा बन जाएं, कभी चौपाल में बैठकर बातें करें और कभी कबड्डी खेलें, तो कभी सांझे चूल्हे पर रोटी सेकें।
3: बिल्कुल, तो चलिए इस उत्साह, इस अपनेपन और इस जीवन संस्कृति को सलाम करते हुए,
1: और हाँ, थोड़ा जोश आपके दिलों में भरते हैं,
0: ताकि आप भी इस ऊर्जा को महसूस कर सकें
2: और झूम उठे इस रंग में।
3: पेश है एक दमदार भांगड़ा बीट जो आपके दिल की धड़कनों को भी थिरकने पर मजबूर कर देगी।

0: जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, पूरे नूरपुर कला में एक अजीब सी शांति उतर आई है। देखिए, आसमान के रंग भी बदल गए हैं, नीले से सुनहरे और अब हल्के नारंगी से गहरे लाल में ढलते हुए। खेतों के ऊपर पंछी उड़ते हुए और घोंसलों की ओर लौट रहे हैं और हवा में एक ठंडी सी मिठास घुल गई है।
1: हाँ किरण, और इस वक्त गुरुद्वारा साहिब से आती अरदास की वो पवित्र आवाज सच में मन को भीतर तक शांत कर देती है। ऐसा लगता है जैसे हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा हो। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। उस आवाज में एक ऐसी शक्ति है जो सारे दिन शरीर की थकान और भागदौड़ को पल में मिटा देती है।
2: और देखो ना, जैसे ही अरदास की आवाज गूंजती है, गांव के लोग अपने अपने काम छोड़कर एक पल के लिए ठहर जाते हैं। कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कोई आंखें बंद कर लेता है। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि एक जुड़ाव है अपने विश्वास से, अपनी संस्कृति से।
3: सच में ये दृश्य दिल को छू लेने वाला है। शहरों में हम भागते रहते हैं समय के पीछे, काम के पीछे, लेकिन यहाँ हर पल जीने का एक अलग सलीका है। यहाँ शांति को महसूस किया जाता है और उसे जिया भी जाता है।
0: जैसे जैसे अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा है, गांव की गलियों में टिमटिमाते बल्ब और घरों के आंगन में जलते दिए एक अलग ही सुकून भरा माहौल बना रहे हैं। दूर कहीं से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही है और कहीं से रसोई में बनती हुई रोटियों की खुशबू।
1: वास्तव में किरण, यहाँ आकर यह एहसास हुआ कि असली सुकून ऊंची ऊंची इमारतों या महलों में नहीं है, बल्कि इन कच्चे पक्के रास्तों में, इन खुले आंगनों में और सबसे ज्यादा इन खुले दिलों में मिलता है।
2: और आज के इस एक घंटे के सफर में हमने सिर्फ एक गांव नहीं देखा बल्कि एक जीवन शैली को महसूस किया है। मेहनत, सादगी, अपनापन और एक दूसरे के लिए जीने का जज्बा, ये सब हमने अपनी आँखों से देखा, अपने दिल से महसूस भी किया।
0: और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि यहाँ हर इंसान मुस्कुराते हुए मिला, चाहे वो किसान हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के पास देने के लिए प्यार ही प्यार है।
1: और सच में हम यहाँ से सिर्फ यादें नहीं ले जा रहे हैं बल्कि एक सीख भी लेकर जा रहे हैं कि जिंदगी को सरल बनाकर, रिश्तों मजबूत बनाकर असली खुशी पाई जा सकती है।
2: और हमारी ये पोटली अब सच में भर चुकी है ढेर सारी प्यारी यादों से, लोगों के स्नेह से और इस मिट्टी की खुशबू से।
3: तो रेडियो सुनने वालों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। 89.6 FM गांव की गूंज की पूरी टीम, मैं जया, मेरे साथ समता दी, किरण दी और गीता दी लेते हैं आपसे विदा।
0: लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता क्योंकि हर गांव की अपनी एक कहानी होती है और हम उसे आपके पास लाते रहेंगे।
1: तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए गांव, नई मिट्टी और नई कहानियों के साथ।
2: तब तक आप भी अपने आसपास की खुशियों को महसूस कीजिए, अपने लोगों से जुड़िए
3: और याद रखिए, जब गांव समृद्ध होगा तभी देश मजबूत होगा।

0: नहीं जाता ना।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। नमस्कार आदाब, स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो जॉक की उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ लेकर के आपके वेंसडे का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम, जिसमें हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, यानी कि आपकी स्वास्थ्य की संगिनी। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए हम रेडियो ज्ञान असली और स्मार्ट एनजीओ के खूबसूरत पहल। आज हम बात करेंगे आपके इसी स्वास्थ्य की कड़ी में एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM की है गोंडा शहर की धड़कन।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9860 9816 9817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: दोस्तों, सुबह की शुरुआत अगर एक कप कड़क मीठी चाय के साथ ना हो तो लगता है ना कि दिन नहीं शुरू हुआ है, दिन बना ही नहीं है, कुछ खाली खाली सा है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इसी मिठास के पीछे कभी कभी एक खामोश बीमारी छिपकर बैठी होती है, जिसे हम आम भाषा में डायबिटीज या शुगर कहते हैं। शुगर क्यों होती है, किस लिए होती है, इवन आपको मैं कुछ आज ऐसे भी किस्से सुनाने वाली हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि वो लोग जो मीठा खाते ही नहीं है, जिन्होंने कभी मीठा लिया नहीं है, जो चीनी से दूरी बनाकर रखते हैं, उन्हें भी अगर डायबिटीज हो गई है तो क्या कारण है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने तो कभी मीठा खाया ही नहीं है, हम तो इतना मिठाई कभी खाते ही नहीं है, घर में चीनी भी बहुत कम इस्तेमाल होती है, चाय भी हम फीकी पी रहे हैं, इसके बाद भी हमें डायबिटीज हो गई, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है और डायबिटीज होने पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्या हर किसी को टाइप 2 डायबिटीज ही होता है, और अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो क्या है? क्योंकि भैया भारत जो है वो धीरे धीरे शुगर कैपिटल बनता जा रहा है, यानी कि डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे हर दूसरे घर में कोई ना कोई इस बीमारी से जरूर जूझ रहा है, कोई ना कोई जरूर आके कहता है कि नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चाय बना रहे हो तो मेरे लिए चीनी मत डालना, नहीं तो मेरा शुगर हाई हो जाएगा, मेरा शुगर बढ़ जाएगा। ब्लड में शुगर ऐसे क्यों बढ़ जाता है? क्या चाय पीना सबसे बड़ा गुनाह है, या फिर मिठाई खाना सबसे बड़ा पाप है? क्या है, क्यों है डायबिटीज, क्यों होती जा रही है, और आजकल बच्चों के अंदर भी डायबिटीज देखने को मिल रही है, तो ये कैसे होती है, कहाँ से शुरू होती है, ये सारी बातें करेंगे, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी एक समस्या है, यानी कि ये कोई बीमारी नहीं है जो आपकी जान ले सकती है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी जरूर है जो धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम जरूर करती है। ये झटके से आपकी जान नहीं लेती है, बट आपको धीरे धीरे धीरे धीरे परेशान बहुत ज्यादा करती है। आपको कई बार डाइजेशन का इशू होता है, लिवर का इशू होना शुरू हो जाता है, इवन आँखों पर भी इसका असर पड़ता है, आपकी किडनी पे भी असर पड़ता है। तो जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि आज बात करेंगे उसी खतरे की, उसी बीमारी की जो आपको पता भी नहीं है, इवन कई लोगों को पता भी नहीं है कि उनका ब्लड शुगर कब बढ़ जाता है। बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी। मिलते छोटे से इस ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में जरूर लगाइए। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौकी उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और मैं आपको बता दूं कि ये रेडियो क्या नस्ली और स्मार्ट एनजीओ की बहुत ही खूबसूरत पहल है जिसके तहत आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज की। अक्सर हम सोचते हैं ना कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बहुत मीठा खा सकता हूँ, मैं तो कभी मोटा भी नहीं होता हूँ। इतनी सारी अनहेल्दी चीजें हम खा लेते हैं, जंक फूड हम खा लेते हैं, इसके बाद भी हमारा मोटापा नहीं बढ़ता। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे फ्लेक्स करते हुए। इवन अगर आप इंस्टाग्राम पर भी किसी को देखते हैं और वो जिनका वेट नहीं बढ़ता, वो आकर के बताते हैं कि आपको पता है

आपकी लाइफस्टाइल, आपकी गलत आदतें, आपका गलत खान पान, इस पर डिपेंड करता है। डायबिटीज को आमतौर पर शुगर, मधुमेह के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज लंबे समय तक चलने वाली एक मेटाबॉलिक कंडीशन है। ये ब्लड शुगर में ग्लूकोज के बढ़ते हुए लेवल से पहचाना जाता है। ये सिचुएशन तब आती है जब बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करने में नाकाम रहती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन आपका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय करता है। इंसुलिन शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और कोशिकाओं की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तन करता है एंड कोशिकाओं की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तित करता है। जब ये प्रक्रिया ठीक तरह से काम नहीं करती है तो ग्लूकोज खून में जमा होने लग जाता है और बॉडी में कई तरह की परेशानियां पैदा होने लगती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि डायबिटीज कितने प्रकार की होते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइप 1 डायबिटीज। सबसे पहले कॉमन टाइप का ये डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डायबिटीज कहलाती है। शरीर का इम्यून सिस्टम जाने अनजाने पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है, जिसके कारण बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है और इसी के कारण शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। जब शुगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, वो सेल के अंदर एनर्जी के रूप में नहीं जा पाता है। सेल उस शुगर का इस्तेमाल नहीं कर पाती जो आपके शरीर में घूम रही है। फिर वही शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में यानी आपके खून में दौड़ना शुरू कर देता है और आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ नजर आता है। जी हाँ, आप जो भी चीजें खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, ये सब ग्लूकोज के फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है और यही ग्लूकोज आपका सेल यानी कि आपके बॉडी के सेल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन्हें एनर्जी के लिए। जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिलता है तो आपको थकान महसूस होती है, आपका शरीर धीरे धीरे अपना वजन कम करने लग जाता है और आपका यही ग्लूकोज ब्लड में घूमता है और इसी से पता चलता है कि इंसुलिन ना बन पाने के कारण और ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज घूमने के कारण ही आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो भारत में बहुत आम है वो है टाइप 2 डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते होने वाली एक कंडीशन है। इसमें बॉडी में इंसुलिन तो पैदा होता है पर बॉडी उसे यूज नहीं कर पाती। कोशिकाएं इंसुलिन के सामने सही से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। पैनक्रियाज, इससे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी में कमी और गलत लाइफस्टाइल होता है। जी आपने देखा होगा कई लोग खाना तो टाइम से खाते हैं और बहुत अच्छा भी खाते हैं, पर उनके लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें गलत होती है। जैसे कि एक जगह पर बैठे रहना, सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। वो 2000 कदम भी दिन का नहीं चल रहे हैं। जब वो 2000 कदम भी नहीं चल रहे तो कैलोरीज उनकी बर्न नहीं होती, जिसके कारण भी टाइप 2 डायबिटीज भारत में बहुत तेजी से देखी जा रही है। टाइप 2 डायबिटीज में मोटापा भी आता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। आपका बढ़ता हुआ पेट हो सकता है डायबिटीज यानी कि टाइप 2 डायबिटीज की निशानी हो। तो अगर आपका पेट बहुत तेजी से निकल रहा है और या फिर आपकी आदतें थोड़ी खराब हैं, यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक बस एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं या बेड पे लेटे रहते हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा अगर आपकी लाइफस्टाइल गलत है, आप खाना बहुत गलत खाते हैं, आप बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, स्पेशली जंक फूड, ऑयली खाना, मसालेदार खाना, अगर आप बाहर के चाट पकौड़े, टिक्की, समोसे, बर्गर, पिज्जा, इन सब में ही ज्यादातर अपना वक्त गुजारते हैं, इसको ही खाते रहते हैं, तो जी हाँ, आपको भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा मीठा ही खाएं तभी आपको डायबिटीज होगी। हालांकि हमारे भारत में ऐसा ही होता है, जब भी कोई बच्चा मीठा खाता है तो उसे सबसे पहले रोका जाता है कि नहीं नहीं मीठा नहीं खाना, मीठा खाने से डायबिटीज होती है। बट सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज होती है, ये जानकारी सही नहीं है। जी हाँ, मीठा खाने से अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो डायबिटीज हो सकती है, बट सिर्फ मीठा खाने से ही होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसके अलावा आपकी गलत लाइफस्टाइल, आपका गलत खान पान जिसमें आप बाहर की चीजें बहुत खाते, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ऐसी चीजें ले रहे हैं जो जंक फूड में आती, जो फास्ट फूड में आती हैं और उसे एक लंबे समय से ले रहे हैं, यानी कि
यानी कि आप सुबह शाम 2 से 3 बार यही खाते हैं, फल और सब्जियों का सेवन कम करते हैं, तो आपको भी ये डायबिटीज हो सकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं, इसके चलते शरीर इंसुलिन की प्रति कम रिएक्ट इसके चलते इंसुलिन शरीर के प्रति कम रिएक्ट करता है। आमतौर पर ये सिचुएशन डिलीवरी यानी बच्चे के जन्म के बाद सही हो जाती है।

0: लेकिन इसके चलते आगे जाकर आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो महिलाओं के अंदर अगर प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको डायबिटीज का लक्षण दिखा है या डायबिटीज हुई है, तो इसके पीछे का कारण आपके हार्मोनल चेंजेस ही हैं जो आफ्टर प्रेगनेंसी हुए हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं प्लस उतरते भी हैं, यानी कि बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं प्लस नीचे भी आते हैं, और इन चेंजेस की वजह से एक फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का होना, यानी कि वो डिप्रेशन जो प्रेगनेंसी के बाद होता है, जिसमें महिलाएं असहज महसूस करती हैं, उन्हें लगता है कि अब उनका शरीर पहले जैसा नहीं रह गया है, बच्चे के बार बार रोने से वो चिढ़ जाती हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पाती हैं, या फिर उनके हार्मोन्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं और इसकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। तो ये वो सारे कारण हैं जो प्रेगनेंसी के बाद आपको देख सकते हैं। तो भाई अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उनका ख्याल रखें, सबसे ज्यादा ख्याल उनका तब रखें जब उन्होंने बच्चे को इस दुनिया में जन्म दे दिया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मेन चीजें क्या होती हैं, हम बच्चे की माँ का ख्याल तब तक तो रखते हैं जब तक वो गर्भवती होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है हमारा सारा ध्यान बच्चे की तरफ जाता है ना कि माँ की तरफ। तो कोशिश करें कि बच्चे के साथ साथ माँ का उतना ही ख्याल रखें, क्योंकि उनका ख्याल रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो इस वक्त बहुत नाजुक पलों से गुजर रही होती है, आपका साथ उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं कि डायबिटीज होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात आती है फैमिली हिस्ट्री। जी हम आपको बता दें कि आपके अगर पूरे खानदान में यानी कि फैमिली में किसी को डायबिटीज रह चुका है, अब आपकी नानी को डायबिटीज हो सकता है, तो हो सकता है कि आपकी मम्मी को भी हो। अगर आपकी मम्मी को है तो हो सकता है कि आपको भी हो। अगर आपको भी डायबिटीज हो गई है तो आने वाली जनरेशन को भी डायबिटीज हो, इसका खतरा भी बढ़ जाता है। यानी कि ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाएं जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ वहाँ ये अपने साथ इस बीमारी को लेकर जाती हैं। अगर आपके घर में किसी को पहले से डायबिटीज है तो अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में आप जरूर पता रखें और अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखें। अगर पहले से ही आपके घर में यानी कि जेनेटिक्स तौर पे लोगों को डायबिटीज होती जा रही है, शुगर बढ़ता जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपके आगे आने वाली जनरेशन को ना हो, आपको ना हो, तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। आपको जंक फूड से दूरी बनानी पड़ेगी, सही मात्रा में सही चीजों का सेवन करना पड़ेगा, जिसमें फल और सब्जियां आती हैं, जिसमें वो सारी चीजें आती हैं जो मदर नेचर की तरफ से आती हैं, जिसमें दूध दही अंडा चिकन सब्जियां फल बीन्स दालें ये सारी चीजें शामिल करें, ना कि चिप्स कुरकुरे टेढ़े मेढ़े कोल्ड ड्रिंक्स ये सारी चीजें आप इनको शामिल ना करें, पिज्जा वगैरह शामिल ना करें। हाँ, इसे आप कभी कभी एज अ पार्टी के तौर पे ले सकते हैं, बट इन्हें रोज रोज ना खाएं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सही रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सही खान पान है, टाइम से आप सो जाते हैं, आप अपना ख्याल रखते हैं, अपनों का ख्याल रखते हैं, तो आगे आने वाले टाइम पर और आपको डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं उम्र की। 35 साल की उम्र के बाद डायबिटीज टाइप 2 का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, हो सकता है कि आपको अभी डायबिटीज ना हो, लेकिन एक 35 साल की उम्र के बाद इसका खतरा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि 35 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है। स्पेशली महिलाओं को तो कहा भी जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद आप कैल्शियम की टैबलेट लेना शुरू कर दीजिए, आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए, एक उम्र के बाद आपको सही मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो प्रोटीन आजकल के बच्चे ले रहे हैं वो तो जरूरी है ही है, क्योंकि आपका शरीर पूरा प्रोटीन से बना है, लेकिन इसके अलावा जिनकी एक उम्र हो चुकी है उनको भी प्रोटीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी उम्र 60 हो गई है 40 हो गई है, तो आपको अपने प्रोटीन पर अपने विटामिन्स पर अपने मिनरल्स पर और भी ज्यादा गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर अब वैसे काम नहीं करता जैसे जब आप वयस्क थे, यानी कि जब आप 20 या 25 साल के थे तो कर रहा था। तो भाई उम्र इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो आपको इसका खतरा बढ़ सकता है। तो ध्यान रखें कि 35 साल की उम्र के बाद आप अपनी आदतों को अपने खान पान को और भी मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को देखें। इसके अलावा मोटापा, अगर शरीर में बहुत तेजी से मोटापा बढ़ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा फैट आपकी बॉडी में, बहुत ज्यादा चर्बी आपकी बॉडी में जमा हो रही है, खास तौर पर आपके पेट के आसपास, तो ये चर्बी आपको डायबिटीज का एक बड़ा रिस्क दे सकती है। जी हाँ, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा फैट जमा हो रहा है तो ये फैट सेल्स आपके ग्लूकोज को आपके शुगर को आपके ब्लड स्ट्रीम में ही भेजते हैं, सेल्स के अंदर नहीं भेजते हैं, और इसी वजह से जब फैट सेल्स में होता है और ग्लूकोज जिसको सेल्स के अंदर जाना चाहिए फॉर एनर्जी वो नहीं पहुंच पाता है, तब यही ग्लूकोज यही शुगर आपके ब्लड में घूमती है और इसकी वजह से खाना खाने के बाद अक्सर आपका ब्लड शुगर हाई दिखता है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी। अगर आपकी उम्र अभी 16 या 17 के ऊपर हो चुकी है और आपने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी है, या फिर कहें तो आजकल के बच्चे जो बड़े हो रहे हैं बट खेलते कूदते नहीं हैं, पूरा दिन घर के अंदर रहते हैं प्लस अपने मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो इन्हीं बच्चों को आज कल डायबिटीज का खतरा बहुत तेजी से बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा गलत डाइट, आपकी गलत डाइट बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अनहेल्दी फैट को अपने डाइट में शामिल करते हैं, आप बात करेंगे अनहेल्दी फैट और गुड फैट में फर्क क्या है। तो भाई अनहेल्दी फैट वो होता है जो आपको इन तली भुनी चीजों से आता है। अगर आप टिक्की बहुत खाते हैं, समोसे बहुत खाते हैं, पकौड़ियां बहुत पसंद करते हैं, जो कि स्पेशली आजकल जो बारिश का मौसम चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली चीजों में से एक है कि भैया चाय पकौड़ी तो बनती है, ब्रेड पकौड़ा तो बनता है, तो जी हाँ ये वही है जो आपको एक अनहेल्दी फैट देता है, ये आपको डिस्टर्ब करता है। और हेल्दी फैट जो आपको घी में मिलता है, जो आपको एवोकाडो जैसे फलों में मिलता है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स आपके हार्मोन्स को ठीक तरह से काम करने में मदद करते हैं, वही अनहेल्दी फैट आपको डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर पिछली प्रेगनेंसी की बात करें, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाती है, उनको भी आगे जाकर डायबिटीज टाइप 2 का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने कभी बताया है प्रेगनेंसी के दौरान कि आपके डायबिटीज का स्तर यानी कि शुगर लेवल का स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो आप अपनी सेहत का और भी ख्याल रखें, क्योंकि ये आगे जाकर हो सकता है। तो अगर कारणों की बात हमने की तो फैमिली हिस्ट्री, उम्र, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, आपकी गलत डाइट और आपकी प्रेगनेंसी, ये सारे वो कारण हो सकते हैं जिनसे डायबिटीज होती है। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी अपने रेडियो चौकी नदी के साथ। स्टे ट्यून्ड।
1: व्हाट इज दिस? अरे कितना क्रेडिट देगा उस लड़की को? अरे वो दूसरे शहर से, आई एम टेलिंग, अगर पैसा नहीं आया ना, यू विल हैव टू पे।
2: बट पापा, शी इज अ नाइस
3: भैया। देखो दिल्ली वाली दीदी आ गई।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए स्मार्ट एनजीओ रेडियो ज्ञानस्थली की खूबसूरत पहल के तहत मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी स्वास्थ्य की संगिनी उन्नति। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम की गोंडा शहर की धड़कन। और अब बात करेंगे डायबिटीज में आने वाले लक्षणों की, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं। तो सबसे पहले लक्षण कौन सा होता है? अगर आप बार बार वॉशरूम जाते हैं यूरिनेट करने के लिए, यानी कि आपको बार बार पेशाब लगती है, तो ये पहला सिम्टम होता है कि हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज बन रही हो, यानी उसका खतरा बढ़ रहा हो। इसके अलावा बहुत ज्यादा प्यास लगना, अब ये तो लाजिम है भैया, अगर आप बार बार वॉशरूम जा रहे हो, बार बार आपको पेशाब आ रही है, टॉयलेट आ रही है, तो ऑफ कोर्स आपको बार बार प्यास भी तो लगेगी, और अगर बार बार प्यास लगेगी तो आप बार बार पानी भी पियेंगे, फिर बार बार वहाँ जाएंगे, तो ये दूसरा लक्षण होता है। तीसरा होता है ज्यादा भूख लगना, आपको बहुत ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, आपको बस दिल करता है कि जो मिले खाते जाएं, खाते जाएं। अगर अचानक से आपको ये तीन लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो जी थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आपको डायबिटीज के ही सिम्टम बता रहा है। वजन का बहुत तेजी से कम होना, अगर आपका वजन बिना किसी कारण, बिना किसी एक्सरसाइज किए, बिना कुछ किए, आपका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है या घट रहा है, तो भैया ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी बीमारी के लिए। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी पनप रही है, फिर चाहे वो डायबिटीज हो या फिर कोई और बीमारी, सबसे पहले जो एक लक्षण दिखता है वो होता है वजन का कम होना। और यहाँ पर आपको सतर्क होना चाहिए, आपको अपने बॉडी के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए अटेंशन देना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाने चाहिए, उनकी परामर्श लेना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि अचानक मेरा वजन क्यों कम हो रहा है। ना हम जिम कर रहे हैं, ना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा रूटीन वही है, हम एक चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे पूरा दिन फोन चला रहे हैं, दिन भर खाते भी जा रहे हैं, इसके अलावा मेरा वजन कम क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे, जब वो टेस्ट करवाएंगे तो उसके बाद ही आपको वो रिजल्ट बताएंगे। इसके अलावा आता है विजन लॉस होना, यानी कि आपकी नजरें धुंधली होना। ये मत सोचिएगा कि हर बार नजर धुंधली इसलिए हो रही है क्योंकि आप फोन बहुत चलाते हैं या स्क्रीन बहुत देखते हैं। इसके अलावा एक और लक्षण हो सकता है, एक और कारण हो सकता है, वो ये है कि डायबिटीज वालों की आंखें कमजोर होने लग जाती हैं, उन्हें उनकी जो नजर होती है वो धुंधली होने लग जाती है, उन्हें साफ नजर आना बंद हो जाता है। अगर ये लक्षण आप में भी है तो जी हाँ, ये डायबिटीज का ही एक सिम्टम है। और अगर नहीं भी है तो भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आंखें आगे जाकर डायबिटीज में कमजोर जरूर हो जाती है। ये एक ऐसा लक्षण है जो डायबिटीज वालों के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा चोट लगने पर जख्म का जल्दी ठीक ना होना। जी हाँ, जिनको डायबिटीज होती है उन्हें एक हल्की सी खरोच भी लग जाए, जो एक आम इंसान को 7 से 8 दिन में भर जाने वाला जख्म होता है, इनके लिए वो 1 से 2 महीने का वक्त लेता है। अगर कोई भी जख्म आपको लगा है, कोई भी चोट आपको लगी है, वो जल्दी ठीक नहीं हो रही जैसा एक नॉर्मल इंसान के अंदर होती है, तो जी हाँ, ये आपको डायबिटीज का ही सिम्टम दे रही है। इसके अलावा इन्फेक्शन होना, अगर आपको बार बार किसी चीज से इन्फेक्शन हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बार बार आपको बुखार आ रहा है, या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन आपको लग रहा है कि बार बार चीजें सामने आ रही है, पहले ऐसा नहीं होता था, तो ये वो लक्षण है जो बताता है कि आपको डायबिटीज हो चुकी है। हाथ पैरों में झंझराहट होना या हाथ पैरों का सुन्न होना, कई जगह पर त्वचा का रंग गहरा काला होना, स्पेशली अगर आपके गर्दन के पीछे हो रहा है, आपके अपने गालों पर हो रहा है, काला काला नजर आ रहा है, आपको अलग से झाइयां नजर आ रही हैं, अलग से काले काले धब्बे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, आपकी गर्दन बहुत ब्लैक हो रही है, आपने सब कुछ करा के देख लिया है, इसके बाद भी नहीं निकल रही है, तो ये बताता है कि जी आपको डायबिटीज हो रही है। अब डायबिटीज की पहचान कैसे की जाती है? तो आपको डायबिटीज पहचान करने के लिए, क्योंकि पहले तो आप हमेशा से लैब में जाके टेस्ट कराते थे, लेकिन क्योंकि साइंस आगे बढ़ चुकी है, तो आप अपने घर पर बैठे बैठे भी अपना ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं। एक डायबिटीज टेस्ट किट आती है जो आपको इजिली किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाती है। आप उसको ले आइए और अपना फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कीजिए। फास्टिंग यानी कि खाली पेट, भूखे पेट रहकर ब्लड शुगर का स्तर मापा जाता है। अगर ब्लड शुगर का स्तर 126 mg/dL आता है या उससे ज्यादा आ रहा है तो डायबिटीज का ये संकेत हो सकता है। इसके बाद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान ग्लूकोज पेय पिलाने से पहले और ग्लूकोज पिलाने के बाद शरीर में ब्लड शुगर का स्तर मापा जाता है। भोजन करने के बाद ब्लड शुगर का स्तर 200 mg/dL या इससे ज्यादा आने पर डायबिटीज का संकेत होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं ग्लाइकेडेट हीमोग्लोबिन। इस टेस्ट में पिछले 3 महीनों में मरीज के ब्लड शुगर को चेक किया जाता है। 4.00 एंड 5.60 या उससे अधिक स्तर आने पर डायबिटीज का संकेत बताया जाता है। तो भैया आप याद रखिए कि अगर आपका खाली पेट का शुगर 126 mg/dL से ज्यादा आता है और भरे पेट का यानी कि खाना खाने के बाद 200 mg/dL से ज्यादा आता है तो ये डायबिटीज का ही सिम्टम है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भैया डायबिटीज में खाना क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले जब डायबिटीज होती है तो ऑलमोस्ट लोग हर एक चीज छोड़ के बैठ जाते हैं। चावल नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको आप पूरे लाइफ टाइम चलाने वाले हैं। यानी कि अगर आप 20 साल के हैं और आपको डायबिटीज हो गई है, आप टाइप 2 डायबिटीज से डायग्नोस कर दिए गए हैं, तो जब तक आपकी अब जिंदगी है तब तक के लिए आपको इस चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। शुरुआती दौर में चाय छोड़ देना, चीनी छोड़ देना, चावल छोड़ देना, आलू छोड़ देना, ये आसान लगता है, बट 60-70 सालों तक लगातार इसी रूटीन को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा क्या खाएं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा ना बढ़े, आपके हाथ पैरों में दर्द ना हो, आपकी सेहत अच्छी रहे। ऐसा नहीं है कि आपके बॉलीवुड सेलेब्स के अंदर डायबिटिक नहीं दिखता है, उनके अंदर भी है, लेकिन वो अपना खान पान सुधारते हैं। और आपके खाने पीने, आपकी लाइफस्टाइल ही डिसाइड करती है कि आगे आने वाले उम्र में डायबिटीज आपको कितना परेशान करेगी। क्या बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है या आप इसको मैनेज कर सकते हैं? क्या आप उनमें से हैं जिनकी आंखें खराब होने वाली हैं, जिनकी किडनियों में इश्यूज होने वाले हैं, जिनके लिवर में इश्यूज होने वाले हैं, या उनमें से हैं जो अपने सही खान पान को बदल कर, आप अपनी गलत आदतों को बदल कर अपनी लाइफ को और भी इजी बना सकते हैं? जानेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस बात तक के लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह कोटा शहर की धड़कन पर। आपके भी रेडियो जॉकी नितिन मौजूद है आप सभी के साथ। स्टे ट्यून्ड।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: पहले घंटे से शुरू होती है बच्चे के दिमाग और जीवन की मजबूत नींव। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी है एक नन्ही सी जान से और उसकी जिंदगी से, यानी कि उसकी जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, उसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श, और फिर शुरुआती महीनों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इसके लिए आज हमने दोनों, यानी के सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। नमस्कार भैया जी, और भाभी आपका भी स्वागत है।
3: नमस्ते आरजे
2: जी, स्वागत है आपका भाभी और भैया। तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
4: आप दोनों लोग हमें ना बुलाते तो भी हम आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर थी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए। नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौतें जीवन के पहले सप्ताह में होती हैं और इनके प्रमुख कारण हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
3: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया है तो अब सबसे बड़ा काम हो गया है, बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। लेकिन सच तो ये है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
2: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि ये गोल्डन आवर और या ये सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
4: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत अहम होता है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगने से सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
2: यानी ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
3: जी हाँ, इस पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चे को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस चल रही है सही से या नहीं ये भी देखना, और सबसे जरूरी, जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चा का पहला टीका माना जाता है। ये बच्चे के रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है और कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है।
4: और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें बहुत सरल हैं। सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, ये सब मिलकर नवजात बच्चों की जान बचा सकते हैं।
2: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है इन सभी से बचाव के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम यानी कि सेहत सही और लाभकारी में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया भैया दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चों को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकता है। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या ये भी उतने ही ज़रूरी हैं?
1: बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
2: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त में दिए जाते हैं। इनमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
1: इन टीकों से बच्चे को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी बच्चे की मजबूत शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी हैं, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाले टीके।
1: मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चे के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता है, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वह माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचने की बात नहीं है, यह बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मक विकास की नींव है।
0: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत होने लगती है।
2: बिल्कुल, बच्चा भले ही बोल ना सकता लेकिन वो महसूस तो कर सकता है ना। माँ की छाती से लगना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पीना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों की मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसलिए इसे गोल्डन आवर कहा जाता है।
0: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
1: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा माँ की छाती से लगे और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, या बच्चे को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए जरूरी हैं।
2: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है।
0: वो क्या भाभी?
2: वो ये कि कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि ये बच्चे की पहली सुरक्षा कवच है।
0: तो साफ संदेश ये है आपका कि पहला पीला दूध फेंकना नहीं है, बच्चे को देना है।
2: जी बिल्कुल, और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है और बच्चा भी सीख रहा होता है, तो ऐसे में नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
1: सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसलिए माँ को दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
0: बहुत से घरों में जन्म के बाद बच्चे को शहद, घुट्टी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन भाभी, क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी?
2: हाँ, नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग से सलाह न दे। शहद, घुट्टी, पानी या कोई भी बाहर की चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। न पानी, न शहद, न घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
0: और जब गर्मी है और गर्मी में बच्चे का गला सूखे या उसको प्यास लगे तो गर्मी में भी पानी नहीं देना चाहिए।
1: पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दे। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी, इसलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
0: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
2: हर रोना भूखा नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंडक, नींद या पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पीना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
0: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना चाहिए। सिर्फ सलाह देना काफी नहीं बल्कि काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
1: पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और बच्चे की देखभाल में शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
0: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और आखिर में इसकी जरूरत क्यों है?
1: त्वचा से त्वचा संपर्क का मतलब है कि बच्चे को माँ या देखभाल करता की छाती से सीधे लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कांगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। यह खासकर कम वजन वाले या समय से पहले जन्म बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।
2: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। ये केवल शरीर की गर्माहट नहीं है बल्कि ये भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए भी ये बहुत अच्छा है।
0: भैया, क्या पिता भी ऐसा कर सकता है?
1: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा संपर्क दे सकते हैं, खासकर जब माँ को आराम चाहिए या वह थकी हुई हो। लेकिन तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुले रहें, बच्चा दबे नहीं और वह आराम से सांस ले रहा हो, ये ध्यान रखना जरूरी है।
2: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू हो जाती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, ये भी पिता की जिम्मेदारी है।
0: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियां दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
2: और सच्चाई कि पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
0: और अब दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
1: पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग सलाह न दे।
0: तीसरी गलतफहमी, माँ का दूध कम है तो तुरंत ऊपर का दूध शुरू कर दें।
2: और सच्चाई ये है कि पहले सही स्तनपान की सहायता लें, माँ को दोष ना दें, स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें।
0: अब आते हैं चौथी गलतफहमी पर, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
2: बिल्कुल नहीं, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी, ये सब की भूमिका होती है।
0: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
1: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत सुस्त है, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरा जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चे पर घरेलू प्रयोग नहीं करने चाहिए।
2: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो और सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
0: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
1: ये याद दिलाती है कि बच्चे का दिमाग, शरीर और भविष्य शुरुआती देखभाल से बनता है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं है, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग सब शामिल है।
2: हर घर 5 संकल्प ले सकता है। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल और केवल माँ का दूध ही देंगे और माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
1: 6वां संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद दिए जाने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएंगे।
2: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चे को जीवन की सुरक्षित शुरुआत देते हैं।
0: बहुत स्पष्ट बात है कि बच्चे के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चे की मजबूत शुरुआत है।
1: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता ले, ये सीखने की प्रक्रिया है।
2: माँ को ताना नहीं, सहारा चाहिए। बच्चे को घुट्टी नहीं, माँ का दूध चाहिए। परिवार को अफवाह नहीं, बल्कि सही जानकारी चाहिए।
0: साथियों, आज की 5 जरूरी बात याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में

0: अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिल कर लेंगे सेहत की शपथ।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
2: प्राथमिकता देंगे,
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे
2: ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
1: तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: पहला दूध पहला प्यार,
3: पहला घंटा जीवन का आधार,
0: माँ का साथ पिता का हाथ,
3: बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत,
0: सेहत सही लाभ कई।

0: निभाए।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
7: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
7: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
6: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
7: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई, वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

आप सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज असमता और साथ में हमारे आती हैं अंशिका। लेकिन अभी वो कुछ अस्वस्थ हैं, इसकी वजह से आज मैं आई हूँ। और आप सभी को पता है कि हम डे बाय डे हमारे स्टूडियो में बहुत सारे नए नए गेस्ट को हम बुला रहे हैं और आपसे उन्हें रूबरू करा रहे हैं। तो आज भी हमारे स्टूडियो में गेस्ट आ गई हैं, लेकिन हम उनसे मिलवाएंगे, लेकिन अभी नहीं। हम अभी आप सभी का स्वागत कर लें, अभिनंदन कर लें आपके अपने शो सुन सहेली में, और मैं हूं आपकी आरजे समता। साथ ही साथ में, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सबसे पहले प्रोग्राम की औपचारिकता होती है एक प्यारी सी पोयम। लेकिन उसके पहले बता दूं कि आज है बुधवार और बुधवार के दिन हम करते हैं शुरुआत कुछ ऐसी महिलाओं के लिए। यानी देखिए भाई, बात एक सच्ची होती है कि महिलाओं का कोई दिन नहीं होता है, वो हमेशा से उनके लिए तो हर दिन अपने लिए एक स्पेशल होता है। कहते हैं ना कि आज विमेंस डे है, आज टीचर्स डे है, आज ये है, आज वो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे डे ना रोज ही हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि महिलाओं का कोई स्पेशल दिन नहीं होता है। तो आज सशक्त महिला को हम ये आज का शो समर्पित करते हैं, लेकिन उनके ऊपर आइए प्यारी सी एक पोयम भी हम बता देते हैं, और उसके बाद में चलेंगे हम सीधे सीधे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की और उसके बाद शो में हमारे आ चुकी हैं हमारी आज की गेस्ट। तो मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आइए सुना देते हैं आज की महिला सशक्तिकरण पर ये प्यारी सी पोयम। वो बेटी है, वो बहन है, वो माँ का प्यार है। वो बेटी है, वो बहन है, वो माँ का प्यार है। वो हर मुश्किल से लड़ने को तैयार है। जिसे कमजोर समझा वही सबसे खूबसूरत निकली। गिरकर भी संभली, हर बार खुद से ही मिली। वो सपनों को पंख देकर आसमान छूती है। अपने हक के लिए अब खुलकर बोलती है। नारी सिर्फ सहने का नाम नहीं, पहचान है। इसके हौसलों में ही एक नई उड़ान है। उसे अवसर दो, वो इतिहास बना देगी। एक नारी सशक्त होगी तो पूरी पीढ़ी संभल जाएगी। नारी है तो घर में उजियारा रहता है। उसके हौसलों से हर सपना हमारा रहता है। वो आंधी में भी दीप जलाना जानती है। मुश्किलों से लड़कर मुस्कुराना जानती है। अब उसके कदम किसी बंधन में रुकेंगे नहीं। अपने सपनों से उसके रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। शिक्षा मिले, सम्मान मिले, अधिकार मिले, हर बेटी को अपनी मंजिल चुनने का अवसर मिले। नारी आगे बढ़ेगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा। उसकी हर एक उड़ान से देश हमारा मजबूत बनेगा। इस प्यारी सी पोयम के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं, क्योंकि आज है बुधवार और बुधवार के दिन हम करते हैं कुछ महिलाओं से समर्पित बहुत सारी ऐसी बातों को जो कि हमें हर रोज करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक घर जो है वो महिला के बिना बिल्कुल अधूरा है। अगर नारी नहीं है, महिला नहीं है उस घर में, तो वो घर घर नहीं कहलाता है। ऐसी ही बहुत सारी बातों पे आज हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन आइए यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हम मिलाएंगे आपकी अपनी जो कि हमारी आज की नई गेस्ट है उनसे। तो बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता। और आइए अब फटाफट मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आज की हमारी गेस्ट, जो कि आपको खुद आवाज को पहचानना है। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप?
8: नमस्कार समता, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं उनको मैं अपना प्यार भरा नमस्कार भेजती हूँ।
7: तो अभी तक आप लोगों ने आवाज तो पहचान ही ली होगी कि हमारी कौन है ये और कितने सारे शोज में आती हैं।
8: सस्पेंस। इनको नाम बताने दीजिए कि ये,
7: मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैं नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ये नाम आप लोग आकर के चैट बॉक्स में खुद बताएं कि ये सुरीली सी आवाज किसकी है, आप लोग खुद बताएं, क्योंकि आप लोग हमेशा से बहुत ही स्पेशल शोज में आप सुनते हुए आ रहे हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपना जब तक नाम ढूंढे तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के शो को आगे बढ़ाते हैं।
8: बिल्कुल, इनको सोचने दीजिए, तब तक हम लोग बात करते हैं
7: जी। तो मैम, मैं आपसे सिर्फ, आज का जो हमारा शो होता है वो महिलाओं पर समर्पित होता है और कहा जाता है कि महिला के बिना कोई घर अधूरा रहता है और जैसे कहते हैं ना, केवल वो चार दिवाली वाला हो जाता है। तो महिला को सशक्त होना और आज की महिला में और पहले जमाने की महिला में क्या अंतर होता था, ये हम आपसे जानना चाहते हैं।
8: देखिए, पहले की महिलाओं में जहाँ तक मैंने देखा है, शोषण की प्रवृत्ति थी पुरुषों में, उनका शोषण बहुत होता था
7: जी।
8: कि एक बार अगर वो विवाह उसका हो गया तो उसको पर्दे के अंदर रखना है, है ना, और एकदम से कह सकते हैं उसको पशुओं
7: की भांति
8: उससे काम लेना है। दिन रात उसको केवल काम से मतलब है और दूसरी बात वो सोच ही नहीं सकती है अपने बारे में
7: जी।
8: पर आज की जो महिला है वो सशक्त हो चुकी है, अपने पैरों पे खड़ी है, यानी सेल्फ डिपेंड हम उसको कह सकते हैं
7: जी।
8: जो चाहिए था वो आज वो हासिल कर रही है।
7: और इस मामले में मैं आपसे अगर इसको क्रॉस क्वेश्चन करूं तो वो ये है कि जितनी वारदातें आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि आज की महिला इतनी ज़्यादा सशक्त हो गई कि जो बीच बीच में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ में आता रहता है, नीला ड्रम तो कुकर तो पहाड़ी से फेंकना, तो क्या इन सब में आज की महिला सशक्त हो करके उसका गलत फ़ायदा उठा रही है?
8: हाँ इतना भी नहीं होना चाहिए हाँ। कि जैसे सुन रहे हैं कि वो अब महिला जो है पुरुषों पे हावी हो रही है,
7: हावी हो रही है,
8: उनको दबा के रखना चाहती है, उनको कह सकते हैं कि अपने पैर की जूती समझने लगी है।
7: कर्मा है ना ये पहला, ये सर्कल ऑफ लाइफ है। पहले अभी आपने बताया कि पहले होता था कि महिलाओं को
8: पैर की जूती समझते थे,
7: बस वही हाँ। वही पैरों की जूती।
8: आज जो है समय परिवर्तित हो गया है, आज महिला में वो भावना आ गई है, या तो कह सकते हैं कि पहले जो शोषण हुआ उसके हाँ। बाद वो बदले की भावना भी महिलाओं में
7: आ गई है,
8: आ गई है।
7: बिल्कुल।
8: तो वो पुरुषों से चुन चुन के बदले लेना,
7: चुन के बदले और लेकिन ये भी कहा जाता
8: है संस्कार की भी बात होती है,
7: संस्कार की भी बात होती है। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रही
8: थी, वही है कि जैसा माँ बाप ने संस्कार दिया है बच्चों को, तो थोड़ा माँ बाप की भी गलती होती है कि बच्चों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए।
7: बिल्कुल। और आज के युग में
8: बहुत ही ज्यादा उनको जो फ्रीडम मिल गई है उसका वो फायदा उठा रही हैं।
7: तो फिर आप एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि जैसे महिला को सशक्त तो होना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई जरूरी
8: हाँ,
7: है।
8: तो बिल्कुल यही है कि सेल्फ डिपेंड हो, अपने परिवार को थोड़ा हेल्प करो, अपना परिवार अच्छे से चलाओ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम जा करके शोषण करो पुरुषों
7: के और के घर के
8: हाँ,
7: चिराग
8: को बुझा दो
7: हाँ।
8: नहीं, ये तो बिल्कुल एक अलग चीज हो गई।
7: बिल्कुल।
8: और महिला जितना ज्यादा पढ़ लिख रही है उतनी ही ज्यादा वो संस्कारी भी है और बच्चों को।
7: अभी कुछ एक साल मेरे ख्याल से होने वाला है, जो एक केस आया था और हरियाणा का था, वो उसको उसकी शादी हो गई, वो लोग घूमने गए और बड़ी पहाड़ी से उसको फेंक दिया गया
8: जी।
7: मतलब
8: जी।
7: ये सब सारी वारदात सुन करके तो हर एक लड़के को आजकल ये लगने लगा है कि लड़कियों पर विश्वास करने लायक है कि नहीं है, मतलब ऐसा भी हो गया है।
8: देखो मुझे ऐसा लगता है समता कि जैसे वो डिसीजन ले ही नहीं पाती है
7: हाँ।
8: कि एक बार जो माँ बाप ने उनके लिए तय कर दिया है तो उन्हें लगता है कि जो उन्होंने तय किया वो परफेक्ट होगा
7: हाँ,
8: बस exactly, अगर वो हाँ खुल करके इतना मतलब बता दे अपने पेरेंट्स को कि नहीं हम नहीं करना चाहते, हम अपने मन का विवाह करना चाहते हैं, तो शायद ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी नहीं हो,
7: ऐसी परिस्थितियाँ कभी खड़ी ना हो। और अगले मतलब मुझे तो ये लगता है मैम कि अगर तुरंत ही इंसान मना कर दे तो एक बार ठीक है कि चलो एक बार ही हो गया, थोड़ी बहुत बदनामी होगी ठीक है, लेकिन शादी करके उस लड़के के साथ जो आजकल हो रहा है, मतलब उसको क्या कहते हैं मार डालना या उसके घर में जाकर उनकी माँ को, उनकी बहन को, उनके बाकी रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने तक की नौबतें आजकल समाज में देखी गई हैं, तो ये क्या पूरा का पूरा उत्तरदायित्व पढ़ाई लिखाई पे आ रहा है कि आज़ादी पे आ रहा है कि घर के माहौल पे आ रहा है?
8: देखिए मुझे नहीं लगता कि जिन लड़कियों ने ये वारदातें की हैं
7: हाँ।
8: एक एमपी का केस था कि उसने वहाँ पर पहाड़ी पर ले जाकर
7: हाँ।
8: के उसकी हत्या करा
7: उसकी
8: के
7: हत्या
8: उसको नीचे घाटी में फेंक दिया
7: जी।
8: है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये अनपढ़ महिलाएं हैं, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा
7: पढ़ी
8: लिखी महिलाएं हैं और वर्किंग वुमेन है, ये बिजनेस वुमेन है।
7: बिल्कुल।
8: तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उन्होंने किस वजह से ऐसा किया ये तो कारण बहुत विचार करने योग्य है।
7: बिल्कुल।
8: कि कौन सी परिस्थितियां रही होंगी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया।
7: बिल्कुल। और
8: बहुत ही रिप्यूटेड जो फैमिलीज होती हाँ। वहाँ की ये घटनाएं हैं
7: जी। बिल्कुल। और कई बार तो काफी टाइम तक शायद उसका नाम सिमरन था कि क्या था मुझे नहीं याद आ रहा है, ऐसे ही था, तो कई बार क्या कहते हैं रील्स के इसमें जो मीम्स बनाए जाते हैं कि ऐसे वाली लड़कियों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली मेरा नाम ऐसे है तो तो मुझे कई बार लोगों ने कहा कि अपना नाम चेंज कर दो क्योंकि तुम भी खतरनाक से कम नहीं हो, बट ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं।
8: ये तो खैर भ्रांतियां हैं
7: कि ऐसा नहीं है, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं कि आप मतलब उसको क्या कहते हैं ड्रम में भर करके मार डालना या फिर खाड़ी से फेंक देना, ये अपने संस्कार और अपने घर का माहौल भी डिपेंड करता है आपको किस तरीके से शिक्षा दी गई है, क्योंकि जहाँ पर मैंने देखा है कि जहाँ जिस घर में माँ बाप में आपस में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, वहाँ के बच्चों के मन में एक क्रूरता भर जाती है।
8: बिल्कुल, जो देख रहे हैं जो वही तो उनके हाँ। संस्कार में आ रहा है।
7: बिल्कुल बिल्कुल वही है ना कि वो संस्कार वहीं से ले रहे हैं, उठा रहे हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं ये बातें भर जाती हैं कि भाई सारे जेंट्स एक जैसे ही होते हैं,
8: एक जैसे होते हैं
7: हाँ, और जिन्होंने मेरी माँ को नहीं समझा, मेरे साथ ऐसा किया, तो ये भी वैसा ही होगा।
8: बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात कही आपने समता कि वो जो एकदम कि पिता ने मारा माँ को, थप्पड़ थप्पड़ देखते हैं कि फिल्मों में भी ऐसे कभी कभी सीन होते हैं और कभी कभी रियलिटी में भी घरों
7: हाँ,
8: में हुआ करता है हाँ, ये मारपीट जो वायलेंस हुआ करती, तो इसकी वजह से वो बच्चों के मन मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव छोड़ जाती है, खास तौर से वो जो लड़कियां हैं
7: हाँ,
8: वो ज्यादा सोचने लगती हैं कि शायद जो पुरुष समाज है वो इतना ही क्रूर है जैसे मेरे पापा है माँ को मारा करते हैं, और उसी तरीके से मेरी भी शादी होगी तो मुझे भी ऐसा ही ना मिले,
7: मुझे भी ऐसा ही ना मिले।
8: तो ये क्रूरता उनके मन में, मन मस्तिष्क में भर जाती है,
7: जाती है।
8: शायद इसकी वजह से भी ये घटनाएं ज्यादा होने
7: ज्यादा आजकल जो है वो प्रबल हो रही है
8: जी।
7: तो इस टॉपिक को हम अभी और बढ़ाएंगे मैम, लेकिन हम चाहते हैं हमारे लिसनर्स वेट कर रहे हैं, एंड आप भी हमारे देखो लिसनर्स अभी तक आपकी आवाज को नहीं पहचान पाए हैं और उन्होंने किसी ने भी आपकी आवाज को नाम को आपको रिवील नहीं किया है, तो हम उनको एक और मौका देते हैं, एक गाना सुना देते हैं।
8: बिल्कुल बिल्कुल,
7: और उसके बाद हम आपके नाम को यहाँ
8: भाई पहचान लीजिए, पहचान लीजिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ
7: जी। तो इतनी प्यारी सी आवाज को आप लोग कैसे नहीं पहचान रहे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट हम आपको एक मौका और देते हैं, क्योंकि आइए सुन लेते एक प्यारा सा गाना को, और उसके बाद में हम आपके सामने आज के गेस्ट का नाम भी रिवील कर देंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, एंड सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा शुभ दोपहरिया।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में हमारी अभी तक थी गीता मैम, जिसको आप लोगों ने पहचाना नहीं और उठ के चली गई क्योंकि आप लोगों ने नाम ही नहीं दिया। ऐसा नहीं है, हमारे साथ गेस्ट थी गीता मैम एंड हमारे साथ अब एक और हमारी गेस्ट आ चुकी हैं। गेस्ट क्या कहें, हमारी वो फ्रेंड हैं, तो उनकी आवाज़ आप बेहतर तरीके से सुन चुके हैं, जान चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं फिर से उनकी एक आवाज़ को। तो हेलो संध्या, कैसी हो?
5: हेलो मैम, नमस्ते मैम, कैसी हैं आप?
4: बढ़िया बढ़िया।
5: हेलो लिसनर्स, आप सभी कैसे हैं?
4: अच्छा जी, तो मुझे ये बताओ संध्या कि आज आप हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं, मतलब कौन से ऐसे टॉपिक पे हम लोग ऐसा बोलने वाले हैं आज?
5: मैम मैं आज आपके लिए और लिसनर के लिए वीमेंस डिजीज पे एक टॉपिक है, उसको मतलब डिजीज के बारे में बताना।
4: विमेन डिजीज पे हम लोग आज बात करने वाले हैं ना?
5: Yes,
4: तो विमेन डिजीज पे बात ये होती है कि जिसको खून की कमी होती है, जिसको एनीमिया होती है, वो लोग किस तरीके से अपने उसको सफर करते हैं।
5: यस मैम, तो एनीमिया एक ऐसा डिजीज है

0: और प्रेगनेंसी
1: अनियमितता
0: यस मैम
1: अनियमितता इन पीरियड्स
0: यस मैम हाँ वो जब इरेगुलर रहते हैं तो फिर उस
1: और जो और जो विमेंस अपने पति का खून पीती हैं वो
0: अरे मैं
1: पीना पड़ता है क्यों पीना पड़ता है पता है
0: क्यों
1: जब वो लोग बात नहीं सुनेंगे आपको टाइम नहीं देंगे आपको कोई चीज नहीं लेके देंगे तो खून पीना जायज है
0: यस मैम लेकिन वो रियल खून नहीं उन्हें टॉर्चर करना उन्हें परेशान करना
1: यस एग्जैक्टली उन्हें टॉर्चर करना और प्यार से टॉर्चर करना प्यार से टॉर्चर करना
0: और मैम प्रेगनेंसी में भी दिक्कत होती है अगर ब्लड की डिफिशियंसी है तो
1: हाँ जी
0: और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से
1: तो न्यूट्रिशन की कमी क्यों नहीं होगी जब वो कहीं बाहर लेके जाएंगे नहीं आपको कुछ खिलाएंगे नहीं तो न्यूट्रिशन की कमी तो होगी ना ऑलमोस्ट टाइम तो अपने लिए ही खाली सोचते रहते हैं तो ऑलमोस्ट टाइम तो कमी होगी ना
0: yes,
1: अपने लिए खाली सोचना है मुझे ये खाना है मुझे ये घूमना है मुझे ये करना है मुझे वो करना है अगला जाए बाहर
0: तो ये चीजें तो गलत है हस्बैंड लोग वाइफ का केयर करें
1: हस्बैंड लोग वाइफ की केयर करें
0: yes,
1: अगर आपकी लाइफ में कोई आया है तो उसकी केयर करनी चाहिए
0: अन मैं यही नहीं कहती वाइफ ही हो अगर जीएफ भी है तो उसकी भी केयर करो नहीं तो वो भी छोड़ के चली जाएगी और
1: एग्जैक्टली मैं बताऊं जीएफ की ज्यादा केयर करनी चाहिए गर्लफ्रेंड की केयर ज्यादा करनी चाहिए
0: यस मैम वो अपनी फैमिली से चुप चुप के
1: वो अपनी फैमिली से
0: अपना सब कुछ मानती है तो इसीलिए उसको भी ध्यान रखना और वो उसका तो लाइसेंस बना ही है वाइफ का उसका तक उसको तो करना ही करना
1: वाइफ का तो लाइसेंस बना ही हुआ है और गर्लफ्रेंड का लाइसेंस नहीं बना होता है
0: क्योंकि आफ्टर ऑल वो है तो एक लड़की ही ना केयरिंग तो उसे भी चाहिए
1: exactly.
0: हाँ तो फिर मेरा मानना है कि जितनी फीमेल्स है सबकी केयरिंग होनी चाहिए सबको न्यूट्रिशन वाली चीजें देनी चाहिए और हाँ सबसे ज्यादा अच्छी ये बात है कि आपको खुश रहना चाहिए
1: सबसे मेन पॉइंट है कि हमें खुश रहना चाहिए
0: यस
1: खुश रहना चाहिए और खुश रहने के लिए अगर हमारी ज़िंदगी में एक छोटी सी भी कोई वजह है ना तो उसको अपनाओ उसको गेन करो और खुश रहने के साथ साथ कहते हैं ना कि आप खुद भी जियो और जीने दो ऐसा है तो महिलाओं के लिए आज का जो हमारा प्रोग्राम समर्पित है एग्जैक्टली कि खुश रहने के लिए मेनली मैं तो ये मजाक कर रही थी हस्बैंड वाला लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है भी
0: मैम क्या होता है कि जब हमें ब्लड की कमी होती है मतलब हीमोग्लोबिन की तो हम जान नहीं पाते हैं तो उसके मतलब कई कैरेक्टर शो होने लगते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ हमें एनीमिया का
1: हम लोग
0: एनीमिक हो चुके हैं
1: तो क्या है
0: मैम वो रीजन ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा थकान महसूस होगा आप मतलब हर वक्त खुद को थका महसूस करेंगे
1: हाँ
0: और वो हमारी स्किन एलोविश हो जाएगी चेहरे पे पीलापन रहेगा कलर फेस का मतलब जो कलर फेयर लगेगा डल सा रहेगा और थोड़े मतलब थोड़ी देर आप वर्क करेंगे फिर आपको सांस फूलने लगेगी आप परेशान होने लगेंगे चक्कर आना सिर दर्द होना बाल का झड़ना नाखून का टूटना ये सब एनीमिया के ही करेक्टर है मैम
1: ओके तो यानी अगर ये सब मुझे हो रहा है तो यस आई एम एनीमिक
0: यस मैम
1: मतलब मुझे खून की कमी है
0: यस मैम
1: पर अगर नहीं हो रहा है तो इसमें से अगर एक दो पॉइंट्स हो रहे हैं तो नहीं
0: हाँ लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उसे आप नजरअंदाज ना करें उसको अगर कुछ भी करेक्टर शो हो रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट कोई डॉक्टर होंगे उनसे एडवाइस लेके फिर आप उसका ट्रीटमेंट लें आप कवर कर लेंगे जल्दी
1: जी तो अभी हम लोगों ने इसका उपचार बाकी है ना
0: yes,
1: तो उपचार के लिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ एक ब्रेक लेंगे
0: yes,
1: और ब्रेक के उस पार आएंगे हम लोग बताएंगे आज की इस एनेमिक को कि हम किस तरीके से इसको उपचार में ला सकते हैं तो बस हम यूं गए यूं आए एंड आज का मौसम बाहर गोंडा का देखने वाला है मतलब मुझे तो रहा नहीं जा रहा है
0: तो मुझे तो मैं मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे डर भी लगता है
1: अभी क्योंकि पीछे हम लोगों ने वो बहुत सफर किया है ना गोंडा के मौसम से
0: तो आप लोग भी थोड़ा केयरफुल रहिए अपना फोन चार्जिंग
1: चार्ज किए रहिए अच्छा तुमने बता दिया मुझे मैं भी अपना फोन चार्ज कर लूं मेरा फोन चार्ज नहीं है तो फोन चार्ज कर लूं और उसके बाद में हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद बस यू गए यू आए स्टे ट्यून्ड

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और हमारे साथ हैं संध्या जी। तो चलिए फटाफट हम लोग बात कर रहे थे एनेमिक की, कि महिलाओं में खून की कमी को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है।
5: जी मैम, तो उसके लिए हमें अपना बैलेंस डाइट रखना चाहिए। हरी पत्तीदार सब्जियां, पालक, चुकंदर, अनार हो गया, दालें जैसे अरहर की दालें हैं या फिर जिसमें मतलब प्रोटीन ज़्यादा है वो दालें, और सूखे मेवे जैसे ड्राई फ्रूट आप लें। अगर इंसान के पास हाँ जिसकी मतलब सबके घर में अगर मैम वो ड्राई फ्रूट की व्यवस्था ना हो, पर ये सब्जियाँ दालें अनार ये तो हो ही सकता है मैम।
4: एग्जैक्टली, हो सकता है बिल्कुल।
5: तो फिर वो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लें। और विटामिन सी की चीजें जिसमें जैसे नींबू हो गया, संतरे हो गए, आंवला हो गया, इसमें हाँ खून की कमी जो मतलब हम लोग की आरबीसी वो इंक्रीज करेगी और वो हम लोग बेटर करेंगे।
4: और जैसे वो हो गया क्या नाम है जैसे खजूर हो गया,
5: खजूर हो
4: गया, चने हो गए,
5: चने भुना चना और गुड़, ये तो मैम बहुत जनरल सी चीजें लोग ले सकते हैं, खा भी सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा मतलब ये नहीं है कि हाँ बहुत महंगा हो गया तो वो नहीं गया। ये तो मतलब सिंपल सी चीज़ें कोई भी कर सकता है। आयरन सप्लीमेंट लें, डॉक्टर की सलाह से आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां ज़रूर लें, क्योंकि मैम अगर कोई मतलब कुछ भी ना ले पाए लेकिन आयरन की टेबलेट तो ले ही सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपका आयरन मेंटेन रखता है बॉडी में, इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है ब्लड हम लोग के मतलब पूरे बॉडी में
4: जी,
5: और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी है तो फिर आप जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छे रहेंगे। और कोशिश करिए कि आपकी आरबीसी ही नहीं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कुछ किसी चीज में कमी ना आने पाए।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और खास करके महिलाओं के लिए ना मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आज हमारा टॉपिक भी बहुत ही अच्छा सा निकला हुआ है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी संध्या की जब ऑलमोस्ट जैसे मंथली क्या कहते हैं पीरियड्स होता है तो वैसे ही ब्लड की कमी हो जाती है।
5: yes,
4: और जिनकी बॉडी में अगर ऑलरेडी ब्लड कम हो तो उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर से जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो भी बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है।
5: yes,
4: तो आपको नियमित रूप से, चाहे अगर आपकी एज 40 साल है, 45 है, 35 है, 30 है, मतलब अगर आप अपनी डाइट में खजूर और चने को अगर आप मिक्स करके लेना, एक कटोरी ज्यादा नहीं, आपने एक रूटीन
5: बनी
4: हाँ एक रूटीन बना लें कि जिसमें ना आपने एक कटोरी लेना है उसमें चने लेने हैं और कम से कम 2 या 3 खजूर का एक सिम्टम्स बना लें कि हाँ हमको उतनी ही, एक मेजरमेंट बना लें कि हमको 2 या 3 खजूर ही कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डाल देना है। इससे जो दो बहुत ज्यादा लोग जो दुबले पतले होते हैं ना संध्या,
5: yes, ma'am.
4: उससे आपका मतलब जो है वेट भी गेन होता है और साथ ही साथ में मैंने ये भी देखा है कि आपने आपका वजन भी गेन होगा और साथ ही साथ में जो हीमोग्लोबिन की कमी है ना वो भी आपकी इससे पूर्ति होती है।
5: यस मैम। और अगर इंसान के अंदर ब्लड एकदम वेल है तो उसके लिए डिजीज होने की बहुत रेयर केस हो जाते हैं, तो बहुत कम ही अमाउंट में से डिजीज कोई होता है।
4: अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक महिला में लगभग कितना होना चाहिए ब्लड?
5: मैम अगर एक नॉर्मल मतलब एकदम वेल लड़की फीमेल है तो उसमें 12 से 13% हीमोग्लोबिन।
4: लेकिन संध्या 12 से 13 ना ऑलमोस्ट सब में ये होता नहीं है।
5: नहीं मैम, नहीं मैं मुझ में खुद ही 10% हीमोग्लोबिन है तो फिर ना
4: मतलब होता नहीं है महिलाओं में, ये मतलब एक्यूरेट है पर ये सब में ये होता नहीं है।
5: नहीं,
4: अधिकतर महिलाओं में देखा गया है कि 8, 9, 10 इतना ही होता है, 10 से ऊपर जिसका हो गया समझ लो कि वो बहुत लकली इंसान है,
5: बहुत लकली इंसान है। यस मैम,
4: मतलब होता यही है कि हाँ मतलब 10 के अंदर ही होता है, बहुतों के तो मैंने 5-6 भी देखा हुआ है।
5: और मैम जो लेडीज इस टाइम प्रेग्नेंट हैं या वो मेरी बातें सुन रही हैं, वो खास करके इन चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि जब वो चीज़ें मतलब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके अंदर एक बेबी जनरेट कर रहा होता है, तो उनको ये हीमोग्लोबिन का कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: हाँ, वो जितना हो सके उतना अपने लिए हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने वाली चीज़ें खाएं।
4: बिल्कुल। अरविंद जी लिख रहे हैं बहुत ही ख़तरनाक मौसम फिर हो गया हमारे यहाँ भी। अरविंद जी, हमारे गोंडा में भी बहुत ही ख़तरनाक मौसम हो गया और मुझे तो अब टेंशन हो गई है कि मैं घर कैसे जाऊंगी।
5: हाँ, क्योंकि आज मेरी मैम अम्ब्रेला नहीं लाई है।
4: अम्ब्रेला मैं क्योंकि नहीं लाई हूँ। आशु जी लिख रही है कि 13 पॉइंट मेरा है। ओ माय गॉड,
5: कांग्रेट्स आशु जी। आप
4: आशु जी मतलब बहुत ही लकली हैं आपकी, आपका 13 पॉइंट है। और आप क्या खाती हैं मुझे बताइए प्लीज, क्योंकि हम लोगों को भी लग रहा है कि हम लोग का 10 होगा, मैक्स टू मैक्स 10-11 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो प्लीज मुझे बताएं, मैं भी खाना शुरू कर दूं कि आपका 13 पॉइंट है। एटलीस्ट 13 नहीं हो पर 12 तो हो ही हो।
5: Yes,
4: बहुत तेज बारिश और तूफान हमारे इधर भी हो रहा है। ये मौसम की जानकारी हुई थी कि फिर से वो वाला मौसम लौट सकता है जो अभी पीछे हुआ था 25-26 में। तो
5: हाँ, ये मौसम रिटर्न हो सकता है।
4: हाँ, ये मौसम फिर से रिटर्न हो सकता है, जो कि आज से थोड़ा सा मुझे लग रहा है। तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें।
5: हाँ, और अपना पावर बैंक जरूर चार्ज
4: कर लें। और आप लोग अपना पावर बैंक जरूर चार्ज कर लें, क्योंकि ऐसी चीजें हो सकती हैं।
5: मैम मैं एक बात बताऊँ, इस बार जब वो बारिश हुई थी तो जिस दिन ये मौसम खराब हुआ तो लाइट चली गई, उस दिन मेरे मकान मालिक ने इन्वर्टर मतलब कनेक्शन है, पूरी रात पंखा चला। और फिर 2 दिन तक जब लाइट नहीं आई तो फिर हम लोग इतना रिग्रेट किए, काश मैं वो पंखा ना चलाती तो मेरा फोन ही चार्ज हो जाता।
4: वही ना,
5: तीन चार चार पंखे चल रहे थे, फराटा चल रहा था। मैम क्या है? मतलब इतना रिग्रेट फील हुआ। इसलिए आप अपने इन्वर्टर को भी सेफ रखो,
4: अपने इन्वर्टर को भी सेफ रखो कि जरूरत से ज्यादा फैन और लाइट्स का इस्तेमाल ना करो।
5: मौसम मैम मौसम ऐसे कोल्ड हो गया है, उतना हॉट तो है नहीं, नहीं। तो फिर अगर आप नहीं भी चलाएंगे पंखा फिर भी वो सेविंग तो रहेगी। आपका फोन, मैम फोन चार्जिंग और लाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रही है इस टाइम।
4: और हमको पता है क्या कहते हैं संध्या, हम लोगों को जो कि यहाँ पर हम लोग, जैसे मैं तो सैटरडे को आई थी वापसी, जब ये मौसम था पहले पिछले हफ्ते, तो सैटरडे को मैं आई तो सैटरडे तो मेरी फोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई थी। और उसके बाद पड़ गया था संडे, तो मुझे स्टूडियो आना नहीं था। बट हम लोग अगर स्टूडियो आएंगे तो हम लोग का फोन वैसे ही चार्ज रहे।
5: यस मैम,
4: ये लेकिन हम लोग की गुड लक है।
5: हाँ, हम लोग की चार्ज रहेंगी, पर मेरे लिसनर्स क्या क्या मौसम क्लियर करना चाहिए।
4: मैम मौसम को रिटर्न करो आप। अच्छा जी, मैं रिटर्न कर देती हूँ भैया मौसम मेरे। अब आप रिटर्न हो जाओ, क्योंकि सभी लोग फिर से परेशान हो जाएंगे, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं। तो चलिए गाना सुना देते हैं, उसके बाद आएंगे आज की मॉरल स्टोरी को और अपने शो को करेंगे एंड। और हम लोग जाएंगे बाहर अपने इस प्यारे से मौसम को एंजॉय करने। क्यों संध्या?
5: यस मैम, और इस मौसम में मैम चाय पीने का मन कर रहा है।
4: चाय और पकौड़े।
5: यस मैम,
4: क्या याद दिला दिया संध्या तुमने वाकई में। तो चलो हम लोग कोशिश करते हैं कि चाय और समोसा या फिर पकौड़े यहाँ मिल जाए। तब तक के लिए आप सुने इस प्यारे से गाने को, बस हम यू गए यू आए।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता, और आज हमारे साथ है संध्या जी। क्योंकि ना समता और संध्या में बोलने वाली थी, वो मिक्स एंड मैच हो गया, खैर कोई नहीं। तो चले संध्या आज की मॉरल स्टोरी की ओर।
5: यस मैम,
4: आज की मॉरल स्टोरी कुछ यूं है कि एक वह सिर्फ एक औरत नहीं थी, ये इस कहानी का एक छोटा सा शीर्षक है। और एग्जैक्टली संध्या ये देखा गया है कि औरत अगर घर में है तो वो घर घर होता है, अदरवाइज वो घर सिर्फ चार दिवालियों वाला एक मकान होता है ना। तो जब आप घर जाती हैं और आपकी माँ होती है, आपकी भाभी होगी और आपकी चाची होगी, तो आपको घर घर लगता होगा।
5: यस मैम,
4: है ना। और अगर उसी घर में औरतें ना हो तो कितना खराब लगे।
5: यस मैम, बिल्कुल बेकार लगता है।
4: बिल्कुल बेकार ना। तो सरिता नाम की एक मतलब लड़की थी, जो कि बहुत ही प्यारी सी ये स्टोरी है। सरिता की सुबह सूरज से पहले होती थी, मतलब बहुत जल्दी उठती थी, और रात सबसे सबके सो जाने के बाद ही वो सोती थी। बच्चों की देखभाल, पति की जरूरतें और घर की जिम्मेदारियां, उसकी पूरी दुनिया इन्हीं में सिमट गई थी। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, माँ आपके भी तो कुछ सपने होंगे। सरिता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, थे बेटा, मतलब मेरे सपने थे, लेकिन जिम्मेदारियों के बीच कहीं पीछे छूट गए। बेटी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, तो अब आपके सपने पूरे होंगे। बेटी ने उसे पढ़ाया लिखाया, मतलब अपनी माँ को पढ़ाया लिखाया, ओ माय गॉड। सरिता ने सिलाई सीखी और धीरे धीरे अपने बनाए कपड़े बेचने लगी। पहली कमाई हाथ में आई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ये सिर्फ मेरी पहली कमाई नहीं, मेरी पहचान की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे गांव की कई महिलाएं उसके साथ जुड़ गईं। सरिता ने उन्हें सिर्फ काम करना नहीं बल्कि अपने लिए जीना और पहले अपने लिए खुद फैसले लेना सिखाया। उस दिन सरिता समझ गई कि औरत सिर्फ एक घर की जिम्मेदारी नहीं होती, वह खुद एक पूरी पहचान होती है। उसके भी सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने का हक उन्हें पूरा होता है।
5: यस मैम, बहुत अच्छा स्टोरी था आपका। हाँ, इसका मतलब पहले खुद के लिए, उसकी माँ ने यही सिखाया कि हाँ पहले अपने लिए वो जियो।
4: बिल्कुल,
5: अपना हक।
4: हाँ, मतलब जैसे लगता है ना कि संध्या की हम लोग ने, मतलब सबकी आदत होती है, सब महिलाओं की, कि किचन में है, चलो खाना बना गया, बन गया, सबको खिला दिया गया, पर जो बचा वही खाएंगे।
5: नहीं मैम, ये होता भी है कि वो उन्हें एकदम सही तरीके से खाना नहीं मिलता है, वो सबको खिला देती है, अपना थोड़ा कम में ही काम चला देती।
4: और अगर
5: सब्जी होती है तब भी खा लेती, नहीं होती तब भी खा लेती।
4: वही अगर नहीं भी बचता है ना तो भी उनको लगता है कि चलो ठीक है, नहीं है ना, अब कौन जाके रोटी बनाए,
5: कौन बनाए। मैम हाँ, इवन तो वो तो हाफ पेट खाना खा के सो जाती है।
4: मतलब ये होता है कि अगर जहाँ पर दो रोटी की अगर भूख है, अगर एक रोटी मिल जाए तो भी लगता है कि चलो ठीक है, अब यार रात में कौन पकाए, छोड़ो नहीं पकाते हैं।
5: Yes, ma'am.
4: पर यही सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि जब वो अपने लिए नहीं सोचती है।
5: मैम ये होता है कि जब स्टार्टिंग में खाना निकालना होता है फैमिली में, मतलब पापा भैया जो भी और लोग हैं, तो इंसान दाल चावल सब्जी रोटी प्लस सलाद भी रखेगा।
4: हाँ।
5: लेकिन जब हम फीमेल्स को खाना होता है तो फिर वो जो मतलब जो भी खाना है सब लोग खा चुके हैं।
4: हाँ।
5: फिर चलो ठीक है, सलाद नहीं है कोई बात।
4: हाँ।
5: वैसे जो भी उतना खा लिया, अब ये नहीं कहेंगे कि हाँ सलाद
4: से काट लें,
5: कितना ज्यादा विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं।
4: बिल्कुल,
5: लेकिन
4: बिल्कुल।
5: हम लोग अपने लिए खुद के लिए नहीं करते थे।
4: बिल्कुल सही बात है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप जो काम अपने घर के सभी मेंबर्स के लिए कर रहे हैं तो वही सारे काम हम खान पीन को लेकर के, कुछ आराम को लेकर के अपने लिए भी करना चाहिए। तो भाई आज के शो को शो में हम लोगों ने पूरा का पूरा महिलाओं को समर्पित करते हुए आपको सबको बताया। मैं भी खाना खाने के बाद गुड़ जरूर खाती हूँ, और सबसे अच्छा होता है गुड़ खाना, क्योंकि वो पेट के लिए अच्छा होता है एंड हीमोग्लोबिन के लिए भी सबसे बेस्ट ऑन।
5: अब जान पाए क्या है राज इस जीरो फिगर और एकदम
4: मेंटेनेंस का।
5: यस मैम,
4: मेरा जीरो फिगर है
5: और क्या,
4: मैं थोड़ा सा मोटा, थोड़ी सी मोटी होना चाहती हूँ, पर मुझे, मैं जिसको बताती हूँ ना, सब लोग मुझे कहते हैं कि नहीं तुमको मोटा नहीं होना है। आजकल हम लोग पतला होना चाह रहे हैं और तुम मोटा होना चाह रही हो। तो प्रीति जी, मुझे भी थोड़ा सा मोटा होना है, तो मुझे बताएं कि क्या खाना है। मतलब थोड़ा सा हेल्दी होना है, मतलब ऐसा नहीं ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ, मतलब एक दो किलो मुझे वजन बढ़ाना है, तो मुझे क्या खाना चाहिए। मुझे आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, वैसे आप लोग हमसे पूछते हैं ना, एंड जल्दी से आंसर दीजिए कि आप मुझे क्या खाना चाहिए कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मतलब मेरा मन हो रहा है आज आप लोगों से पूछने का कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ कि मुझे कुछ और खाना चाहिए कि थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा हेल्दी हो जाऊँ। तो संध्या से पहले पूछते हैं, फिर मैं आशु जी और प्रीति जी से पूछूँ। तो आशु, संध्या जी बताइए।
5: मैम अगर मैं लिटरली बोलूँ तो आप मुझे अगर थोड़ा वेट गेन कर लेंगी तो अच्छी बात है, वरना मुझे आप ऐसे ही अच्छी लग,
4: ऐसे ही ठीक है ना मेरा। yes, मतलब मेरा मतलब मैं बहुत पतली,
5: मतलब अगर आप वो कर लेंगी तो अच्छी बात है। हाँ। पर आप मुझे अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं मतलब आप मुझे देखने में ऐसे ही अच्छी,
4: ऐसे ही मतलब सही लगते है ना। ठीक है, तो मैं बहुत पतली नहीं लगती हूँ, है ना।
5: नहीं पतली हो लेकिन मुझे ऐसे पसंद,
4: मतलब ऐसे ही है, मतलब मैं फिट हूँ कि बहुत पतली हूँ।
5: पतली हूँ मैम,
4: मतलब फिट नहीं है।
5: फिट वाले उसमें पीओबी में आपको नहीं रखा जाए।
4: मैं बहुत पतले में हूँ।
5: हाँ पतली,
4: मैं बहुत जीरो फिगर में हूँ। अच्छा, तो लिसनर्स आप बताएं मुझे कि मैं जीरो फिगर में आती हूँ कि मैं फिट हूँ, क्योंकि अभी तक मैं मेरे जो अपने हैं तो वो मुझे सब ये कहते हैं कि आप फिट हैं, और मतलब ना बहुत पतले में आते हैं ना बहुत मोटे में आते हैं, मतलब फिट में आते हैं। तो प्रीति जी जल्दी बताइए, क्योंकि मेरा टाइम ओवर हो रहा है और मुझे अभी आपको एक गाना भी सुनाना है चलते चलते, इसलिए जल्दी से लिख करके भेजिए प्रीति जी एंड आशु जी। तो मैंने गाना पीछे चला दिया है, बस जल्दी से आपका मैसेज का वेट है, आपके मैसेजेस आए मैं उन्हें रीड करूँ एंड देन आपसे टाटा बाय बाय करूँ। तो अभी तक वो लिख ही रही हैं, और जल्दी से प्रीति जी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि मैम आप ऐसे ही अच्छी लगती हो, मुझे आशु जी ने लिखा है। हमेशा प्रसन्न रहिए और ये माया माया अनाज खाइए, ये माया अनाज खाइए, मतलब प्रसन्न रहिए। अच्छा, तो आशु जी का मैसेज आया है कि मैम आप ऐसी अच्छी लगती हो, तो थैंक यू सो मच। एंड मुझे अभी इन्होंने भी बताया है, संध्या ने भी बताया है कि आप ऐसी ही अच्छी लगती हैं। सच कहें तो हफ्ते में एक बार सादा खाना ज़रूर खाएं, बिना मसाले वाला लाइक खिचड़ी चटनी रोटी मज़ा आ जाता है।
5: अच्छा मैम, मोटा इसका मतलब एक बात और है, ये लोग जो व्रत रहते हैं वो भी एक अच्छा है, खुद को मेंटेन फास्ट रखने का एक मतलब ऐसा होता है कि उस दिन आप थोड़ा लाइट चीज़ें लेते हो, जैसे कि खाना तो खाता नहीं है इंसान, तो जो मतलब पहले से आप में स्टोरेज या फिर अनडाइजेस्ट फूड है वो जिस दिन आप फास्ट रखते हो उस दिन वो कवर कर लेते हैं, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है।
4: एग्जैक्टली
5: मैम, आप कहीं आप फास्ट तो नहीं रखती हैं हम लोग से चुपके?
4: ना ना, मैं कोई फास्ट नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं कोई फास्ट वगैरह नहीं रखती हूँ। बट मुझे जितने भी मेरे मेरे मतलब क्लोज वाले फ्रेंड्स हैं, मुझे सब कहते हैं कि आप ऐसा ही मतलब रहें तो ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए हम दोनों को दें इजाज़त, हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
8: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

हेलो हाय गुड आफ्टरनून नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौकी उन्नति, मौजूद हूँ आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और भैया प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा यानी कि फरमाइशो वाला सिलसिला 3 से 4 जारी रहेगा आपके अपने इसी रेडियो पर। तो अपनी फरमाइशें करने के लिए उठाइए अपना फ़ोन, डायल करें 6393316429, IRP 6393316429 दोनों। और अपनी फरमाइशों के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा ताकि आपकी फरमाइश इधर उधर मिस ना हो जाए। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश की ओर और इन्जॉय करते हैं मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, धर्मेश त्रिपाठी जी का ये गाना है। तो इन्जॉय करते रहिए, ये हमारी पहली फरमाइश है और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ हमारे प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। देखते हैं आज हमारा प्रोग्राम किस गाने पे खत्म होता है। तो अपनी फरमाइशें करते रहिए, इंतजार मत कीजिए भैया क्योंकि टाइम बहुत जल्दी गुजरता है यहाँ पे।

क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना था, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। और ये फरमाइश थी हमारे धर्मेश त्रिपाठी जी की। एंड इसी के साथ आपके चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, तो पहले चैट बॉक्स के दर्शन करते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। धर्मेश जी का ही सबसे पहले मैसेज आया। हेलो आशुमती मैम, हेलो, कैसे हैं धर्मेश जी आप, एंड कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक हैं? हाँ जी, हम तो ठीक ठाक हैं, बस थोड़ा सा भीग गए हैं बारिश की वजह से। बारिश की ये जो फुहार है, जो बेमौसम आ रही है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आ तो रही है ना फिलहाल। इसके बाद आसिफ अंसारी जी जुड़े हैं हमारे साथ हैदराबाद तेलंगाना से, आपका भी स्वागत करते हैं। महेंद्र दीपन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपने लिखा है गुड आफ्टरनून, नमस्ते आशुन्ती मैम जी, कैसी हैं आप, सुरों की महफिल सजे, खुशियों की बरसात हो, उन्नति मैम की आवाज़ हो, हर पल खास हो, फरमाइश भी पूरी हो, गानों की रफ्तार भी फास्टर हो। स्वागत है मैम जी आज फिर आपकी आवाज़ के नाम ये दोपहर हो। थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लिखते हैं वैसे। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लोग लिखते हैं कि लिखवाते हैं, क्योंकि एआई भी आपको टक्कर नहीं दे सकता। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं हमारे अगले गाने को। अगला सॉन्ग हमारे पास सुनील कुशवाहा जी का है, और इस गाने के बाद देखते हैं हमारे पास किसका दूसरा मैसेज है।

किया।

0: मेरी चांदनी।
1: हाँ जी, और ये गाना था चांदनी फिल्म से, हमारे सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश थी, और आप एंजॉय कर रहे थे चांदनी का टाइटल ट्रैक। एंड चांदनी नाम लेते ही अगर आपको श्रीदेवी नहीं याद आई तो बॉस क्या कर रहे हैं आप, आपको याद आनी चाहिए। एक लड़की भीगी भागी सी लिखा है हमारे अरविंद जी ने, और ये गाना सुनने के बाद आपको बड़ी हंसी आ रही है। अरविंद जी ऐसी भी क्यों, क्या बात होगी जो आप इतना हंस मुस्करा रहे हो, हंस रहे हो। इसके बाद रोशनी हो गई है ये जगह आपके आने से, रोशन हो गई है ये जगह आपके आने से, यूं ही आते रहना आप किसी बहाने से, तहे दिल से स्वागत है आपका इस महफिल में, हमें आपका इंतजार था एक जमाने से। क्या बात है, क्या बात है, अगर इस कदर मेरा इंतजार होगा तो मुझे लगता है मैं रेडियो ग्यारस्ती छोड़ के जाऊंगी नहीं, सबका प्रोग्राम मैं ही कर लूंगी, हटो हटो सब साइड हटो, मैं ही कर लेती हूँ, संभाल लेती हूँ पूरा अकेले, और सच में मैं कर भी लूंगी। तो इस तरह की शायरी बहुत ही जबरदस्त लगती है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आइए चलते हैं, बढ़ते अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे समरीन जी की, तेरी आंखों का दरिया, यानी कि राहत फतेह अली खान की आवाज़ में आप एंजॉय करने जा रहे हैं, जरूरी था। और हम मिलेंगे अगले गाने पर जो कि बैंगलोर से आया, बताते हैं किसका, लेकिन इंतजार कीजिए क्योंकि मिलते हैं इस गाने के उस पर।

माइक के पार हम ही हैं, यानी कि आपकी अपनी आर्जुनति है, और कौन हो सकता है, 304 कोई भी नहीं हो सकता सिवाय मेरे। इसके बाद लिखा है उन्नति मैम को कोई चाय पिलाओ क्योंकि आज वो भी के आई हैं स्टूडियो में। चाय अभी ऑफ एयर जाकर, अभी देखो मैं रेलवे ट्रैक वाला चाय ना करूं तो बताना। फिलहाल के लिए गुलफशा सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टर टू यू। एंड फिलहाल के लिए मुझे आफ्टरनून से ज़्यादा इवनिंग लग रही है इस वक्त जो हिसाब से बारिश हो रही है। और आजकल अचानक बारिश आ कहाँ से रही है, कौन भेज रहा है अपने शहर से हमारे शहर में इतनी ज्यादा बारिश, वो भी बिन बुलाए बरसात। ओके पप्पू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून टू यू। सब अचानक कहाँ चलेगा भाई, सब गए हैं बारिश में भीगने के लिए, आप भी जरा भीग कर आइए। और आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास आई है बेंगलोर से, सुनना चाहते हैं राजेश मीना जी हॉकी फिल्म से ऐसा जादू डाला रे। तो एंजॉय करते रहिए, बहुत ही प्यारा तड़कता भड़कता हाई बीट गाना है। इस गाने के बाद हम मिलने वाले लेकर के हमारी उत्तराखंड की फरमाइश, तो जाएगा कहीं नहीं, बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश आई थी हमारे पास बेंगलोर से, राजेश मीना जी की फरमाइश थी। खाकी फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे, लारा दत्ता और अक्षय कुमार पर फिल्माया गया गाना, सुनिधि चौहान की आवाज थी, समीर साहब के लिखे बोल थे। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले मैसेज की तरफ। अगला मैसेज हमारे पास आ रहा है हैदराबाद से आसिफ अंसारी जी का, और लिखा है, मेरे यहाँ तेलंगाना हैदराबाद में बारिश नहीं हुई है, यहाँ की वहाँ हो रही है। ओके, तो मैं ऐसा करती हूँ, बादलों से बोल के आपके घर भेज देती हूँ बारिश, आप एंजॉय करते रहिएगा, क्योंकि हमें अभी जरूरत नहीं है बारिश। और हवा जिस कदर चल रही है, अभी चार दिन पहले ही बत्ती गुल हुई थी गोंडा की, और अब लगता है दोबारा से गुल होने का टाइम आ गया। बट ऐसा ना हो, नहीं तो हमारा फोन चार्ज नहीं हो पाएगा। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना हम लेकर आए हैं उत्तराखंड से, अगली फरमाइश आ चुकी है रीना शर्मा जी की, और बहुत ही प्यारी फरमाइश आई है, रोका कई बार हमने दिल की उमंग को, ये फरमाइश है। तो आइए एंजॉय करते एक रोमांटिक सा नगमा, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार। मेरे सनम 1965 में रिलीज किया गया गाना है मोहम्मद रफी आशा जी की आवाज में, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगले सॉन्ग पर, जो कि आपके अपने गोंडा शहर से होने वाली है देवी प्रसाद जी की।

और ये फरमाइश थी हमारे पास रीना शर्मा जी की फ्रॉम उत्तराखंड। बहुत ही प्यारा सा नगमा आशा जी और मोहम्मद रफी की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे। और अब बारी है अगले गाने की ओर बढ़ने की। अगला गाना आया है हीरो नंबर वन से देवी प्रसाद जी की फरमाइश पर, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे बाप के डर से। बट यकीन मानिए इस पूरे फिल्म में कहीं उनके पिताजी हैं ही नहीं, यानी कि करिश्मा जी के पिताजी हैं ही नहीं, और इसीलिए इस गाने पे बहस भी बहुत लंबी चौड़ी चली थी। लोगों का कहना था कि इस गाने में, यानी कि हमारे समीर साहब का कहना था इस गाने में पिता का नाम क्यों है, तो वो कह रहे थे इसमें होना चाहिए, वो कह रहे नहीं होना चाहिए, वो कह रहे होना चाहिए, वो कह रहे नहीं होना चाहिए। और इसी बहस में ये गाना रिलीज किया गया था, ये शर्त लगा करके कि अगर ये गाना हिट नहीं हुआ तो तुम ये फ्री में करवाओगे, और अगर हिट हो गया तो तुम मुझे पैसे दोगे। और ऐसे ही चल रहा था ये गाना फिलहाल के लिए। गाना जैसे रिलीज हुआ ये हिट भी हो चुका था। तो आइए इंजॉय करते हैं। कुछ गानों के पीछे की कहानियां बड़ी जबरदस्त होती हैं और कुछ की बहुत फनी होती हैं, तो ये थोड़ा सा फनी किस्सा रहा था इस गाने को लेकर के। फिलहाल इंजॉय करते रहिए, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से हीरो नंबर वन से देवी प्रसाद जी की फरमाइश। और अपनी फरमाइशें भेजने के लिए उठाइए अपना फोन, डायल करें 6393316429। कॉलर ट्यून गोंडा में आपकी फरमाइशों का इंतजार कर रही है आपकी अपनी आरशी 89.6 FM रेडियो ग्यारह असली।

और अभी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, ना भागिए ना भागने का प्लान बनाइए, क्योंकि सड़कें गीली हो चुकी हैं, फिसल सकते हो और गिर सकते हो, और गिर जाओगे तो फिर जिसके साथ भागे हो वही करेगा ही ही ही ही ही, आप गिर गए, ओ माय गॉड आप गिर गए। तो ये हरकतें मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे जैसे इंसानों में से एक हैं तो पक्का आप हंसोगे पहले उठाओगे बाद में। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। एंड वैसे मैं जालिम नहीं हूँ, ओके अरविंद जी मान लेते हैं, आपने कहा तो हम मान लेते हैं, आपकी बात पर भरोसा है हमको। गुलाबशाह जी आपका गाना है हमारे अरविंद मौर्या जी की गाने के उस पार, तो आइए एंजॉय करते हैं हमारे अरविंद जी का गाना छतरी ना खोल बरसात में। छतरी होनी भी चाहिए बरसात में खोलने के लिए, नहीं तो मैं भीगती नहीं। फिलहाल ये गाना डेडिकेट किया है उन्होंने अरीबा जी को, गुलाबशाह जी को, नागेश्वर जी को, धर्मेंद्र जी को, कुमार जी को, रोशनी जी को, महेंद्र दीपन जी को, और ओके तो मेरा नाम भी है इसमें शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं इस गाने के उस पार।

और ये फरमाइश थी हमारे अरविंद मौर्य जी की, छतरी ना खोल बरसात में, तो कब खोलनी है, धूप के अंदर है बताइए जरा। और क्या बात है दोस्तों, लाइट आ चुकी है। जिस तरह से एक बिल्ली चूहे को देख के खुश होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हम बत्ती को देख के खुश हो जाते हैं बारिश के महीने में। और आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना है हमारे आसिफ जी के लिए, स्पेशली डेडिकेटेड बाय गुलफशा सिद्दीकी जी, और वो सुनना चाहती हैं या फिर कहें तो सुनाना चाहती हैं। गानों के नाम पर ताने भेजे हैं, एक कुमारा फंस गया यारा, तो सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए। उदित नारायण अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज है, विवेक आफ्ताब रितेश में फिल्माया गया गाना है, तो एंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार। आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गुंडा विद्राज यूनिटी।

और ये गाना था हमारी गुलफ्शा सिद्दीकी जी की फरमाइश और डेडिकेट किया था आशिफ जी को। रीना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी मैसेज मिल गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला फरमाइश हमारे पास आया है मुन्ना जी का फ्रॉम गोंडा और वो सुनना चाहते हैं सैयारा। तो एंजॉय करते रहिए सैयारा का टाइटल ट्रैक। हम मिलेंगे इस गाने के उस पर आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में। अगली फरमाइश हमारी राजू सलमानी जी की है, महेंद्र जी की है, आसिफ जी की है, इम्तियाज जी की है, सोनिया तिवारी जी की है, अनु पांडे जी की है, निशा जी की, राजेश शुक्ला जी की, उस्मान खान की, अशोक जी की और अमन जी की। भैया बहुत सारी फरमाइश है, 20 मिनट के अंदर कवर अप करनी है।

और ये फरमाइश थी हमारी मुन्ना जी की। एंड ओके, हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक जी, आपका स्वागत करते हैं। अरीबा शेख हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। एंड हमारे एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। विक्की जी लिख रहे हैं काफी सैड सॉन्ग है जी, अगर आपके दिल को छुआ है तो बताइएगा जरूर। उन्नति मैम जी, हमारा गाना लास्ट में क्यों चलता है? आदि जनाब, जब तक आप कॉल करते हैं तब तक हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ चुकी होती है, इसीलिए फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। राजू सलमान जी की फरमाइश पर आपके लिए पेश करते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन से, ये बेहतरीन सा नगमा। मिलेंगे अगले गाने पर, जो हमारे महेंद्र जी की फरमाइश है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, मेरे महबूब कयामत होगी। सुनते रहिएगा।

की तरफ अग लगाना पेश करते हैं। और अभी तक आपने कई दफा किशोरदा की आवाज में एंजॉय किया होगा मेरे महबूब कयामत होगी, लेकिन आज वो गाना आप एंजॉय कीजिए जो मुझे बेहद पसंद था, बेहद प्यारा लगता था मुझे। और ऑफ कोर्स आप एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा विद योर आज उन्नति।

ये फरमाइश है हमारे महेंद्र जी की है। रोशनी रावत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं चार बॉक्स में, आपका स्वागत करते हैं। करिश्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। मनीष शर्मा जी आपका भी वेलकम करते हैं, आपने हाय लिखा है। हाय एन तबिश खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करता है। और आपने लिखा है कि उन्नति मैम हेलो कैसे हो, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। हाँ जी तबिश जी आपका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं वापस से आपके अपने वाले शो कॉल ट्यून गोना में। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे आसिफ जी की है और वो सुनना चाहते हैं, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगली फरमाइश पर। एंड लेट्स सी आज वक्त आगे जाता है या आपकी आज चुनौती, ये चैलेंज हमेशा रहता है मेरा वक्त के साथ। फिलहाल एंजॉय करते रहे।

और आसिफ जी ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते हो। इसी के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगले गाने पे पेश करते हैं हमारे इम्तियाज जी की फरमाइश, अकेली लैला। एंजॉय करते रहिए बागी फोर से। हम मिलेंगे अगले गाने पर, चूड़ियां बजाऊं या बजाऊं कंगना। आज

और भाई वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, इसी के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और एंजॉय करते हैं। मैं चूड़ियां बजाऊं या बजाऊं कंगना, हमारी सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर मैं कह रही हूँ। सोनिया जी आप कुछ भी बजाइए, हमको दोनों प्यारे लगते हैं, बस आपकी हाथों की खनक होनी चाहिए।

भाई माफी चाहूंगी हमारी सोनिया जी आपकी गाड़ी को बीच में रोकने के लिए। फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। फैन मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। अगली फरमाइश है मेरा फेवरेट गाना अनु पांडे जी की फरमाइश है, ऐ मेरे हम सफर कयामत से कयामत तक आप इंजॉय करते रहिए। एंड हम मिलेंगे हमारी अगली फरमाइश पर निशा जी की, और मुझे लगता है भैया आज कुछ फरमाइशें हम प्ले नहीं कर पाएंगे, तो आपसे तहे दिल से माफी चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा।

ये बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। ये फरमाइश थी हमारे अनूप पांडे जी की। अगली फरमाइश है, दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों ना मानूं। बचपन से इस गाने को गाती आई हूँ। जब भी किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना होता है, स्पेशली मेरी मम्मी को यही गाना गाते हैं, और मेरी मम्मी कहती है तुम्हारा दिल है कि क्या है, हर दो बात पे टूट जाता है, ऐसा करो अच्छा वाला फेविकोल लगाओ और चिपका दो इसको।

और ये फरमाइश थी हमारे निशा जी की। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगले गाने में आपके लिए पेश करते हैं हमारे राजेश शुक्ला जी की फरमाइश, जो कि ये दिल है आशिकाना। आप एंजॉय करते रहिए, टाइटल ट्रैक है। और इस गाने के बाद हम मिलेंगे लेकर के हमारे उस्मान खान जी की फरमाइश है। मुझे लगता है भैया कि आज अशोक जी से और अरमान जी से मुझे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि वक्त होता जा रहा है। अब आपसे विदा लेने का कोशिश करती हूँ, अगर नहीं प्ले कर पाई तो आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे।

ये फरमाइश थी हमारे राजेश शुक्ला जी की। एंड इसी के साथ अब वक्त ने इशारा कर दिया है कि आपसे विदा लेने का वक्त आ चला है, और मेरे पास जो आखिरी फरमाइश आज हम प्ले कर सकते हैं वो है हमारे उस्मान खान जी की। अशोक जी एंड अरमान जी, मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, आज मैं आपका गाना प्ले नहीं कर पाई। फिलहाल के लिए ये गाना आपको डेडिकेट करते हुए जाती हूँ, क्योंकि आपके भी गाने बारिश से रिलेटेड थे, तो कहीं ना कहीं आपको अलका जी की आवाज़ में ये गाना ज़रूर पसंद आएगा। एंड कल आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी कॉल कीजिएगा ताकि मैं आपकी फरमाइश को जल्दी से प्ले कर पाऊँ। अभी के लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। फिलहाल ख्याल रखिएगा, घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का। इट्स कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, मोहम्मद आजम जी आपका भी स्वागत करते हैं। एंड ये गाना जो आपने फरमाइश की है प्लीज़ कल कीजिएगा, वो भी कॉल करके। तब तक के लिए इन्जॉय करते रहिए रेडियो 91.6 FM। इजाज़त चाहेंगे, बाय बाय, टेक केयर, और आज का दिन आपका खूबसूरत हो बस यही दुआ करेंगे।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9826098197 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सारी मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: एक बार आपका स्वागत वापस से करते हैं आज के इस स्पेशल गोधुली प्रोग्राम में। और आज दिन खास है, क्यों? क्योंकि गोंडा में अक्सर हम यहाँ की पर्सनालिटीज से बात करते हैं, लेकिन दरअसल आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, वो यहाँ किसी दौर में रहे हुए हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पड़ोसी जिले यानी गोरखपुर से आए हुए हैं। और हम बता देते हैं, उनका परिचय करा देते हैं। दरअसल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भारतेंद्र सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम गोरखपुर। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत
2: जी, आपको भी नमस्कार,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, हमारे बीच में आप आए आज इंटरव्यू के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी, धन्यवाद।
1: और वैसे हम अपने श्रोताओं को बता दें, चूंकि हमने अभी जो आपका पद बताया वो पुस्तकालय अध्यक्ष बताया, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप जो है काव्य से जुड़े हुए हैं, यानी आज का ये जो इंटरव्यू है इसमें आपको पूरा रस मिलने वाला है काव्य का। तो जैसा कि मैंने खुद आपका डेजिग्नेशन बताया पुस्तकालय अध्यक्ष, तो एक दिलचस्पी जागती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बुक्स पसंद करते हैं। लाइब्रेरी कहते हैं जैसे जन्नत है शायद उन इंसानों के लिए जो किताबों को पसंद करते हैं। हम शुरुआत आपसे करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि सर आप अपना एक संक्षिप्त सा परिचय हमारे श्रोताओं को दे दिए जो आपको पहली बार सुन रहे हैं।
2: जी, मैं डॉक्टर भारतेंद्र सिंह महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। मेरा बचपन का जीवन गोंडा आवाज में बीता है, मैं यहीं का विद्यार्थी रहा, बाल्यकाल से लेके और पढ़ाई तक यहीं रहा मैं। मेरे पिताजी टॉमसन कॉलेज में डॉक्टर रामनाथ सिंह थे, और यहीं की आज भी मुझे भूलता नहीं। जब मुझे पता चला गोंडा में 89.6 FM चालू है, तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई। हमने कहा नहीं, यहाँ चलेंगे जरूर, अपने बचपन की माटी को जरूर देखेंगे। यहाँ की भाषा, यहाँ के रीति रिवाज हमको बहुत पसंद थे। मैं रहता जरूर गोरखपुर में हूँ, भोजपुरी प्रदेश में, लेकिन मुझे अवध की माटी आज भी याद है। यहाँ की भाषा, यहाँ की बोलियाँ मुझे अत्यधिक प्रभावित करती हैं।
1: क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात आपने कहा, क्योंकि ये अवध का एरिया है और आप जहाँ पे रहते हैं उस बेल्ट में भोजपुरी बोली जाती है, इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके करियर पर आते हैं, ये जो आज आप जिस पद पर हैं, क्या आपने सपना इसी का देखा था या आपको कुछ और बनना था?
2: मैं जब यहाँ हिंदी से MA किया लाल बहादुर शास्त्री PG कॉलेज में, मेरा सपना था मैं भी प्रवक्ता हूँ, लेकिन प्रवक्ता तो नहीं हो पाया मैं, तो लाइन मेरी चेंज हो गई
1: जी।
2: और उसके बाद हम चले गए डिग्री कॉलेज में, और एक छोटे से पद से प्रारंभ किया हमने, वहाँ लाइब्रेरियन रहा, क्लर्क से स्टार्ट किया हमने अपने आप को, और क्लर्क से शुरू किया, फिर मुझे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल समिति ने पढ़ने के लिए अवसर प्रदान कर दिया। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से लाइब्रेरियन, और लिखने की इतनी उत्सुकता थी मुझे, मैं चाहता था कि लाइब्रेरी में जाऊँ और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ूँ। और हमने जब लाइब्रेरी में ज्वाइन किया तो खूब किताबें पढ़ी हमने,
1: अरे वाह,
2: और लिखा पढ़ा दोनों किया। मैंने उपन्यास भी लिखा गोंडा में, गोंडा की धरती पर ही हमने 7 उपन्यास लिखे थे।
1: गोंडा की धरती पे आपने 7 उपन्यास लिख दिए, वाह।
2: घुटन सुमन मंदिर पीछे, दोहरी जिंदगी, उदास जिंदगी, जिंदगी पीछे,
1: अरे
2: मैं और मेरी जिंदगी। लेकिन धन अभाव कारण मैं बेरोजगार था, इसी किताबें छप नहीं पाई। कविताएं भी लिखता था, कम लिखता था। 1982 जब मैं हाई स्कूल में था टॉमसन कॉलेज में, तो वहाँ दीपक पत्रिका निकलती थी, उसमें एक वार्षिक पत्रिका में निकली मेरी उपासना, खूब सराहा गया,
1: काफी लोगों ने पसंद किया
2: जी। और उसके बाद फिर मैंने लिखना प्रारंभ किया, फिर हमने LBS PG कॉलेज में लिखा, फिर रोजगार ना मिलने के कारण फिर मैं चला गया गोरखपुर।
1: बिल्कुल, तो इस तरह से आपका जो सफर रहा वो गोरखपुर तक का रहा
2: जी।
1: सर, बहुत असर पड़ता है पिता का, माता का, फैमिली का
2: जी,
1: आप पर कैसा क्या असर रहा?
2: मेरे पिताजी का पूरी तरह प्रभाव था, क्योंकि पिता मेरे हिंदी के प्रवक्ता थे और पढ़ते खूब थे, और उसका परिणाम यह था वो पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़ना शुरू कर दिए। किताबें विरासत में थी, एजुकेशन विरासत में था मेरे घर, खूब हम लोग पढ़ा, और जब पढ़े शब्दों का भंडार मिल गया।
1: बिल्कुल,
2: और शब्दों को चयन करने के लिए भंडार की आवश्यकता है, हम अपनी अभिव्यक्ति कैसे करेंगे, जब तक शब्द नहीं रहेंगे। भाव तो उत्पन्न होते जरूर सबके मन में है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं हो पाए। अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की आवश्यकता है, और जब तक पढ़ेंगे और चिंतन नहीं करेंगे, अध्ययन और चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक अच्छे लेखक आप हो ही नहीं सकते।
1: सर, आपने अभी जस्ट कहा कि शब्दों का भंडार होना बहुत जरूरी है और चिंतन करना एक लेखक के लिए जरूरी है। अगर मैं एक आम इंसान के तरफ से पूछूं, मैं खुद के लिए पूछूं, या इस वक्त जो श्रोता सुन रहे हैं जिनको लेखक ना बनना है ना कभी वो बने हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए किताब आखिर कितनी मायने रखती है?
2: जब तक समाज के मनोभावों पर नहीं लिखा जाएगा, स्वांता सुखा लिखा जाएगा, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जब तक पाठक के दृष्टिकोण से आप नहीं लिखेंगे, पाठक की रुचि के अनुसार आप नहीं लिखेंगे और उनके मनोभावों को अभिव्यक्त नहीं करेंगे, तब तक सामान्य आदमी नहीं पढ़ेगा, उस किताबों को नहीं पढ़ सकता।
1: क्या बात है,
2: आपकी मन स्थिति को जानना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सही बात है। सर, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो आप लाइब्रेरी साइंस आपने पढ़ी हुई है
2: जी।
1: साइंस तो समझ में आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे सुनने में लगता है लाइब्रेरी का कौन सा साइंस होगा, किताबें रखती हैं उठा दी जाती हैं। मतलब मैं एक आम इंसान की दृष्टि से आपसे पूछ रहा हूं, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि इसमें क्या होता है।
2: पुस्तकालय विज्ञान ऐसा विज्ञान है, सूचना पुस्तकालय विज्ञान, सारे विज्ञान उसमें निहित है, साइंस कॉमर्स आर्ट एग्रीकल्चर सब निहित है उसमें। और कोई भी लाइब्रेरियन अगर मास्टर डिग्री कर रखा है तो सारी किताबों का अध्ययन करता है, सारी चीज़ें उसको पता रहती हैं इसके अंदर क्या होगा। और जब पाठक या स्टूडेंट उसके पास से आता है तो बताने की कोशिश करता है। पाठक अनजान है, उसको नहीं पता है कि भौतिक विज्ञान में क्या है, सामाजिक विज्ञान में क्या है, ये लाइब्रेरियन का काम है, पुस्तकालय अध्यक्ष का काम है बताए उनको। पुस्तकालय में हमेशा वो लगा रहता है निधानी, जिसको डेस्क कहते हैं, उस पर नई नई किताबें लगाई जाती हैं ताकि रुचि बढ़े
1: जी।
2: और आप अध्ययन करना शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है, अगर सुबह शाम आपके पास किताब नजर में पड़ेगी, दो पेज जरूर आप पलट लेंगे और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, आप भी मेरे जैसे हो सकते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि शुरुआत जो है वो बहुत छोटी सी की जानी चाहिए ताकि आप आसानी से उसको कर लें। सर, कई लाइब्रेरी में हजारों नहीं लाखों किताबें होती हैं, आखिर किस तरह से लाइब्रेरियन ढूंढ लेते हैं उन किताबों को जो चाहिए होता है पाठक को, इतनी सारी किताबों के बीच, ऐसा क्या साइंस काम करता है?
2: जैसे एक सब्जेक्ट वाइज होते हैं
1: जी,
2: और एक सेशन वाइज होते हैं। सेशन में सारा डिटेल रहता है। आज पहले जब हम लोग जमाने में क्या था, सारा मैनुअल था। अब क्या डिजिटल लाइब्रेरी हो गई है
1: जी,
2: सारे कंप्यूटर पे हैं, डाउनलोड रहते हैं, अब आसान हो गया। पहले बहुत मुश्किल था, एक लाइब्रेरियन के बस का नहीं है, वो उसमें असिस्टेंट लाइब्रेरी 5 होते हैं और सबके विभाग अलग अलग बटे रहते हैं। साइंस का अलग है, कॉमर्स का अलग है, आर्ट का अलग है, साइंस ग्रुप का अलग है, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। पुस्तकालय अध्यक्ष का सिर्फ यही काम है पुस्तकों का चयन करना, नई किताबों का अवलोकन करके डिस्प्ले पर डालना। पाठक अगर लाइब्रेरी में आया तो पता चलना चाहिए कि कौन सी पुस्तक नई आई है, ये लाइब्रेरियन काम है बताए।
1: क्या बात है, मतलब ये आपने जो काम बताया है, ये पुस्तकालय अध्यक्ष और लाइब्रेरियन दोनों का अलग अलग बताया कि किसका क्या काम होता है। सर, मैं अगर आपकी बात करूं तो एक तो होता है सब्जेक्ट की बुक्स
2: जी,
1: लेकिन एक होता है कि अपनी खुद की रुचि, जिसको आप शायद घर पे बैठ कर भी पढ़ना पसंद करते होंगे, किसमें है आप?
2: हम सामाजिक पढ़ते हैं।
1: सामाजिक पढ़ते,
2: जबकि जिस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेडिकल पढ़ाई वहां होती है, घर पे हम सामाजिक पढ़ते, लोगों को पढ़ते हैं और लोगों को पढ़ के लोगों के विषय में ही लिखते हैं।
1: क्या बात है,
2: आप मुझसे बात करें, हम आप पे लिख देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
1: ये तो
2: आपके मनोभाव को पढ़ के मैं लिख दूंगा।
1: वाह, क्या बात है,
2: आदत सी बन गई, पढ़ते पढ़ते लोगों को, पढ़ते पढ़ते किताबों को पढ़ा, हमने लोगों को पढ़ा, जो निष्कर्ष निकला वही हमने लिख दिया, वही मेरे शब्दों को लेखनी प्रवाह चलने लगी।
1: क्या बात है सर, यहाँ पे दो लाइन शेर किसी पे लिख पाना बड़ा मुश्किल होता है और आप किताब जी।
2: और हमको विभिन्न ऑफलाइन ऑनलाइन चैनलों में करीब 600 प्रमाण पत्र मेरे पास हैं।
1: 600 प्रमाण पत्र
2: और अदर स्टेट के हैं, यूपी छोड़ दीजिए,
1: ये आपके कार्य को लेकर के
2: जी। और लाइब्रेरियन को ये है, जब तक पढ़ेगा नहीं, नौकरी भले कर ले, लाइब्रेरियन नहीं हो सकता वो।
1: ये तो बात सही कहा, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें दिल लगाना जरूरी होता है, जैसे एक आर्टिस्ट कोई कमाने का जरिया नहीं हो सकता है
2: जी,
1: आर्ट में दिल तो देना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा,
2: जब तक डूबेंगे नहीं, शब्दों का चयन आप नहीं कर सकते ना उड़ेल सकते हैं उसको।
1: बिल्कुल सर, आपने जब मुझे अपने बारे में बताया था तो मुझे ये भी पता चला था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया था
2: जी, IIT इलेक्ट्रॉनिक्स इलाहाबाद से
1: जी। सर, इसके बारे में बताया।
2: अब उस समय रुचि तो थी नहीं, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी, ये भी हमने कर लिया।
1: क्या बात,
2: लेकिन रुचि मेरे साहित्य में थी, लिटरेचर में था,
1: साहित्य में थी।
2: संभव नहीं है आज के युग में किताबें खरीद के पढ़ी जा सके, और लाइब्रेरी ऐसी संस्था है कि जहां आप पढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और जब तक रुचि नहीं होगी आप लाइब्रेरी में चले जाएंगे, चले वापस चले आएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। रुचि बढ़ाना पड़ेगा, रुचि बढ़ाने का काम सिर्फ लाइब्रेरियन का है।
1: वो कैसे सर?
2: जैसे मान लीजिए मेरे पास आप आ गए
1: जी,
2: और आपको बात किया, मुझे पता चल गया कि आप किस ट्रस्ट के आदमी, मैं वही बुक आपको दिखाया, आप नहीं पढ़ना फिर भी पढ़ लेंगे, पत्रिकाएं दिखाएंगे, मैगजीन दिखाएंगे आपको, और आपसे ओपिनियन ले लेंगे कि आपकी रुचि क्या है, उसी रुचि के अनुसार पुस्तकें आपको दे देंगे हम।
1: वाह।
2: और मृदुल भाषा में आपसे पूछ लेंगे, सर आपने क्या पढ़ा है इसमें, तो अगर आपने चार पेज भी पढ़ा है तो चार लाइन तो मुझे बता ही लेंगे
1: आराम से,
2: और मैं समझ जाऊंगा कि आपकी रुचि किसमें है।
1: किसमें है?
2: आप विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है और विज्ञान किताबें आप रुचि नहीं लेंगे, हटा देंगे उसको। अगर थोड़ी भी रुचि लेंगे तो मुझसे मांग लेंगे, सर मुझे पुस्तक दीजिए, मैं पढ़ के कल दे दूंगा। ये मेरी जिज्ञासा है। लाइब्रेरियन का आप सिर्फ यही है कि अधिक से पुस्तकें लोगों तक पहुंचे।
1: बिल्कुल।
2: एक कहावत है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, अगर पुस्तकें पढ़ी नहीं गई तो रद्दी कागज से उसका मतलब नहीं है।
1: बिल्कुल सही।
2: क्योंकि मेरी पहचान साहित्य क्षेत्र में, मैं कविताएं काफी लिखा, कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, लेकिन कविताओं में क्या होता है कि थोड़े शब्द में ज्यादा बोलना, भाव देना।
1: बिल्कुल।
2: कहानी उपन्यास में क्या है कि थोड़ी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना, दोनों में अंतर है, भाव दोनों एक ही है, लिखने की शैली अलग अलग है।
1: शैली अलग है।
2: कविताओं में थोड़ा लिखते हैं, ज्यादा समझते हैं, और कहानी उपन्यास में ज्यादा लिखते हैं, कम समझते।
1: वाह। कितने सरल शब्दों में आपने दोनों के बीच का भेद बता दिया। सर आप चूंकि लाइब्रेरी से जुड़े हैं, सभी का अपना सपना होता है, जो एक्टिंग करता है उसका होता है कि इस एक्टर से मिल लें, जो घूमने वाले होते हैं उनका कोई एक जगह होती कि काश को हम इस जगह जा पाए। आपके लिए कौन सी लाइब्रेरी सपना है या कभी थी जो आपने उसको पूरा कर लिया वहां जा करके?
2: पढ़ने की। आज भी मैं 17-18 घंटे पढ़ता हूँ लाइब्रेरी घर मिला के।
1: अरे वाह।
2: और लोगों को नसीहत देते हैं, अगर मैं पढ़ सकता हूँ इस उम्र में तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते?
1: क्यों नहीं पढ़ सकते?
2: आप भी पढ़े, रुचि लगाएं। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो आए और चले जाते हैं, मैं बुलाक बैठा लेता हूँ, आप क्यों नहीं पढ़ सकते? मैं पढ़ सकता हूँ तो आप भी पढ़ सकते, नसीहत है।
1: सही
2: हम चाहते हैं आप आगे निकलें।
1: बिल्कुल।
2: अगर ज्ञान हमने समेट लिया उसका कोई मतलब नहीं रहा, ज्ञान बांटने से बढ़ता घटता नहीं है।
1: घटता नहीं। बिल्कुल सर। साहित्य की बात करें तो चूंकि बहुत बड़े बड़े हमारे कवि हुए हैं इंडिया से, अगर हम बात करें आज समकालीन की बात करें तो बहुत सारे नए युवा हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, क्या फर्क पड़ते हैं सर? आपने तो शैली बहुत पढ़ी है, पुराने लोगों की भी आज भी आप पढ़ रहे हैं।
2: नए और पुराने में सिर्फ अंतर है।
1: अंतर है।
2: पुराने में भाव ज्यादा होते थे, जो लिखते थे वो किसी के दिशा निर्देश के लिखते थे, लोग समाज में अच्छी पहचान बने। आज अधिकांश जो लिखे तो जाते अच्छे, लेकिन अधिकांश स्वतंत्र सुखाए होते हैं, लजीज होते हैं, जो थोड़े दिन में गायब हो जाते हैं, चाहे महादेव वर्मा हो चाहे जयशंकर प्रसाद हो, आज भी याद किए जाते हैं
1: जी।
2: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आज भी लोग याद करते हैं, महादेव वर्मा को आज भी याद करते हैं, हरभंश राय बच्चन को आज भी याद करते हैं लोग। ये इनका साहित्य है, आज भी सजीव है। मधुशाला आज भी सजीव है, महादेवी की यामा आज भी सजीव है। तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या, ये महादेवी की थी। निशा को धो देता राकेश, सब अच्छी अच्छी किताबें थी, आज भी लोगों को याद है।
1: बिल्कुल।
2: ये दिशा देती हैं कि हम भी आगे बढ़े, अगर वो लिख सकते हैं तो मैं भी लिख सकता हूँ, अगर वो समाज को दे सकते हैं मैं भी दे सकता हूँ।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: हम क्यों नहीं दे सकते? हमारे दौर में संसाधन नहीं थे, आज संसाधन पर्याप्त है, अगर हम पीछे हैं तो ये मेरी नाकामी है। लोगों से नसीहत लीजिए, मुझसे नसीहत लीजिए।
1: बिल्कुल सर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे यही कहेंगे, शायद मिलते हैं कि बहुत समझ में नहीं आ पाता है क्योंकि उनकी आदत नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप कोई किस कवि को आप रिकमेंड करेंगे कि आप शुरुआत वहां से करिए, उनकी कविताएं आपको समझ में आएंगी, क्योंकि शुरुआत थोड़ा सा आसान होनी भी चाहिए।
2: हाँ, ये बताते हैं आपको, सरल किताबें पढ़िए,
1: सरल कविता,
2: बच्चों की किताबें पढ़िए, रुचि बढ़ाएं। आप सरल किताबें पढ़ेंगे, चाहे चंदा मामा रहे चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जब छोटी छोटी किताबें पढ़ेंगे, इलाहाबाद पे पथवा तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पढ़ेंगे, धीरे धीरे रुचि बढ़ जाएगी अपने आप।
1: बिल्कुल।
2: जब शब्दों को समझने जिस दिन लगेंगे आप, आपको बताने की जरूरत नहीं, प्रवाह आपका चालू है, आजीवन चलता रहेगा, कभी जाएगा नहीं आपसे।
1: मुझे लगता है ये भी एक नशा होता है, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत नशा होता है।
2: जो भाव मेरे थे, जो शब्दों पे प्रगाढ़ प्रेम रहता उनको ना, वो दुनिया नहीं दिखती उनको।
1: बिल्कुल।
2: उनको बाह्य आडंबर बाह्य सुख की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं में खुशहाल है।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: हमारे दौर में रेडियो चलता था
1: जी,
2: संसाधन नहीं हुआ करते थे। अगर आप आदेश करें तो एक छोटी सी रचना सुना दूं।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं बस उसी पे आ रहा था कि आप प्लीज अपनी एक रचना शुरुआत कर दें। अब
2: रेडियो का वही पुराना जमाना याद आता है।
1: क्या बात है।
2: रेडियो का वही पुराना जमाना याद आता है, जैसे बजता हो वही रेडियो का धुन पुराना। विविध भारती के गीत खूब भाता है।
1: वाह।
2: विविध भारती के गीत खूब भाता है, सर्द की खामोशी में रेडियो की बातें पुराना। एक रेडियो सबके कान वही रहते थे, खेती किसानी बीती यादों का जमाना। रेडियो का बजना खुशियों की थी मन में, वो दौर था, संसाधन नहीं थे। और एक जब मैं समाज बाहर निकलता हूँ, मैं समाज को देखता हूँ, समाज से पीड़ा मिलती है, वो शब्द देते हैं। ऊंचे को सब लोग सलाम करते हैं, लेकिन नीचे कोई सलाम नहीं करता, डूबते सूरज को सलाम नहीं करते हैं। हमने एक दिन मजदूर को देखा, भोली आंखों में बेबसी अब मायूसी है।
1: वाह, भोली आंखों
2: में। मैं इसी गोंडा शहर में था, एक लड़का हम लोगों साथ पढ़ता था, वो कभी अमीर था, बाद में प्लेट धोने लगा बस स्टेशन पे। मुझे बरबस याद आ गया वो। भोली आंखों में बेबसी अब मायूसी है, बर्तनों के धोने में नन्हे बचपन की खामोशी है। बचपन बिखर गया बचपन जैसा हो आया। बचपन बिखर गया बचपन जैसा हो आया, जब दुनिया सोती नन्हे हाथ तब बर्तन धोती है। मत छीनो इनका उपवन, ना करो इनका अपराध, बाल श्रम मत कराओ, कानून जुर्म का अपराधी। ये मेरा बड़ा प्रभाव आज भी 40 साल बीतने के बाद भी ये मेरे मन से गया नहीं। कभी मेरे साथ पढ़ता था, आज मेरे सामने ही वो बर्तन धोता था।
1: यानी ये आपने खुद से देखा और खुद इसको फील किया।
2: पहले के शिक्षा में आज की शिक्षा में बहुत अंतर है। पहले संसाधन नहीं थे, लोग स्वयं पढ़ते थे किताबों से, बच्चों से आपस में सामान्यता। आज दूर हो गए लोग, आज व्यापार हो गया है। अगर लोगों का अन्यथा न लगे मैं सुना दूं एक दो लाइन।
1: नहीं बिल्कुल प्लीज।
2: शिक्षा का होता व्यापार बाजारों में आज के दौर में, शिक्षा का होता व्यापार बाजारों में, सरस्वती का वास अब आ गया दौलत के संसारों में। स्वर की देवी ज्ञान के गंगा सब कुछ बिकने लगे हैं, गुरु ज्ञान परंपरा बिकने लगी बाजारों में। ज्ञानवान सम्मान बड़ा है, ज्ञानवान सम्मान खड़ा है शिक्षक चौराहे पे, फीस बढ़ी है गरीब असहाय है बाजारों में। ये मना स्थिति को दर्शाता है,
1: जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसको लेकर आपका लिखना है।
2: नहीं पढ़ सकते आप। एक छोटी रचना फिर मैं सुनाता हूँ। कितना दिखावा चल रहा है दुनिया में, कितना दिखावा चल रहा है दुनिया में, असली दिखावे का आप कुछ पता नहीं। झूठी शान पर थिरकते रहे सारे राह, झूठी शान पर थिरकते रहे सारे राह, असली शान का आप कुछ पता नहीं,
1: कुछ पता नहीं।
2: मेहनत कस इंसान कहाँ चकाचौंध में जीता है, मेहनत कस इंसान कहाँ चकाचौंध में जीता है, सूखी रोटी ही मिली बाकी का कुछ पता नहीं।
1: वाह,
2: ये समाज से हमने सीखा है।
1: बड़ा सच है।
2: समाज ने मुझे दिया है, हम वहां खड़े करके अपने आप को देखते हैं।
1: बिल्कुल।
2: एक फिर और छोटी रचना अगर कहें आप
1: जी।
2: रोटी पे है जिंदगी की दौड़ में पसीना बहाता है, तब जाकर कहीं रोटी गले तक आता है।
1: क्या बात है।
2: कभी अमीरों को छोड़ गरीबों को आप देखें चौराहे पे, जो रोटी नहीं पाते हैं वो लोग। किसान पसीने से सींच कर अन्न उगाता है, फिर कहीं जाकर दाना घर में आता है। तपती धूप में तप कर रोटी कमाता है, भूखे इंसान तक सिर्फ रोटी ही आता है, क्या मिल पाता है उस आदमी को।
1: सच में
2: इस समाज को देखिए, समाज में रहिए पता चलता है हम तो बहुत पीछे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है आपने कही, हम काफी पीछे हैं। और समाज में अगर हम देखते हैं चीजों को, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको बहुत चीजें दिखने लग जाती हैं जब उन निगाहों से हम देखते हैं। बेशक सही फरमाया आपने। और मुझे लगता है कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आकर के वापस से आपसे बात करेंगे, और आने के बाद जाने की कोशिश करेंगे वो पहली कविता कौन सी थी जो आपने अपने हाथों से लिखी थी, और प्रेरणा क्या थी उसके पीछे। बिल्कुल। सो चलिए, म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने हो

0: तो श्रोताओं, एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। और देखिए ना, आज हमारे साथ गोंडा में ही रह चुके हमारे आज के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर भारतेंद्र सिंह सर हमारे साथ में आज मौजूद हैं इस स्टूडियो में। और अभी जाने से पहले उन्होंने अपनी कुछ कविताओं से हमको रूबरू कराया, जो समाज में देखा, जो बाजार में उनको दृश्य नजर आया चलते फिरते। क्योंकि कवि हो या लेखक हो, इनको अपनी कविताएं और कहानियां मिल जाती हैं आम इंसान से, आम समाज से। तो चलिए अब चलते हैं आपके साहित्य के सफर पर। और सर, मेरा सवाल ये था कि जहां तक मुझे पता है 1992 में आपका एक काव्य संकलन सामने आया, काव्य धारा
1: जी।
0: और ये काव्य धारा आखिर किस विषय पर था और इसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको?
1: मैं बताया हूँ, इसके पहले गोंडा की माटी की देन थी, लिखा हमने यही था, जो हमने लिखा वही लिखा, शब्दों पे उड़ल दिया हमने। काव्य धारा, जब काव्य में प्रवाह हुआ मेरा, अब मुझे लगा कि नहीं कुछ लिखना चाहिए समाज के लिए, कुछ देश के लिए, हमने लिखना प्रारंभ किया। शुरू में लिखना प्रारंभ स्वतंत्रता सुखा लिखा, अपने लिए लिखा, उन्होंने कहा तो रद्दी कागज हो जाएगा, इसका क्या मतलब रहा? लोगों के लिए लिखे, लोगों में पहचान बने, लोगों को दिशा दें। अगर 10 व्यक्ति में से एक को भी हमने रास्ता दिखा दिया तो मेरा कार्य सफल रहा, मेरा लिखना सार्थक हो गया।
0: बिल्कुल सर, सही कहा।
1: ये प्रेरणा मेरे लिए रही, लोगों के बीच में जाए, लोगों को मिले। आज अरुच से पढ़ेंगे, कल रुच से पढ़ना शुरू कर देंगे, और सरल भाषा में रहा वो।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत सरल भाषा में रहा। तो सर, यह किसी एक विषय पर था या इसमें कई सारे विषय आपने समाहित किए थे काव्य धारा में?
1: कई विषय था उसमें,
0: कई विषय
1: समाज पे ही था, समाज को एक नई दिशा दे पाए।
0: तो मैंने अभी जाने से पहले भी, ब्रेक लेने से पहले आपसे एक सवाल करने को कहा था कि आपकी पहली कविता, वो हम जानना चाहेंगे क्या लिखा था आपने, जो आपको याद हो, रिकॉर्ड भी हो आपके, तो प्लीज वो हमारे श्रोताओं को भी आप सुनाइए।
1: एक छोटी रचना मेरी प्रारंभ में थी, लेकिन गद्य लेखन में थी मेरी,
0: गद्य लेखन में।
1: कभी मैं झंझावातों में खो जाता, कभी मैं झंझावातों में खो जाता, स्वच्छंद उन्मुख हो जाता, मैं और मेरा अंतर्मन,
0: मैं और मेरा अंतर्मन,
1: हम सभी के लिए खुशियां बांटते रहे, खुद को जोड़कर सहज रह जाता, खुद को जोड़कर सहज रह जाता, मैं और मेरा अंतर्मन, सभी के साथ रहकर फर्ज निभाता रहा, सभी के साथ रहकर फर्ज निभाता रहा, अंतर्मन के साथ रहकर खो जाता, मैं और मेरा अंतर्मन, यही था सर।
0: वाह, क्या बात है, शुरुआत अंतर्मन से लिखी है आपने
1: जी।
0: और मुझे लगता है कि कोई हो ना हो, यह अंतर्मन एक ऐसा मित्र होता है जो जिंदगी में सारे मजे देता है, सोचने पर मजबूर करता है, और जो कुछ भी बदलाव आता है हमारी जिंदगी में उसके लिए जिम्मेदार यही होता है, हमारा अंतर्मन
1: जी। बिल्कुल,
0: बहुत प्यारी बात लिखी आपने, बहुत प्यारा लिखा सर। जैसे सभी के लिए कोई ना कोई उनके फेवरेट सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं, कवि भी होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए कौन, आप वैसे तो आप सबको पढ़ते हैं लेकिन फिर भी एक दो लोग लगता है कि हाँ आपके लिए बहुत ऊंची लिस्ट पे।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी
0: जी।
1: जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे पिताजी हमारे के यहाँ महादेव वर्मा की यामा ले आए थे, ओरिजिनल, काफी मोटी थी
0: जी।
1: और पहले मैं उसे हल्के से पढ़ना शुरू किया, कुछ समझ में आता, कुछ नहीं आता था
0: जी जी जी,
1: लेकिन उनके भावों को पढ़ते पढ़ते भाव विभोर हो गए, और मेरे में प्रेरणा जगी कि महादेव वर्मा लिख सकती हैं। निशा को धो देता राकेश, इतना बहुत अच्छा लगता, तुम प्रिय फिर परिचय क्या, वास्तव में अगर तुम प्रिय हो नाम की आवश्यकता नहीं,
0: नहीं
1: परिचय ही बाकी, अगर मन में प्रिय आप। मेरे बहुत ज्यादा प्रभाव रहा महादेव वर्मा का।
0: मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पढ़ना होता है ये आपकी निजी जिंदगी के अंदर आ जाता है, पढ़ने से जो असर होता है
1: जी जी,
0: आपका दृष्टिकोण बदलता है
1: जी, बदलता है, और दुनिया को हम देख पाते हैं। जब हम अध्ययन करेंगे शब्द, जैसे शब्द मेरे पास आए, भाव तो मेरे अंदर हैं, और शब्दों का भंडार नहीं, आप कुछ नहीं लिख सकते, आपकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती,
0: हो ही नहीं सकती है।
1: मुझे आप कैसे समझा पाएंगे? शब्दों का भंडार होना आवश्यक है, जब तक समुद्र नहीं होगा शब्दों का भंडार नहीं होगा, और प्रवाह नहीं होगा, और प्रवाह तभी होगा जब शब्दों का भंडार आपके पास होगा।
0: तो ये जो आप कह रहे हैं, क्या यही तो बात नहीं जो हर कोई बोलता है, अरे मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है, या शायद समझाने वाला समझा ही नहीं पा रहा है? कहीं ना कहीं ये बात सही है,
1: तभी समझा पाएगा जब आप समझना नहीं चाहते हैं। मेरे पास भाषा का भंडार नहीं होगा, हम आपको सरल भाषा में नहीं समझा पाएंगे।
0: सही बात है,
1: हम आपको सरलता में ले जाएंगे, बच्चों वाले भाषा में ले जाएंगे। समझना सीखिए तो
0: बिल्कुल,
1: बाकी बड़ी चीज समझा लेंगे हम आपको। लेकिन आप बैठना ही नहीं चाहेंगे मेरे पास, मैं समझा आपको नहीं
0: तो नहीं कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात,
1: वो रुचि जगानी पड़ेगी।
0: सही बात है,
1: पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी। आज के दौर में क्या लोग पढ़ना नहीं पसंद करते, टीवी देखते, मोबाइल देखते हैं, लिखने की आदत नहीं है। और पढ़ेंगे तभी लिखेंगे।
0: बिल्कुल,
1: जब तक अध्ययन और चिंतन नहीं करेंगे। आपने क्या पढ़ा, आपने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, आपकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल,
1: वो होना चाहिए, पढ़ने की आदत बनाइए आप।
0: ये
1: और आप धीरे धीरे में जो क्रोधी होंगे, क्रूर होंगे, एकदम नॉर्मल हो जाएंगे आप। जो कभी आपसे दूर भागते थे, आपके करीब हो जाएंगे।
0: सच्ची बात है,
1: आप कहीं जाएं, आपकी अच्छी पहचान बने। मैं आपके यहाँ आया हूँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं पहचान छोड़ के नहीं गया, मेरा आना सार्थक नहीं रहा।
0: बिल्कुल सही बात है, सही कहा।
1: हम आपके बीच में रहें तो आप अपनी पहचान बना के जाएं, छोड़ के जाएं। उसके लिए अध्ययन, चिंतन और भाषा भंडार होना चाहिए, अभिव्यक्ति बढ़िया होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर, कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में कि जैसे होता है ना कि कहीं आप मझधार में फंसे हुए हैं, कोई ऐसा प्रश्न है आपकी जिंदगी का जो आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपने कभी कोई कविता पढ़ी हो, कोई कहानी, और थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल गया हो और आप बड़ा चेहरे पे स्माइल आ गई हो, अरे मैं बिला वजह परेशान था। मेरे साथ भी कई बार हुआ ऐसा, शायद हरिवंश राय बच्चन साहब की कोई कविता ही हो सकती है।
1: जी जी जी, इनकी हर मधुशाला ही थी।
0: मधुशाला, बिल्कुल सही बात है।
1: इन्होंने शराबी पे जरूर लिखा, लेकिन दृष्टिकोण अलग था उसका।
0: बिल्कुल अलग था।
1: नजरिया मेरा कैसा इस पर डिपेंड करता है, हम आपको किस नजर से देखते हैं। ये मेरे नजरों पे है, हम बदल नहीं सकते आपको। हम अच्छा देखेंगे, आप में अच्छा ही नजर आएगी, बुरा देखेंगे बुरा ही नजर आएगी।
0: सच है,
1: नजरिया बदले हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है 89.6 में जो मेरे मुझे पहली बार यह अवसर प्रदान किया गया।
0: सर ये
1: मैं काफी खुश हूँ।
0: ये मुझे लगता है ये 89.6 FM का सौभाग्य है कि गोंडा की एक ऐसी हस्ती जो फिलहाल गोरखपुर में है और आप लोगों के अंदर अलख जगा रहे हैं किताबों को पढ़ने की, और आप यहाँ आए हैं इस मंच पर, हम खुद ही ये बहुत अभिभूत हैं आपसे मिल करके। सर बच्चों में आदतें शुरुआत से डाली जाती है, क्योंकि इस वक्त ऐसे कई लोग हैं जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स उनके छोटे बच्चे हैं और इस वक्त वो आपको सुन रहे हैं। बच्चों में किस तरह से किताबों की आदत डाली जाए और कैसे उनके अंदर इंटरेस्ट जगा जाए और बच्चों को भी लगे कि हाँ हमारे माता पिता भी इससे जुड़े हुए हैं।
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, और वर्णमाला के कैलेंडर टांगिए, फिल्मी कैलेंडर मत लगाइए, बच्चों किताबें रखिए, सोते उठते जागते बैठते बंद नजर उनकी जरूर पड़ जाएगी। वर्णमाला की, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे अंग्रेजी की हो, चाहे हिंदी की हो, उठेंगे तो उनको दिखेगा ये क्या लिखा है। और अगर आपने फिल्मी तस्वीर टांग दी है, किताबें आपने नावल रख दिए हैं, और टीवी पे आपने दूसरा लगा दिया, दूरदर्शन नहीं लगाया आपने, प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। हमने बच्चों को देखा है वर्णमाला की कैलेंडर टंगा हुआ और बच्चे पूछते हैं मम्मी चाहे पापा ये बताओ क्या लिखा है,
0: क्या लिखा है।
1: उठते जगते सोते उनके जब भी उठेंगे दिखेगा, वो अपने आप रुचि हो जाएगी।
0: बहुत अच्छी बात। लेकिन मुझे लगता है जैसे एक आपने लाइब्रेरियन का काम बताया कि पाठक की रुचि बढ़ाता है, मुझे लगता है बच्चे के लिए माता पिता वो काम कर सकते हैं कि बेटा जो तुमने पढ़ा उसमें फला कैरेक्टर कैसा था, कैसा लगा तुम्हें।
1: जब बच्चे पढ़ेंगे और माता पिता पूछेंगे उनसे, उसमें एक सरलता आप में होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। बच्चे हैं, तन थोड़ा करेंगे ही, या आपके विवेक पर और सोच पे है कि आप किस ढंग से उसे प्रश्न पूछते हैं। नहीं बता पा रहे तो अगला दे दो पढ़ने के लिए, अगले में फिर प्रयास करिए आप। और जाहिर सी बात है आज नहीं कल आपका बच्चा बहुत आगे होगा।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: और कल वही माता पिता को लोग बताएंगे मुझे आप ही जैसा बच्चा चाहिए जो टैलेंटेड हो। किसके माता पिता हो आप, आपके माता पिता हैं कौन,
0: है कौन। सही बात है,
1: बच्चों के साथ माता पिता का भी जुड़ा रहता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। बेसिक बच्चे जो भी 2-3 साल के होते हैं, आप कैलेंडर लगाइए घर में, ज्ञान किताबें रखिए, मोबाइल दूर रखिए। आप स्वयं मोबाइल चलाएंगे, बच्चे मोबाइल निश्चित चलाएंगे। हमने देखा आज के बच्चों को मोबाइल पकड़ ज्यादा पसंद करते हैं वो। माताएं क्या करती हैं, मोबाइल बच्चों दे देती ताकि चुप रहे वो।
0: बिल्कुल,
1: उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं है,
0: उसके कई दुष्परिणाम सामने आया करते हैं।
1: आंखों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है,
0: आंखों पर
1: हमने देखा है उसको।
0: बिल्कुल,
1: आंखें अगर खराब होने उसके पीछे कारण भी है, हम भी दोषी ऐसा नहीं है। हम अपने को बचा ले जाएं, बच्चे अपने आप बच जाएंगे।
0: बच जाएंगे, कितनी प्यारी बात आपने कही कि हम अपने को बचा ले जाएं तो बच्चे खुद ब खुद।
1: और बच्चों के लिए त्याग करना पड़ता है प्रत्येक माता पिता, जो माता पिता बच्चों के लिए त्याग करते हैं निश्चित बच्चे आगे निकलते हैं।
0: बिल्कुल सर, थोड़ा सा प्रश्न अलग है, लेकिन चूंकि आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतने लोगों को जानते हैं, आज की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिशन का दौर हम बताते हैं, और बच्चों में सुसाइडल थॉट, आत्महत्या करने के विचार, किसी ने कुछ कह दिया जल्दी बर्दाश्त नहीं हो पाता है, ये सारी चीजें बहुत देखी जा रही
1: है। जी जी जी बिल्कुल,
0: स्पेशली अगर बच्चा 14 से 15 साल का लड़का लड़की कोई भी है और इस वक्त उनके माता पिता आपको सुन रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे, थोड़ा सा पेरेंटिंग की बातें, जिससे कि वो ऐसा मैंने कई माँ बाप से मिला, वो ये सीधे कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हाथ में है ही नहीं, बिगड़ गया। तो बिगड़ गया एक अलग बात है, आप कैसे डील कर रहे हैं, या अभी भी अब कैसे आप उसको अपने साथ रख करके सही कर सकते हैं, इस विषय पे हम थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहेंगे।
1: जैसे अभी हमने पहले आपको बताया है कि प्रारंभिक अवस्था में गार्जियन जागरूक अगर है, अगर हम सुविधाओं का उपयोग करेंगे, बच्चे भी सुविधाओं का उपयोग करेंगे और शिक्षा से कट जाएंगे। और जब तक बच्चों से सरलता नहीं होगी आपकी, ऐसा नहीं सुबह हम निकले शाम को आ रहे हैं और पहुंचे और बच्चे डांटना शुरू कर दिए, पढ़ नहीं सकता वो। रुचि देना फैलाना आपका काम है, माता पिता काम है, माँ का काम, माँ का दायित्व बनता है। और आधुनिक जमाने में क्या हो रहा है कि लड़का आर्ट पढ़ना चाहता है, माता पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, साइंस पढ़े,
0: बस ये बड़ी प्रॉब्लम है।
1: आपने बाहर कंपटीशन ले भेज दिया, पड़ोसी का लड़का डॉक्टर हो गया, मैं भी डॉक्टर हो जाऊं, लेकिन आपके लड़के कॉमर्स में लगा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की, आपने उसको उसमें लगा दिया, वही बच्चे आत्महत्या करते हैं, वही डिप्रेशन में जाते हैं। मैं आपसे बता दूं, मेडिकल में जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, आए दिन डिप्रेशन के स्टूडेंट आते हैं मेरे पास यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है
0: जी
1: कैंपस में, हैं विचलित रहते हैं। हाई सेंटर बाद आप उनको देखें कि वो पढ़ाई से कट जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं, उससे क्या मतलब रह गया। बच्चे जिस रुचि में जाते हों, लेकिन सार्थक रुचि होना चाहिए, दिशा निर्देश देने का माता पिता का है। सबके माता पिता पढ़े नहीं होते हैं, एक सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर हम गलत रास्ता पकड़ेंगे, बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेंगे। हमने सुना है बच्चों को भी माता पिता बोलते हुए, ये परवरिश जब बचपन से आप नियंत्रण में रखेंगे, अनुशासित, जब तक खुद अनुशासित नहीं होंगे बच्चे अनुशासित नहीं रह सकते,
0: नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है,
1: और आधुनिक जमाने में आर्थिक परेशानी सबके पास है, निवारण करना मेरा काम है, लेकिन आय से अधिक खर्चे आप बढ़ा देंगे, अपनी आवश्यकताएं सीमित रहेंगी, बच्चे अपने आप सीमित रहेंगे।
0: सर बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि जिस तरह से अगर माँ बाप खुद एक रोल मॉडल होते हैं तो वो जैसा करते हैं वैसा आसपास
1: का बच्चे 18 घंटा माता पिता साथ रहते हैं,
0: बिल्कुल
1: माँ के साथ रहते हैं, पिता तो रोजी रोटी की तलाश में घूम रहा है,
0: सही
1: माँ का दायित्व ज्यादा बनता है बच्चों के साथ।
0: सही बात है,
1: बेसिक ज्ञान माँ ही देती है बच्चों को, पढ़ने ना पढ़ने से कोई मतलब उसका नहीं होता।
0: बिल्कुल सही बात है सर, आप एक बार वापस से लौटते हैं और अवध से निकले आप
1: जी,
0: गए भोजपुरी में
1: जी,
0: कितना भोजपुरी ने आपको एक्सेप्ट किया?
1: अब प्रारंभ में तो मैं अवधि बोलता था
0: जी,
1: और क्योंकि बचपन मेरा यहीं बीता, गोंडा में ही बीता, लंबाई पूरी पढ़ाई मेरी यहीं बीती
0: जी,
1: और जब मैं गोरखपुर गया, पूर्वांचल में गया, तो सीखना पड़ा मुझे। लेकिन जब अपने माता पिता भाई बहनों बीच में होते थे तो हमको लग रहा है करीब हम 20 साल अवधि ही बोलने आपस में, हम लोगों से भोजपुर निकलती ही नहीं थी। इस माटी से मेरा पुराना लगाव रहा है और हमेशा बना रहेगा।
0: क्या बात है, तो सर कोई कविता लिखी आपने अवधि में?
1: जी नहीं लिखी।
0: अच्छा, लेकिन कोई बचपन को समर्पित कोई कविता जिसमें बचपना झलकता हो, क्योंकि बचपना आपका यही गुजरा, तो शायद एक कविता में हमें मिल जाए।
1: जी बिल्कुल, एक छोटी रचना, बदलते रहे वक्त के साथ जमाने के रंग,
0: बदलते रहे वक्त के साथ जमाने के रंग,
1: लोग बदलते रहे और बदल गई दुनिया।
0: वाह क्या बात है,
1: नजरें उठाकर भी नजरें झुका लिया, समय से पहले बदल गई ये दुनिया।
0: समय से पहले बदल गई दुनिया,
1: हम उनके फिक्र में वो बेफिक्र होते रहे।
0: क्या बात है,
1: हम उनके फिक्र में वो बेफिक्र होते रहे, तमाशा बनाकर निकल गई ये दुनिया। मासूम कमजोर दिलों को अब समझाया कैसे, टूटे मन में रुलाकर चली गई दुनिया।
0: सच है, मतलब मुझे लगता है जिंदगी के लगभग सारे पहलुओं को आपने छुआ है, जहां जैसा महसूस किया उसको कविताओं में उतारा आपने।
1: जी, प्रयास मेरा यही था। एक दो लाइन और
0: जी,
1: मेरे बचपन की कहानी पूछने लगे, क्योंकि मेरा तो गोंडा आवाज में बीता है
0: जी
1: बचपन मेरा। मेरे बचपन की कहानी पूछने लगे, टूटे दिलों के गुजरी कहानी पूछने लगे, मेरी लेखनी को रद्दी कागज समझ बैठे, मेरी लेखनी को रद्दी कागज समझ बैठे, मेरे पिछले जीवन की जवानी पूछने लगे।
0: वाह,
1: लोगों ने बुझा दिया मेरे घर का चिराग,
0: लोगों ने बुझा दिया
1: मेरे घर के चिराग, पास पास पास बैठकर मस्करी की जवानी पूछने लगे। कितने ठोकर खाकर गिरे हैं सरे राह में, बिखरे सपनों को सहजने की कहानी पूछने लगे।
0: क्या बात है, मतलब ये तो वही वाली बात है कि सीधे इंसान आज आपका देखता है, लेकिन कैसे आप पहुंचे ये नहीं देखता है।
1: फूल खिल गए उसके पीछे, माली ने कितना सेवा किया,
0: सेवा ये किया है। ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है।
1: खिले फूल दिखते हैं आदमी को,
0: सच में
1: गुजरा बचपन नहीं दिखता किसी का। पैर में चप्पल ठीक नहीं थे, कलम ठीक नहीं थी।
0: सही बात है,
1: अगर मैं यहाँ तक पहुंचा उसके पीछे मेरा संघर्ष रहा है।
0: बेशक बेशक, बहुत बड़ी बात आपने कही कि बिना संघर्ष के यहाँ तक पहुंचे नहीं है। और ये बेईमानी होती है कि हम सीधे किसी को उसके टॉप पे ही देखते हैं, कैसे गया ये समझना जरूरी है। और मुझे लगता है ये दिखाने का काम किताबें ज्यादा अच्छा करती हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: कहीं ना कहीं आपने जो कहा ना, बहुत बड़ी, मुझे लगता है ये टीनेज नहीं सर, ये हर आदमी की परेशानी है, चाहे जिस एज ग्रुप का हो। जैसे अकेलापन आज सभी को लग रहा है, जबकि इतने सारे रिसोर्सेज हैं, चीजें आसान हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि चाहे जिस एज ग्रुप का हो, चाहे जिस प्रोफेशन का हो, गृहिणी हो, काम करने वाला, किताबें पढ़ने से अंदर का जो इंसान है वो जिंदा हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, बाहरी आवरण नहीं घेरते आपको। किताबें स्वयं सुखान सुखा है, वो सुख देती है।
0: बिल्कुल,
1: भौतिकता नहीं दिखेगी, चमक दमक नहीं दिखेगा,
0: नहीं दिखेगी।
1: और चमक दमक हमेशा परेशान करते हैं लोगों को।
0: बिल्कुल सही,
1: जब भौतिकवादी युग आप होंगे, भौतिकता की तरफ रहेंगे, निश्चित आप परेशान रहेंगे।
0: बेशक सही बात है।
1: सामान्य जीवन जीना सीखेंगे, विचार आपके ऊंचे हो, सोच आपकी ऊंची हो, आज नहीं कल आप निरंतर हमेशा ऊपर पहुंचेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने कि निरंतर आप ऊंचे पहुंचेंगे।
1: सोच आपकी ऊंची,
0: सोच ऊंची होनी चाहिए। बहुत प्यारी बात कही। और मुझे लगता है सर, जो एक शब्द है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। लोग कहते हैं कि बाहर निकलो, ये करो, ठीक है, सारी चीजों से आता है, पर मुझे लगता है किताबें जो कॉन्फिडेंस देती है वो किसी चीज से नहीं आता। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि किताबें आपको ही जानने का जरिया बनती है।
1: जी बिल्कुल,
0: आप किताबों को पढ़ के दूसरों को नहीं जानते हैं, आप अपने अंदर उन चीजों को पाते हैं जो थी तो, लेकिन उससे आप अनभिज्ञ थे, अनजान थे।
1: जी बिल्कुल,
0: वो आपको मिलता है। सी, बहुत प्यारी बात आपने कही, और मुझे लगता है कि शायद अब लगभग हमारी बातचीत पूरा होने का समय भी आ चला है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपसे पूछूं कि हमारे डॉक्टर भारतेंद्र सिंह साहब के जीवन के अगर मैं मूल्य पूछूं कि क्या है, तो आखिर किन किन शब्दों में बताना चाहेंगे, किन मूल्यों को लेकर वो आज तक चलते चले आए।
1: मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहा कि लोगों को कुछ दे सकूं। आज जीवन है, कल नहीं रहेगा, किताबें रहेंगी, ज्ञान रहेंगी लोगों। अगर पूरे जीवन 10 लोगों को हमने आगे बढ़ा दिया तो मैं सार्थक हो जाऊंगा।
0: वाह,
1: पैसा कमाना सारे लोग कमा लेते हैं, इस भौतिक युग में पैसा कमाते हैं, आप चले जाते हैं, पता भी नहीं चल पाता।
0: सही बात है,
1: हम जाए तो कुछ दे के जाए समाज को, लोगों को कुछ दे के जाए, हम रहे ना रहे मेरी यादें बरकरार रहे।
0: हम रहे ना रहे मेरी यादें बरकरार रहे, क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। और मुझे लगता है इसमें ऊपर वाला आपका साथ भी दे रहा है, क्योंकि लगातार आप युवाओं से बातचीत करते हैं, न जाने कितने लोगों को प्रेरित करते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: और मुझे लगता है आपके बताने से कईयों के जीवन में बदलाव आया होगा, लोग किताबों से जुड़े।
1: जी बिल्कुल,
0: तो
1: मैं सलाह देता हूँ, उनको बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो बोल नहीं पाते, हमने बोला मुझसे सीखो आप।
0: जी,
1: हम कह रहे हैं आप बोलो, कुछ तो बोलो, आज 4 शब्द बोलेंगे सही, कल 10 बोलेंगे, 4 दिन बाद बराबर की वार्ता करेंगे, किस टॉपिक पर बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं कभी,
0: घटता नहीं है।
1: और जब ज्ञान संचित और स्थिर कर देंगे ना तो घट जाएगा, वो उसका कोई उपयोग नहीं है, सार्थक होना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बहुत प्यारी बात कही कि ज्ञान हमेशा सार्थक होना चाहिए। सर अब जाने से पहले बस अंतिम सवाल ये है, अंतिम सवाल नहीं कहेंगे बल्कि आपसे कहेंगे कि ऐसी कुछ बातें बताइए जो इस वक्त सुन रहे हैं और वो लिखने में बड़े ही दिलचस्पी ले रहे हैं हमारे कुछ युवा जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या बातें बताना चाहेंगे?
1: मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा उन लोगों को कि पहले आप पढ़ें और गोल्ड तैयार करें, सोना तैयार करें, भूसा ना तैयार करें, अनाज ना तैयार करिए। और जब तक पढ़ेंगे नहीं आप, शब्दों में भाव नहीं आएंगे, भाव सब लोग उसकी अभिव्यक्ति कर सकें, पढ़ के समझ सकें, और उसको एक बार नहीं कई कई बार लोग पढ़ें, और जब पढ़ के उनकी तृप्ति ना हो तो आपसे मिलने के लिए उतारू हो जाएं कि आपने कैसे लिखा, कैसे जरा उस आदमी से मुलाकात कर लूं जो इतना बढ़िया लिख सकता हो, कैसा होगा,
0: वाह,
1: जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा,
0: सुंदर होगा। कितनी प्यारी बात कही आपने, सच में बहुत बहुत सही बात कही आपने, बहुत प्रैक्टिकल बात है। और अगर कोई लिखना चाहता है तो उससे पहले सबसे पहला कदम पढ़ना ही होता है कि जितना आप पढ़ोगे उसके बाद आप लिखना, शायद वो सेंस आ जाता है लिखने का समझते समझते। ये बात
1: मैं ये चाहूंगा कि जितने लोग भी सुन रहे हैं, लिखें तो बढ़िया लिखें वरना मत लिखें।
0: सही बात है,
1: रद्दी कागज ना बनाएं। स्वांता सुखा का मतलब नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: समाज को अगर कुछ दे सके ये उपलब्धि ना देखें वो डॉक्टर है, वो इसमें है उसमें है और मैं भी वहां पर, नहीं ऐसा नहीं। अपनी काबिलियत पे अगर आगे बढ़ेंगे तो आजीवन आप आगे रहेंगे, कभी पीछे हो ही नहीं सकते,
0: हो ही नहीं सकते।
1: कभी वैसाखी का इस्तेमाल मत करिए, सेल्फ में संघर्ष जरूर है लेकिन उसमें उपलब्धि भी है।
0: बिल्कुल सही बात है। वो उपलब्धि अगर जाहिर है पाना है आपको तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना,
1: बिल्कुल संघर्ष करना पड़ेगा,
0: संघर्ष करना पड़ेगा और इसका कोई ऑप्शन नहीं होता, और मजा भी इसी का है जिंदगी में सच कहा जाए तो।
1: अंतिम मेरा यह है कि आप धीरे लिखें, सही लिखें। आप बच्चों को परिवार को ही अगर सुधार दिया आपने, बड़ी उपलब्धि है। किताबों में ना उलझें,
0: परिवार से शुरुआत करें
1: और अगले को ना देखें, अगले ने 10 पेज 10 किताबें निकाल दी मैं भी निकाल दूं, कौन पढ़ रहा है आज के जमाने में? लोगों को लोग पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ना बंद कर दिया।
0: वाह
1: आज नजरिया बदल गया है।
0: परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: फर्स्ट इंप्रेशन है आज के दौर में, वो होना चाहिए।
0: सच है, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि देखिए आप एक शख्स नहीं है बल्कि आप खुद में अपने आप में एक लाइब्रेरी हैं क्योंकि आप लाइब्रेरी में रहते रहते आपने इतनी किताबों को अपने अंदर की शेल्फ में रख दिया है कि हर किताब का थोड़ा थोड़ा भी अगर ज्ञान है तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छी अलख जगा रहे हैं आप आम जन में, साहित्य को जिंदा कर रहे हैं, इस समाज को आप जिंदा कर रहे हैं, या यूं कहें तो इस देश को आप जिंदा कर रहे हैं। और सारी लड़ाइयाँ बॉर्डर पर रहकर नहीं की जाती है, बस अपने जो कार्य है उसका अगर पूरी निष्ठा से किया जाए वो भी अपने आप एक देशभक्ति है।
1: बिल्कुल,
0: और ये काम आप बखूबी कर रहे हैं और मुझे इस बात पे बड़ा गर्व है कि आप गोंडा के ही रहने वाले हैं।
1: यहाँ की माटी, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा मेरे मन से कभी नहीं जा सकता। जब मैं कभी गोंडा आता हूँ मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है लोगों के बीच में आना पसंद करते हैं।
0: सही बात है,
1: जो मुझे गोंडा से मिला गोरखपुर में नहीं मिला।
0: बिल्कुल सही,
1: वहां मैं नौकरी करता हूँ, मिला तो मुझे यहीं से,
0: यादें तो यहीं की,
1: यादें यहीं की लोगों के बीच में यहीं रहा
0: जी।
1: और जहां बचपन बीतता वहां की यादें कोई भूलती नहीं,
0: नहीं भूलती है, सच है।
1: मैं टॉमसन विद्यार्थी रहा, लाल बहादुर शास्त्री का स्टूडेंट रहा मैं।
0: बहुत बहुत प्यारी यादें हैं और बहुत प्यारी बातें आज आपने बताई, और मैं एक बार वापस से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि गोरखपुर से इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला आपने और आप गोंडा आए, आपने अपने बारे में बात करते करते यहाँ की माटी के बारे में जो आपकी यादें हैं, जो आपका डेडिकेशन है वो बताया आपने, और साहित्य को लेकर के जो कार्य आप कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मेरे तरफ से बहुत सारी दुआएं सर आपको कि जो भी आपने सोचा है वो आपको ज़रूर हासिल हो। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं 10 लोगों की ज़िंदगी बदल दूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो दिन आपको महसूस हो कि हाँ आपने सच में जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा कर लिया है।
1: अंतिम में यही बोलूंगा, ज्ञानस्थली 89.6 में जब भी मुझे याद किया जाएगा मैं हाजिर रहूंगा।
0: अरे बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल
1: मैं यहाँ के माटी से जुड़ा हूँ
0: बेशक बेशक सर, हम बिल्कुल आपको याद करेंगे और हम बुलाएंगे, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं गोंडावासी, उनको अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी चीज जाननी है, तो आपके जरिए वो
1: जी पूछ सकते हैं,
0: पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आज का कैसा लगा ये शो आप चैट बॉक्स पे आकर के हमको बता सकते हैं। और आज हम वापस से बता दें आपको, डॉक्टर भारतेंद्र सिंह सर हमारे साथ मौजूद रहे हैं इस पूरी बातचीत में, जो कि हमने आपको बताया कि पुस्तकालय अध्यक्ष हैं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम गोरखपुर से। थैंक यू सो मच, और सर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद,
0: थैंक यू। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी।

0: कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9281-976-9860-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8072-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
8: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
10: गोंडा शहर की धड़कन।
11: अरे सुना
12: क्या?
11: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
12: वाओ!
11: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर
7: नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
12: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
13: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
14: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
15: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
16: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
17: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
18: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
17: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
18: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
17: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरन नाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन। किसी

पर ये हर दिन मुलाकात करने का बहाना बना के बारिश रोज क्यों आ जा रही है यार? अभी नहीं चाहिए बारिश, और मतलब ना तो हमारा मौसम ही इतना हम लोग को मतलब परमिशन दे रहा है यार कि बारिश एंजॉय करो, और ना ही हमारे आसपास का जो कहते हैं ना जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट। तो आसपास हमारे जो खेती बाड़ी है, हम लोग पता है ना कि ऐसे राज्य से हैं, गोंडा शहर वाले यूपी वाले हैं, एंड यस यूपी वालों को अभी के समय मतलब टू द करंट टाइम की बात करूं तो अभी जो है धान यानी कि चावल की फसल जो है ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, फूल आने लगे हैं, और इस समय बारिश जो है वो पूरी तरह से फसल को जो है ना एकदम स्पॉइल करके रख देगी। तो आप खुद सोचिए कि मतलब अभी बारिश की नहीं ज़रूरत है, फिर भी बारिश हो रही है। फिलहाल के लिए बारिश को एक्सेप्ट करते हुए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और हमारे सारे लिसनर्स का स्वागत है। सबलू जी ने परसों के लिए कहा था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ जा रहे हैं इंतज़ार है अभी आपका। फिलहाल सभी का स्वागत है, आज है अंताक्षरी वाला दिन, तो अंताक्षरी वाली शाम में आप सभी का स्वागत करते हुए। हाँ भाई, कल की कहानी बड़ी मस्त सी थी, क्योंकि कल हमने बात की थी, हाँ कल हमने बात की थी इतिहास से एक प्यारी सी कहानी के बारे में। लेकिन यार आजकल मैं थोड़ा सा इधर जो हो रही नई नई नई नई नई कॉन्ट्रोवर्सीज की बात कर रही हूँ कि भाई देखो, ये बात तो बिल्कुल तय है कि हमारे आसपास चीज़ें 100% ट्रूथफुल नहीं हैं जिस पे आप भरोसा कर सकें, और कॉन्ट्रोवर्सीज, और कभी कभी हमें लगता है कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सच और झूठ के बीच में। तो मैं ऐसे में आपको ये बोलूँगी, आप किसी भी तरह की कोई विचार मन में ना लाएं, कुछ भी ना सोचें, सीधे स्ट्रेट होके और सीधे मतलब कहते हैं ना कि इंतज़ार करें चीज़ों के स्टेबल होने का। बहुत सारी चीज़ें पूरे देश भर में चल रही हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। अब मैं नाम लेने लगूँगी तो पूरा टाइम मेरा उसमें निकल जाएगा। गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं? स्वागत है आपका। आपके शहर में भी बारिश हुई है क्या? गोंडा शहर में तो अच्छी खासी बारिश हुई है, और अभी मौसम बना हुआ है बारिश का ही। गुड इवनिंग सविता जी, कैसी हैं? सविता जी, काफ़ी दिन हो गया आपसे बात नहीं हुई, और मुझे लगता है लास्ट वीक आपसे बात हुई थी, इस वीक पूरे बात नहीं हुई आपसे। और क्या हाल है कमल? गुड इवनिंग, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है इस प्यारी सी शाम में। आप सभी को देख के ना मतलब एनर्जी अलग लेवल की आ जाती है। लेकिन सच्ची बताऊँ ना, आज मैं एक शॉल लेके निकली हूँ घर से, क्योंकि मुझे अच्छी खासी ठंड लग रही है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? एनीवे, आज चलिए और बातें करते हैं। मौका कभी मिलता है इत्मीनान से ऐसे बातें करने का, एक दूसरे को सुनने का, मंडे को मिलता है या फिर वेंसडे को मिलता है। वेंसडे को थोड़ी सी मतलब कॉम्पिटिशन की भी भावना होती है, पर क्या करें, इस कॉम्पिटिशन में तो छिपा है आप सभी का प्यार, आप सभी की नोक झोंक। एंड यस, जब आप लोग ये कहते हैं कि मैम आप पार्शलिटी कर रही हैं, आप लड़कों का साथ दे रही हैं, या फिर लड़के कहते हैं आप लड़कियों की साइड हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उस समय डिसाइड नहीं कर पाती कि मैं किसी का साथ दे भी रही हूँ या नहीं। इनफैक्ट मैं तो सभी का साथ दे रही होती हूँ, और मैं इंतज़ार करती हूँ कि हाँ किसी टीम से कोई आ जाए, और मैं एक भी कॉल उस समय मिस नहीं करती जब किसी भी टीम का अगर बात करूँ कि किसी तरह का कोई पॉइंट लूज हो रहा हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, देखते देखते ये जो कहते हैं ना कि पितृपक्ष या श्राद्ध का समय ये भी निकल गया है, दो दिन महज और बचे हैं इसमें, इस पाख को, इस पक्ष को पूरे होने में, फिर इसके बाद शुरू हो जाएगी शरद नवरात्रि। और फिर विजयदशमी, रामलीला का आयोजन जगह जगह हो रहा होगा मुझे पता है, और स्पेशली हमारे शहर से सटे अयोध्या शहर में रामलीला का बहुत भव्य आयोजन होता है। तो मतलब आज का दिन काफ़ी स्पेशल है, और अक्टूबर की बात करूँ तो अक्टूबर हमेशा से खास महीना रहा है। चाहे सीज़न की बात करो, अक्टूबर में इतनी अच्छी चीज़ें होती, इतनी अच्छी चीज़ें होती है ना कि आप सोचने लगो तो यार पूरा महीना ही अच्छा है। एक तो फेस्टिव वाइब्स इसमें रहती हैं, साथ में ये महीना बहुत जल्दी से बीत जाता है। इसमें वो कहते हैं ना कि रात रानी की खुशबू गलियों में सूंघने को मिलती है, साथ ही साथ पारिजात के फूल भी इसी मौसम में देखने को मिलते हैं। और

0: बताइए,
1: क्या इस महीने से जुड़ी को आपके मन में भी कोई याद है, कोई मेमोरी है तो जरूर बताइए। वैसे मेरे मन में तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं आप सभी बड़े हो गए, बट स्कूल टाइम की मेमोरीज हमेशा से हम लोग के मन में रहती है। तो कुछ ऐसी ही एक मेमोरी मेरे दिमाग में भी है। वो मेमोरी थोड़ी इसलिए खास भी है क्योंकि स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, जैसे कि जब स्कूल जाते थे तो अक्टूबर का महीना शुरू होता था तो 10 दिन की छुट्टियाँ मिलती थी, और ये छुट्टियाँ बड़ी खास होती थी क्योंकि इसमें होमवर्क बहुत कम मिलता था। और आप लोग कहेंगे कौन से स्कूल में आप पढ़ते थे? जी, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी और वहाँ पे 3 ब्रेक मिलते थे, एक समर ब्रेक, एक विंटर ब्रेक और इसको ऑटम ब्रेक बोलते थे, या कह सकते थे दशहरा ब्रेक। तो पूरे 10 दिन की छुट्टी होती थी और 10 दिन हम लोग खूब धूम धड़ाके करते थे क्योंकि होमवर्क बहुत ना के बराबर मिलता था, क्योंकि हाफ ईयरली दे के हम लोग फिर फ्री होते थे तो बहुत होमवर्क देने का कोई चांस नहीं होता था टीचर्स के पास। हाँ बिल्कुल, सविता जी आज बात करेंगे। धर्मेश कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। तो बहुत सारे लिसनर्स हमारे चैट रूम में जुड़ते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो सभी को आरजे वीना की तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और फिलहाल मैंने किसका नाम नहीं, मैंने तो सभी का नाम लिया, अनूप जी का नाम ले लिया, कमल नैन का नाम ले लिया। फिलहाल उम्मीद करूँगी कि आप सब में सबका नाम ले लूँ। और एक हमारे लिसनर हैं जो अपने बारे में लिख रहे हैं, फिलहाल आपका नाम जानना चाहती हूँ। राजा सिंह नाम है, राजा सिंह, राजा सिंह हमारे साथ सुन रहे हैं और ये भी मैसेज कर रहे हैं काफ़ी देर से। स्वागत है राजा आपका भी। तो अभी आपका नाम ले लिया है, ठीक है? तो अलग अलग जगह से चैट चल रही है, वेल स्वागत है सभी का। तो अंताक्षरी के लिए मुझे लगता है कि टीम से मेंबर्स रेडी हैं, पर एक गाने के साथ शुरुआत करते, एक पॉजिटिव सा गाना जो सबको ऊर्जा से भर देगा। हाँ, और मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी न्यूज़ और कॉन्ट्रोवर्सीज, बहुत ज़्यादा जब नेगेटिव न्यूज़ हो ना तो न्यूज़ सुनना बंद करिए, बढ़िया सा नॉवल उठाइए उसको पढ़ डालिए। और नॉवल नहीं है तो कोई भी ऐसी किताब उठा के पढ़ लीजिए, मतलब कुछ भी ऐसा उठाइए जिसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो, क्योंकि सच्ची बताऊँ आजकल मतलब इन्वायरमेंट इतनी नेगेटिव न्यूज़ से भरा हुआ है कि आपको सपने में भी नेगेटिव न्यूज़ ही दिखेंगी। तो आसपास की न्यूज़ को कुछ समय के लिए थोड़ा सा होल्ड पे डालिए एंड यू हैव टू मूव फॉर द पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि मैंने सुना है कि जैसे मैथ्स में होता है ना प्लस प्लस प्लस होता है, तो माइनस प्लस भी प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज देख के ऐसा नहीं कि पॉजिटिव हो जाएगा, जिंदगी में नेगेटिव वाइब्स आती है, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्ट्रोवर्सीज, र्यूमर्स, और कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। मैं तो भाई सच्ची बताऊँ आजकल तो टीवी या न्यूज, स्पेशली यूपी की न्यूज देखती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी ये मतलब फीलिंग आती है कि यार ये मीडिया क्या कर रही है और इंसान किस हद तक, मतलब कोई तो पार्टी झूठ बोल रही है, कोई सच बोल रही है, समझ ही नहीं आता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और ऐसे में इंसान को क्या हो जाना चाहिए, हा हा हा, दुनिया से दूर, शांति शांति शांति, यस, मतलब अपने ही विचारों में गुमन हो जाना चाहिए। गुड इवनिंग कबल, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? स्वागत है। तो सभी का स्वागत करते हुए चलिए बढ़िया सा प्यारा सा सेप्टेम्बर अक्टूबर वाला गाना सुनते हैं। एक फिल्म आई थी बीच में अक्टूबर, अगर आपने कभी देखी हो तो ज़रूर, नहीं देखी हो तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अक्टूबर फिल्म बड़ी अच्छी सी थी, मतलब अच्छी इसलिए कहूँगी कि उसमें अक्टूबर महीने की काफ़ी खासियत दिखाई जाती है। वैसे उस मूवी का जो एंड है वो काफ़ी दर्दनाक सा है, पर मूवी आप देख सकते हैं एक बार को, ठीक है? तो चलिए आगे बात करते हैं और एक प्यारी सी म्यूजिकल शुरुआत करते हैं। आई होप इस शुरुआत में आप सभी मेरा साथ देंगे, कोई कहीं नहीं।

0: जाएगा, am I right?
1: Yes.
0: चलिए और जो लोग बैठ के मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आरजे बीना ने कुछ रिलेटेबल बात कर दी है, तो फिर मैं आपके

एक सिंगर है गजेंद्र वर्मा, जो काफी अंडररेटेड से रहते हैं। तो मतलब लोग बहुत ज्यादा इनके गानों को नहीं सुनते, पर मैं इनके कुछ गाने आप लोग के सामने प्ले करूंगी। आप लोग सुन के बताइए कि आपको इनके गाने कैसे लगे। तीनों गाने टॉप टू टॉप हिट्स गाने हैं। आप सुन के बताइएगा कि आपकी शाम सुरीली हुई या नहीं।

अंडररेटेड से गाने सुन के कैसा लग रहा है आपको? हाँ, कौन है भाई? रेनबो अनबो भेज रहा है, आशु जी ने भेजे हैं, क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग, सुमन जी लिख रहे हैं, आप क्या बिना प्रिपरेशन के आई हैं अभी बोल रही हैं, कहानी सुनाते हैं फिर अब अंताक्षरी क्या करने हैं शो में, डिसाइड कर लें। दूसरी बात, दशहरा हॉलीडे से पहले काफ़ी हाफ ईयरली, कहीं कभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो नहीं होते, प्लीज़ बिना सर पैर की बातें ना करें, ब्लॉक करना है तो कर दीजिए। ओ माय गॉड, अच्छा ये अच्छा, सुमन जी अचानक से ऐसे दिखती हैं और फिर मतलब गायब हो जाती हैं, ओ माय गॉड रियली। शायद आपको नहीं पता कि अभी ऑलमोस्ट गोंडा शहर के 30-40% क्या मैं 50% स्कूल में कहूँ तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। एंड यू नो, मैं केंद्रीय विद्यालय की बात कर रही हूँ, वहाँ का एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे जो चीज़ें फिक्स हैं वो उसी टाइम पीरियड पे होती हैं। तो सुमन जी बिना सर पैर की बातें आपको क्या लग रही है मुझे नहीं पता, बट दैट्स वेरी ट्रू। और मैं कहानी की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि कल ही मैंने कहानी सुनाई थी और उस कहानी को सुनने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि वो बचपन से जुड़ी कहानी थी। क्योंकि हिस्ट्री हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक पढ़ी होगी और उन लोगों ने आगे पढ़ी होगी जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे की तैयारी की होगी, नो डाउट। बट मैं अगर बात करूँ तो हम सभी से ये कहानी जो है वो जुड़ी हुई थी, क्योंकि इतिहास की कहानी थी, इतिहास से हमने निकाली थी, एक बैकग्राउंड थी जिसमें एक राजा है वो एक किंगडम को हराता है, एक पूरे के पूरे साम्राज्य को हराता है और वहाँ की एक लड़की जो उनके ही राज्य में आके दासी बन के रहती है। तो आई थिंक मालविका की कहानी सुनने के बाद आपको अपना इतिहास तो डेफिनेटली याद आया होगा। तो थैंक यू सो मच सुमन जी, बहुत प्यारा सा आपने सजेशन दिया, आई लव योर सजेशन, थैंक्स फॉर योर सजेशन, लव यू। तो चलिए अंताक्षरी की बात होगी, आप पहली बार आई हैं इसीलिए ऐसी बातें कर रही होंगी मुझे लगता है, क्योंकि बाकी सारों को पता है कि आज अंताक्षरी है, आई नो डाउट। तो चलिए ये गाने की ये वाली लाइन गजेंद्र की आवाज़ में, कोई इसका कंपैरिजन नहीं, गजेंद्र के सारे गाने एक तरफ और ये लाइन एक तरफ, कहीं भी तू रहे कहीं भी मैं रहूं ये प्यार ऐसा ही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग रुक करते हैं अंताक्षरी की ओर और रूल्स आप सभी को पता है, टीम ए एंड बी, और आप सभी के साथ शुरू करते हैं आज की शाम की शुरुआत का। और आज जे के शाह गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सचिन गुड इवनिंग, कैसे हैं? आज हमारे यहाँ पर बहुत बारिश हुई, तो मतलब आपको मैं बता दूं कि शहर में मुझे लगता है कि 80% लोग ऐसे होंगे जो आसपास के मतलब 10 किलोमीटर के रेडियस में होंगे, बाकी जो लोग जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, जैसे गोरखपुर से हमारे अनिल जी हैं, आशु लखनऊ से सुन रही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तेलंगाना और शिमला से जगह जगह से सुन रहे हैं। बट मैं आप सभी को बता दूं हमारे शहर का मौसम जो है बड़ा सुहाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, हम लोग अच्छी अच्छी वाइब्स एंजॉय करेंगे, पर अभी थोड़ा सा रुख बदला लग रहा है। एनीवे, तो चलिए अंताक्षरी की शुरुआत करते हैं, लेकिन अंताक्षरी की शुरुआत आज होगी उससे पहले मैं एक गाना गाऊंगी, उसी गाने का जो लास्ट लेटर होगा वही आपको कैच करना है और जो सबसे पहले कॉल करेगा उसी से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि मैं किसी भी टीम को प्रायोरिटी देके मौका नहीं देती, तो जो टीम पहले कॉल करती है उसी को मतलब सबसे पहले गाना गाना होता है। एंड यस, आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड में किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि अभी बॉयज की टीम गा रही है देन गर्ल्स की गाएगी, देन बॉयज की गा रही है देन गर्ल्स की गाएगी, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपनी टर्न पे गाना है एंड नेक्स्ट दोबारा अगर आपकी टीम का मेंबर कॉल कर रहे हैं तो आप ही की टीम को पॉइंट मिलेगा, ठीक है? तो रूल्स बहुत क्लियर हैं, फर्स्ट राउंड में आपको लेटर्स मिलेंगे, लेटर्स मैं दूंगी आपको, और सेकेंड राउंड जो है वर्ड राउंड है जिसमें आपकी ऑपोजिट टीम आपको वर्ड्स देगी और आपको उसी को कैच करके गाना गाना है, ओके? आर यू श्योर? चलिए शुरू करते हैं। तो एक प्यारा सा गाना जो मतलब बहुत ही मेरे दिल के करीब है, तो वही मैं आप लोगों को सुनाती हूँ और उसी गाने के साथ हम इस अंताक्षरी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि म्यूज़िकल डे है तो शुरुआत गाने से ही होनी चाहिए। और मैं एक प्यारा सा गाना आप सभी को
डेडिकेट भी करूँगी, और इसी गाने की जो आखिरी लेटर होगा उसी लेटर से आपको प्यारा सा गाना गाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्जी भी ना ऐसा कौन सा गाना गाने वाली हैं जिसका लेटर हमें सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, सोचना क्यों पड़ेगा, मैं गाना कहीं भी बीच में रोक दूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू पॉज द सॉन्ग वेयर इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी पॉज, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनिए गाना कौन सा है, मैं जो कौन सा गाना आप लोग को सुनाने वाली हूँ। तो शुरुआत करती हूँ

जी तो ये है लेटर सबसे पहले आप लोगों के लिए, और देखते हैं कौन सबसे पहले कॉल करके अपनी टीम को कर देता है शुरुआत पॉइंट्स की। तो सबसे पहला कॉल आ चुका है, देखते हैं किसका कॉल है। हेलो,

0: हेलो, गुड इवनिंग अनूप जी। आज तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि टाइमिंग बहुत सही है आपकी। क्या
1: बैठा
0: बात
1: हुआ
0: है।
1: था एक्चुअली। मैं लास्ट ईयर लास्ट वेडनेसडे को दीदी के सास को मतलब कैंसर था, तो एक्सपायर गए, तो उन्हीं के मैं दाह संस्कार था। बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था, लेकिन मतलब मन अंदर से थोड़ा सा खेल था, तो मैं फोन नहीं कर पाया
0: नहीं
1: एक्चुअली।
0: नहीं वो सिचुएशन भी नहीं। तो चलिए जी से गाना सुना दीजिए।
1: जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका

0: हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा।
1: झा क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो अनूप जी ने गाना गा दिया है और झ लेटर छोड़ा है, एंड यस देखते हैं झ से गाना गाने के लिए टीम से कौन आ रहा है। हेलो
2: हेलो मैम,
1: गुड इवनिंग, कैसी हैं? आपका शुभ नाम जानने की आकांक्षा है, वैसे मैं जान गई हूँ, आप खुद बताएं तो जानूंगी। तो सविता जी कैसी हैं, स्वागत है आपका, और बारिश को एंजॉय किया आपने?
2: जी जी, बारिश जब हो रही थी तब मैं गोंडा में गई थी रेडियो
1: से
2: सही कराने, रेडियो
1: सही
2: करा के ले आई।
1: ओहो, तभी तो ये जो कहते हैं ना मुलाकात मुकम्मल हो पा रही है। तो सविता जी आपको गाना सुनाना है झ से।
2: झूम झूम झूम नाच मयूरी, छन छन नाच मयूरी, याद है।
1: कोई बात नहीं, आपने मतलब पॉइंट्स लेने के लिए जो गा दिया है इससे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, मयूरी रारा, थैंक यू। तो चलिए देखिए, अब ये समझिए कि आपकी टीम्स जो हैं बढ़िया खेल रही हैं, और मैं अगर बात करूँ लड़कों की या लड़कियों की टीम की तो कुछ चीज़ें मैं क्लियर भी कर दूँ। हाँ आशु जी, वो जो गाना था ना उसको मैंने जी पे ही रोका था, नहीं ना तेरे बिना लगदा जी, यहीं पे रोक दिया था मैंने कि मैं गाना जहाँ भी रोकूँगी वहीं से गाना आप लोग को गाना होगा। तो चलिए देखते हैं कौन आता है अभी। र से छोड़ के गई हैं सविता जी, और अभी देखते बारी किसकी है। हेलो,
3: मैं अनूप बोल रहा हूँ फिर से।
1: ओह अनूप जी, मतलब एकदम बैठे हैं चौकीदार बन के कि मैं एक भी विकेट गिरने नहीं दूंगा विकेट कीपिंग कर रहे हैं मुझे लग रहा है। रस गाना सुना दीजिए।
0: रुके सब के कदम, देखो रम पम पम, देखो ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: वाह क्या बात है, थैंक यू। हंसाया करो, अगेन र, थैंक यू। तो भाई ये क्या है, र पे र आ रहा है, अभी देखते हैं। हेलो
4: हेलो
1: हेलो हेलो, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
4: गीता श्रीवास्तव बोल रहे हैं। गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग गीता जी, कैसी हैं? आपको पहले तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, और र से वापस आपको गाना गाना है।
4: र से

0: और मैम ये कह रहे हैं आपने जीप पे रोका था जो गाना, तो अनूप जी ने जो गाना गाया वो अजी हमें मंजूर 20 से गाया, उस गाना शुरुआत है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें।
1: हाँ वो है, लेकिन मैंने जो मतलब अभी तक सुना है आप लोगों को पिछले कई हफ्तों से, तो कई बार ऐसा हुआ है कि आप लोग स्टेंजे से गाते हैं, तो मैं इसके पॉइंट्स ने
0: स्टेंजा से वो गाना गाते हैं मैम जिसमें
1: हाँ
0: आप शब्द देती हैं।
1: नहीं,
0: अच्छा
1: फर्स्ट राउंड में लास्ट टाइम बहुत लोगों ने गाया था,
0: तो
1: तो
0: हम नहीं
1: इसलिए,
0: रहे होंगे मैम
1: और
0: कोई
1: फर्स्ट
0: बहुत सॉरी
1: फर्स्ट
0: बात
1: राउंड
0: है।
1: में, नहीं, सुनिए, तो फर्स्ट राउंड में मैं किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं करती, कोई टाइमर नहीं रहता है, किसी भी तरह का कोई मतलब वो नहीं, लेकिन नेक्स्ट राउंड जो है उससे मतलब हम रूल्स लगाने लगते हैं कि हाँ भाई इस टीम को मौका मिलेगा, इस टीम को, अभी जैसे आपके बाद तुरंत कोई और फीमेल कॉल करेगी तो
0: नहीं
1: उसको
0: नहीं
1: पॉइंट।
0: ये नहीं कह रहे मैं, जैसे इसमें होता है कि गाने की शुरुआत वाला लिया जाएगा ना,
1: हाँ ये
0: ये
1: बात,
0: हम कह रहे हैं,
1: हाँ ये
0: ये
1: बात
0: कह रहे हैं,
1: तो पॉइंट
0: क्योंकि
1: की है,
0: वो
1: पर
0: गाना आपकी नजरों ने समझा
1: ये
0: आ
1: बात,
0: से शुरू
1: ये
0: है।
1: बात सही है, लेकिन उन्होंने
0: हाँ
1: जब
0: बस यही
1: बीच,
0: कह रहे
1: हाँ
0: हैं,
1: ठीक, थैंक यू।
0: वेलकम मैम। हेलो
1: तो चलिए अगले कॉलर को देते हैं मौका, और अब देखते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो,
0: मैम, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग, कैसी हैं, स्वागत है आपका, नाम जानने की आकांक्षा है।
0: बोल
1: आशु जी स्वागत है, वैसे तो मैं आवाज़ से पहचान गई थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं तो जानती हूँ, बाकी सबको कैसे पता चलेगा किसकी आवाज़ है। फिलहाल के लिए आशु जी आपको रसे ही गाना गा, नहीं इन्होंने कौन सा गाना गाया है हमारी, आपने गाना सुना गीता जी का?
0: गीता जी ने रुक जा मैम गलती
1: हाँ, रुक जा
0: रात
1: बीते
0: ठहर जाती
1: अरमानों का मेला, रुक जा चांद ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की बेला, लाल से जी।
0: लासे लो आ गई उनकी याद नहीं आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं
1: क्या बात है, और लड़कियों कैसी के साथ 40 पॉइंट्स आगे हो जाते हैं, क्या बात है। थैंक यू।
0: आए।
1: वो नहीं आए, देखते हैं अब कौन ए से गाने के लिए आ गया। हेलो
2: हेलो,
1: जी अनूप जी, ए से गाना सुनाना है आपको।
2: वो नहीं आए,
1: ए
2: एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह करूं गिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बाहर। वंस अगेन रा,
1: र, थैंक यू। तो चलिए र से देखते हैं गाने के लिए कौन है हमारे साथ अगला कॉलर। हेलो
3: हेलो
1: हेलो, गुड
3: हेलो, गुड
1: इवनिंग,
3: इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
3: अनु पांडे।
1: अनु, मैंने वैसे पहचान लिया था। अनु कैसी हैं आप, बारिश
3: बेस्ट
1: हुई
3: हूँ मैम,
1: आपके
3: बस आप
1: शहर,
3: बताओ।
1: आपके शहर में बारिश हुई?
3: अरे बारिश तो मैम बहुत हुई।
1: मुझे तो ठंडी लग रही है, आपको भी लगी?
3: हाँ, ठंडी लग रही है।
1: हाँ तो फिर ठीक है, ठंडी लग रही है तो एक काम करो, फटाफट से चाय बनाओ और लेके आओ, पीते हैं साथ में।
3: मैम अभी ना चाय तुरंत बनी है और अभी कप में चाय लग रही है, तुरंत ही लेकर
1: हाँ
3: आ
1: तो
3: रही हूँ।
1: मुझे चाय पीनी है आपके हाथ की। फिलहाल र से गाना सुना दीजिए, उस गाने कोई चाय समझ के हा, फीलिंग ले लेंगे। हाँ
3: राशि गाना है, ठीक
1: र से गाना है।
3: है। अभी एक ही गाना याद आ रहा है राशि, तुरंत ही वही गा रही थी। उसे कई गाने याद है पर अच्छे से नहीं याद है।

0: बिजली अब बारिश हो रही है तो बिजली में कड़क रही है, और रात भी है तो हमने सोचा यही सॉन्ग गुनगुनाते हैं।
1: ओके, और वो कैसी है हमारी व्याकरण?
0: वो भी बहुत अच्छी है और आपको याद कर रही थी।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच।
0: ओके मैम, बाय।
1: वो भाषा है तो मैंने उसको व्याकरण बना दिया। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं अगला कॉलर कौन है हमारे साथ। अरे ये क्या कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब अरमानों का खेला। और ये क्या है, रुकना रुक जा चांद, ठहर जा रे चंदा। और इसी के साथ अगले कॉल की बारी, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो मैम।
1: सो रा से गाने के लिए अगर आप दोबारा तैयार हैं तो जल्दी से सुना दीजिए गाना।
2: रा से है कि हा से है मैम?
1: हाँ से नहीं, रा से खत्म हुआ है शायद गाना।
2: अच्छा
1: जी।
2: रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया हो। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया।
1: या ओके। तो चलिए देखते हैं या से गाने के लिए कौन है अगला कॉलर। हेलो कॉल, यस कॉल लग गई है। हेलो,
3: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं,
1: ओह माय गॉड, ये हमारे कॉलर मुझे होल्ड पे भी कर देते हैं। मतलब क्या चल रहा है ये? हाँ मतलब आप लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसे थोड़े ना होता है, आप लोग को कॉल करना चाहिए। कॉल करके कोई होल्ड पे करता है क्या? चलिए देखते हैं। हेलो रमैया बता भैया, मैंने दिल तुझको दिया। या
4: यूं ही तुम मुझसे

0: यूं तुम मुझसे बात करती हो।
1: बाप बात करके गाना सुना रहे हैं, लेकिन आपकी टीम अभी सोने में लगी है।
0: मैं सब सो रहे हैं, मुझे
1: सो
0: पता
1: गया
0: है, मैं
1: ये जहां।
0: मैं 10 मिनट और रहूंगा, उसके बाद फिर मैं भी गायब हो जाऊंगा।
1: चलिए, क्या पता अगला कॉल किसी लड़के का ही हो। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
1: ओ हो, आप मतलब मेरे मुंह में घी शक्कर, जैसे मैंने कहा तुरंत एक किसी और का फोन आ गया। अनूप जी अभी कह रहे थे अगर कोई और मेरी टीम से नहीं दिखा तो मैं भी तुरंत भाग जाऊंगा।
2: नहीं नहीं बिल्कुल, मैं लगा रहा था लेकिन लग नहीं रहा था।
1: तो चलिए बताइए अनूप जी ने किस गाने से गाना गाया है।
2: वो मुझे नहीं मालूम है अभी।
1: इरादा है, हाँ से आपको हाँ से सुनाना है, हाँ से।
2: नफरत हो या मोहब्बत आसानी नहीं होती, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। पर मैं नीचे भी थोड़ा
1: सा। क्या बात है।
2: या जी मैम, जैसे या मैम, आ गया ना
1: जैसे से, सौ सा आएगा ना।
2: हाँ वो मात्रा है।
1: क्या कहने। चलिए अगले कॉलर को मौका देते हैं। हेलो।
3: हेलो मैम।
1: हेलो, वापस से एक सुरीली आवाज, स से गाना सुनाना है आपको आज।
3: किससे मैम, किससे?
1: सा, सा से सपेरा।
3: सा से मैम, गा रहे हैं।

0: गाने के साथ गाते हैं, लिरिक्स नहीं डाला।
1: क्या बात है, आपने इतना गा दिया, बहुत है, थैंक यू सो मच। तो हम तुम, चलिए देखते हैं अगला कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, कृपया फोन के करीब आकर बोलें। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो हेलो, सो हमारे लिसनर की आवाज नहीं आ रही, और देखते हैं अगले कॉल में कौन है हमारे साथ। हेलो, मतलब ये क्या हो रहा है, लगातार कॉल्स आ रहे हैं लेकिन आवाज़ आप लोग की क्लियर नहीं आ रही, वो थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करिए, और देखते हैं अभी कौन है हमारे साथ। हेलो
2: जी मैम, वर्ड वो सॉरी लेटर कौन सा था?
1: मा मा मा मा मा मा
2: मा से
1: जी।

0: क्या बात,
1: तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है सदा रहेगी।
0: गौसे। चलिए थैंक यू सो मच। और इसी के साथ लड़के और लड़कियों की जो पॉइंट्स हैं वो एकदम इक्वल हो चुके हैं, और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग फटाफट से एक दूसरे की टीम को सपोर्ट करें, और एक एक मौका और मैं दूंगी, इसके बाद आप लोग को इस राउंड को ओवर करना होगा, नेक्स्ट राउंड पे हम लोग शिफ्ट होंगे। हेलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो,
2: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम
2: मैम?
0: कमल जी, शुभ संध्या। आपने इतनी बार कॉल किया, एक बार आपका होल्ड हो गया और दूसरी बार तो आपका कॉल ही नहीं लगा।
2: मैम हम तीन मोबाइल लगाए हुए हैं।
0: कोई बात नहीं, फाइनली आज मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं तो 8-10 महीने बाद मैं आपको ऑन एयर सुन पा रही हूँ अंताक्षरी में। हेलो हेलो हेलो जी, आपकी आवाज अभी भी बहुत कम आ रही है कमल जी। हेलो हेलो ये क्या है भाई, कमल जी का कॉल क्यों नहीं लग रहा है? तो फिलहाल के लिए टीम ए और बी दोनों के पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं, और देखते हैं अगला कॉल किसका है। हेलो
2: जी मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम है आज मैम।
0: हाँ, और आपकी आवाज बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है, तो गा से गाना सुनाना है बिना देरी के, जल्दी से सुना दीजिए।
2: गा था।
0: गा, आप ही के टीम के अनूप जी गा के गए हैं, सदा रही है सदा रहेगी, गा छोड़ के गए आपके लिए।
2: गा।

0: करते हैं।
1: क्या बात है, कितनी सिचुएशन से गाना आपने गाया है।
0: मैम हम तीन बच्चों को लगाए हुए हैं कॉल मतलब करने के लिए, तीनों मोबाइल चालू रखे हैं, गाना भी लिख करके पूरा रखे हैं, लेकिन फिर भी कॉल लगती नहीं, पता बहुत मुश्किल से पहली बार लगी।
1: मुझे लग रहा है कि आप जिस एरिया में उधर नेटवर्क का थोड़ा इश्यू होगा इसीलिए।
0: जी मैम वही दिक्कत है।
1: चलिए फाइनली,
0: और हमारे घर में त्रिपाठी भी आ गए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं।
1: क्या बात है, स्वागत है, स्वागत है सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, इन्होंने गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है, अगले कॉल को मैं मौका देती हूँ, देखते हैं किसकी बारी है। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: आपकी इनायत है, आज मैं जो भी जो कुछ भी हूँ आपकी इनायत है। हाँ से गाना छोड़ा है, हाँ से गाना सुनाना है अनु।
2: हाँ मैम,
1: हाँ हाँ
2: ठीक है, ओके गा रही हूँ। हम तुम्हारे तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की

0: नहीं
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच अनु, और थैंक यू ऐसे कॉल करते रहिए और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहिए।
0: ओके
1: तो देखिए लिसनर्स, अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अटेंशन से सुनिए, कॉल करने पे जोर देना बंद करिए। अभी ये राउंड यहीं पे समाप्त होता है। दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा आज खेला है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बारिश का तो असर मतलब मेरी टीम पे ही दिख रहा है। टीम ए एंड बी बहुत मतलब ऊर्जा के साथ दिख रही है। एंड यस, दिस इज अ टाइम टू स्विच द नेक्स्ट राउंड। एंड यस, अब अगले राउंड की ओर रुक करने का समय आ चुका है। तो चलिए एक छुटकू से 2 मिनट वाले ब्रेक पे चलते हैं और चलिए लाल परी सुन के आते हैं और आप लोगों को देखते हैं कि आप भी गुस्से से लाल पीले होके एक से एक शब्द निकालिएगा। किसी ने वोट का देना है तो किसी ने कोई भी वर्ड देना है, आपकी मर्जी है। लेकिन चैट रूम में जो सबसे पहले वर्ड आएगा उसी को मैं कंसीडर करूंगी। एक बंदे का वर्ड एक बार लूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीति जी ने एक बार वर्ड दे दिया तो उनका एक बार वर्ड हो गया। तो दोबारा दूसरी मेंबर जैसे कि गीता जी या सविता जी या पूजा जी या प्रिया जी या अंशिका जी या आशु जी कोई भी दें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट कोई एक इंसान 2 बार 3 बार वर्ड नहीं देगा, ओनली एक बार, ओनली एक बार। और ऐसे ही लड़कों की टीम में भी होगा। तो चलिए इस राउंड को यहीं पे समाप्त करते हैं। बड़ा मस्त तरीके से खेला है, मतलब दिल मेरा खुश कर दिया, गार्डन गार्डन हो गई। और इसी बात पे चलिए पी लेते हैं थोड़ी सी लाल परी। और मेरे लिए मेरी लाल परी मेरी चाय है। तो चाय पे तो वैसे बहुत सारे गाने नहीं बने हैं, लेकिन हाँ जो भी बने हैं टूटे फूटे सही हैं। तो चलिए सुनते हैं लाल परी आपके साथ और इन्जॉय करते हैं ये शाम आपके वाले अंदाज में, क्योंकि लाल पर एक छोटा सा गाना है। इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे नेक्स्ट राउंड। जस्ट वेट एंड वॉच।

दरिया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, एक दूसरे से नजर फेर रहे हैं क्या? अभी तक किसी का शब्द क्यों नहीं आया? इतना स्लो प्रोसेस, मैंने सोचा एक ट्रेंडिंग गाना सुना दो, शब्द मिल जाएंगे लोगों को, लेकिन किसी को तो कोई शब्द ही नहीं मिला अभी तक। तो फटाफट से शब्द दीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी अगली चाल, झलड़े झलड़े वाल। क्या बात है, क्या बात है। तो सबसे पहला शब्द मिल गया है हमें लड़कों की टीम से, लड़कियों के लिए फैंटास्टिक, और लड़कों के लिए मिल चुका है काफिले। तो चलिए फैंटास्टिक से गाने के लिए लड़कियां अभी मैदान में उतरेंगी, और देखते हैं लड़कियों की टीम से कौन आता है फैंटास्टिक वाली बॉल पे चौका लगाने। वैसे जब तक के लिए चौका लग रहा है, तब तक के लिए मेरे कुछ अल्फाज मेरे प्यारे श्रोताओं के लिए गौर फरमाइएगा। इरशाद मुझे चैट रूम में पूरे भरता हुआ दिखना चाहिए। कहते हैं कि आवाज मेरी है मगर एहसास आपका है। गौर फरमाइएगा कि आवाज मेरी है पर एहसास आपका है, मेरी हर बात में थोड़ा सा विश्वास आपका है। वावा कौन करेगा भाई जी? कि आवाज मेरी है पर एहसास आपका है, मेरी हर बात में एहसास आपका है। मैं बोलती हूँ पर आप सुनते हैं, इसी रिश्ते के सहारे हम हर शाम सुनते हैं, कभी गीतों के साथ, कभी हंसी के साथ, कभी किसी किस्से में छुपा होता है इंतजार। इस फ्रिक्वेंसी पे आवाज मेरी जो घर पे आपके आती है, तो दूरियों के बावजूद भी अपनापन आपका प्यार मेरे पास ले आती है। ना चेहरा दिखता है, ना हाथों में हाथ होता है, फिर भी हर सुनने वाले का दिल मेरे पास होता है। आपकी फरमाइश मेरी मुस्कान बन जाती है, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया ये शाम सजा जाती है। तो चलिए देखते हैं लड़कियों की टीम से किसका कॉल आ रहा है, लड़कियों को गाना गाना है फैंटास्टिक से। तो लड़कियों जल्दी से मूड घुमाओ, सीढ़ी बजाओ, और जल्दी से ऑल इज वेल बोलते हुए गाना सुना दो फैंटास्टिक से। वैसे ऑल इज वेल में फैंटास्टिक नहीं आता, आप लोग जरा दिमाग मत लगाने लगे कि आर्ज मीना ने लड़कियों की मदद कर दी है। मुझे मेरे को भरोसा है पूरा कि लड़कियों को फैंटास्टिक से भी गाना आता है, ऑल इज वेल से भी गाना आता है। तो चलिए सुनते हैं ये गाना और देखते हैं कॉल कौन करता है अभी के अभी इस समय। हेलो,

0: सो लड़कियों, आप लोगों के पास टाइम ज्यादा नहीं है क्योंकि अभी हो रहे हैं 7:15 और अभी 18 मिनट के बाद ये वर्ड मैं पास कर दूंगी। 7:18 पे आपको गाना गाने का मौका नहीं मिलेगा। तो गाना गाना है लड़कियों को फैंटास्टिक से। और मुझे लगता है कॉल किसी का आ गया। हेलो
1: हेलो मैम।
0: हेलो
1: हेलो मैम।
0: हेलो गुड इवनिंग।
1: गीता श्रीवास्तव बोल रहे हैं। मैं
0: गीता जी फैंटास्टिक
1: मैम, ये दिल है मुश्किल का क्यूटी पाई एक सॉन्ग है, उसका गाना है।
0: सुना दीजिए।
1: बन लो तेरा अति फैंटास्टिक, सोशल मीडिया पे हुक्म चलाए, फोन पे बातें करे, अपने लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे मेहंदी लगाए, क्यूटी पाई इस तरह से है।
0: हाँ मैंने सुना है क्यूटी पाई।
1: जी मैम जी।
0: ओके फाइन। और इसी के साथ आपकी टीम को मिल जाते हैं सीधे 60 points। और लड़कियां किसी से कम नहीं है और हर बार ये प्रूव करती हैं। तो इसी के साथ लड़कों को गाना है गाना काफिले से। देखते हैं काफिले बदलने के लिए कौन आ रहा है। कॉल आ चुका है, देखते हैं लड़कों की टीम से है। हेलो
2: हेलो
0: हेलो काफिला।
2: अपना काफिला जब प्यार से चला, लोगों का दिल जला, यारों का दिल मिला, मोहब्बत का यही सिलसिला।
0: क्या बात है। इसी के साथ लड़कों की टीम को भी मिल जाता है 60 points और इन्होंने अपने मुकाबले को प्रूफ कर दिया। बारी है नेक्स्ट वर्ड की, देखते हैं कौन आता है और इस बार चौका और छक्का लगा के जाता है। और इस बार देरी नहीं होने वाली है क्योंकि सब एकदम राइट टाइम दिख रहे हैं। तो 340 340 दोनों का जो वोल्टेज है वो बराबर चल रहा है। हम भी गाना बजा देते हैं अगले शब्द के इंतजार में।
3: सितारे मिले
0: जी नहीं, अगला शब्द अगला मेंबर देगा, ना ही अनूप जी दे सकते हैं और ना ही गीता जी। अब अगला मेंबर ही अगले शब्द दे सकते हैं।

0: देर ना हो जाए। बिल्कुल, मुझे बहुत डर लग रहा था कि कोई शब्द नहीं देगा, लेकिन फिलहाल शब्द देने के लिए आ गए हैं साइकिल। फिलहाल सबलू जी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सबलू जी ने मुझसे उस दिन कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन अभी आपको देख के मैं मुस्कुरा रही हूँ। और साइकिल से गाना कौन चलाने वाला है? मुझे तो यही गाना गा रहा है याद, सखी सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, लेकिन वो साइकिल नहीं उसमें। मेरे को साइकिल पता नहीं उसमें याद आ रहा है। फिलहाल लड़कियों को गाना है गाना साइकिल से, तो जल्दी से आइए साइकिल चला दीजिए और गाना सुना दीजिए। और इसी के साथ लड़कियों की टीम से भी शब्द लड़कों के लिए आ चुका है। अजंता, वाह क्या शब्द है, क्या शब्द है, क्या शब्द है। दोनों टीमों ने एक दूसरे को शब्द नहीं मारा है, एक तरह से दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को तमाचा लगाया है शब्द का कि लो अब तुम गाना गा के दिखाओ, अब तुम गाना नहीं गाओगे तुम चुप हो जाओगे, क्योंकि ये गाना, ये शब्द नहीं है, ये एक कह सकते हैं धोखा है। फिलहाल धोखा नहीं लग रहा है क्योंकि किसी ने किसी की टीम से कॉल कर दिया है। कौन है हमारे साथ? हेलो
1: मैम, गर्ल्स हूँ मैं।
0: गर्ल्स गर्ल्स की टीम हमेशा से आगे रहती है। और साइकिल से गाना सुनाने के लिए तैयार हो जाइए
1: मैम, इसलिए पार्टिसिपेंट में बात भाग लेते हैं क्योंकि गर्ल्स कहलाते
0: हैं। भावनाओं को समझिए। आपकी बाकी टीम मेंबर्स कहाँ चली गई?
1: अरे मैम वो अभी आ रही हैं, सब आ रही हैं। मैम ये साइकिल से गाना है, मोहम्मद रफी का है, कोई है पता नहीं।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: ये साइकिल का चक्कर है कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर है कभी आगे कभी पीछे। नहीं आता
0: क्या बात है, और
1: चक्कर ना चल, अरे चक्कर ना चलाओ क्या है, कुछ ऐसे है मैम, लेकिन वो शब्द नहीं आता।
0: कोई बात नहीं, आपने गा दिया यही काफी है। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया। तो चलिए गीता जी की टीम से गाना गाया जा चुका है और देखते हैं लड़कों की टीम से कौन आ रहा है। हेलो,
2: मैं अनूप मिश्रा बोल रहा हूँ।
0: अनूप जी मतलब आप ही आते हैं अपनी मतलब टैलेंट की आजमाइश करने एक दो राउंड के लिए?
2: नहीं नहीं कोई, मैं क्या करूँ आखिर, बताइए क्या करूँ आखिर।
0: नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये
2: ना कोई चैट बॉक्स में दिखाई पड़ रहा है मैम। ये बताइए ये अजंता है या अजंता है?
0: अजंता,
2: अजंता से तो मुझे नहीं पता, लेकिन अजंता से पता है।
0: नहीं अजंता,
2: अगर मतलब मैं गा देता हूँ, अगर सही होगा तो पॉइंट दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं।
0: अब मैं शब्द अजंता ही सुनूंगी, अजंता। लड़कियां मानेंगी तो लड़कियों में रोशनी जी बताएंगी गाना है कि नहीं,
2: आप कंफर्म कर दीजिए वैसे, क्योंकि मुझे अजंता

0: गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी क्लियर करेंगे रोशनी जी। रोशनी जी ने कहा है कि रोशनी जी ने बता दिया है कि अजंता से गाना है, लेकिन आपके गाने में अजंता आया है तो इसलिए इस गाने को मैं कंसीडर नहीं कर सकती। शुक्रिया इतने प्यारे से गाने सुनाने के लिए। तो अजंता से गाने के लिए कौन आएगा सामने दावेदार? और अगर लड़कियों की टीम से रोशनी जी के अलावा कोई अजंता से गाना गा देता है तो लड़कियों को मिल जाएगा बोनस पॉइंट। तो रोशनी जी ने कह दिया ये गाना गलत है, तो मैंने मान लिया ये गाना गलत है, क्योंकि इसमें शब्दों शब्द देने वाला ही डिसाइड करेगा कि गाना कौन सा। वैसे लास्ट में रोशनी जी अगर आप चाहें तो कॉल पे गाना बता सकते हैं, लेकिन पॉइंट आपकी टीम को नहीं मिलेगा। आपकी टीम को पॉइंट तभी मिलेगा जब जब जब आपकी टीम के किसी और लड़की ने गाना गाना होगा। चलिए देखते कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो, मैं अनु बात कर रही हूँ। हम लोग गाना गाएंगे, मेरी सिस्टर गाना गा रही है अजंता से।
0: अजंता से सुनाइए।
1: हाँ हमको आता है गाना, लेकिन मेरी सिस्टर गाएगी भी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग। भाषा व्याकरण गाना सुनाइए आप अजंता से।
1: जी मैम। मेहनत ने बनाए ताज महल, मेहनत ने अजंता ढाले हैं, मेहनत के मत वाले हैं, मेहनत हमारा नारा है। हम मजदूर हैं नहीं मजबूर हैं, हम मजदूर हैं नहीं मजबूर हैं।
0: आई थिंक आपने जो गाना गाया उसमें भी अजंता ही है कि अजंता है?
1: अजंता अजंता में अजंता है।
0: अजंता है। ओके मैं क्रॉस चेक एक बार कर लूंगी। थैंक यू सो मच।
1: आप एक बार चला के सुन लीजिए।
0: नहीं मैं लिरिक्स चेक कर लूंगी, सुनने की क्या जरूरत है, आपने तो सुना ही
1: है। लिखा हुआ गाना है मैम।
0: किसका?
1: अहमद बशी का।
0: अहमद बशी का गाने के बोल है
1: मेहनत ने बनाए ताजमहल, मेहनत ने अजंता ढाले,
0: मेहनत ने बनाए ताजमहल। क्या बात है, लड़कियों की टीम तो जैसे लग रहा है कि यूपीएससी की तैयारी करके आती है पूरी। क्या बात है
1: मैम, मैं गाना ये एक बार सुनी थी, वो भी पिटारा में अब्दुल भारती से, आज के मेहमान।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू
1: अहमद बशी के इंटरव्यू में।
0: थैंक यू सो मच। मेहमत ने बनाए ताजमहल। ओके
1: जी मैम।
0: तो भाई देख लेते हैं मेहनत ने बनाए ताजमहल ये सॉन्ग की लिरिक्स क्या है। मैं ज़रूर पढ़ूंगी और फिर लड़कियों की टीम को पॉइंट दूंगी। और अहमद बशी का लिखा गाना, क्योंकि मैं आज किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती फिलहाल ये गाना ऑफ कोर्स होगा, तभी लड़कियों ने इतने कॉन्फिडेंस से गाया है। और नो डाउट गाना सही है क्या बात है यार, मतलब लड़कियों की टीम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके कैसे आ जाती भाई। मेहनत ने बनाए ताजमहल, मेहनत ने हमारा नारा है, और अजंता है इसमें, अजंता नहीं है। मैं इस बात को लेके थोड़ा सा फिर से आश्वस्त कर दूं कि इसमें फिर से अजंता आया है तो इसलिए लड़कियों की टीम को पॉइंट नहीं मिलेगा। शब्द में अजंता है तो रोशनी जी ही गाना बता सकती हैं, नहीं तो फिर मतलब गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आपने गाना गाया है अनु, लेकिन जो बोल हैं वो अगेन अजंता की तरफ इशारा करे, अजंता की तरफ नहीं, तो इसीलिए मैं पॉइंट नहीं दूंगी क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं ना, वो पूरा युद्ध हो जाएगा युद्ध भूमि मुझे नहीं बनानी है। तो मैम ये कंडीशन हटा दीजिए। नहीं कंडीशन तो बिल्कुल रहेगी, और नहीं रहेगी तो फिर थोड़ा सा बेमानी हो जाएगी। और शब्द आ चुका है, चलिए इस वर्ड को मैं ही डिसकंसीडर करती हूँ और अब नेक्स्ट शब्द की तरफ चलते हैं। लड़कों की तरफ से शब्द का इंतज़ार है, देखते हैं। लड़कियों ने तो फिर से शब्द लड़कों को दे दिया है। एक्टर आ चुका है आशु की तरफ से, और लड़कों की तरफ से भी कोई शब्द नहीं आया। लड़के जल्दी से लड़कियों की टीम को शब्द दे दें जिससे कि आगे हम गाना सुन सकें। और रोशनी जी अब आप गाना बता सकती हैं कौन सा है। और इसी के साथ मैं एक गाना और प्ले कर देती हूँ आप लोगों के लिए।

0: लड़के लग रहा है थोड़ा डर सा रहे हैं और इसी के साथ शब्द नहीं दे रहे हैं, तो लड़कों की टीम में किसी और को शब्द देना कि मैम सात समंदर पार हूँ मैं, कॉल पे नहीं आ सकता। कहाँ चले गए हैं, सौ कौन से समुंदर पार करके चले गए हैं भाई? बताऊं मैं इस जगह, थोड़ा शब्द दे दे चैट रूम में। तो लड़कों की शब्द ना देने की वजह से लड़कों की एब्सेंस की वजह से मैं चाहूंगी कि अब जो गाना है, ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो फिलहाल हम नेक्स्ट राउंड की ओर मूव करेंगे। अगर शब्द नहीं मिलता है तो देखते हैं कौन कॉल कर रहा है हमारे लिसनर में। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसे आप आज ऑन एयर आ गई, मतलब भूल के आरजे बीना को याद कर लिया?
1: मैम मैं तो हमेशा आपको याद करती हूँ, भले ही बात नहीं करती हूँ पर याद हमेशा करती हूँ।
0: ओह क्या बात है। तो रिवांशी क्या कहना चाहती हैं? फिलहाल लड़कों ने तो शब्द दिया नहीं,
1: तो मैम एक मिनट वाले राउंड में गाना गाऊं?
0: अभी एक मिनट वाला राउंड मैंने नहीं शुरू किया, उसकी अनाउंसमेंट प्रॉपर करूंगी फिर उसके बाद। ओके वेल आप अपनी मन से कोई गाना सुनाना चाहती हैं लिसनर्स को तो डेफिनेटली सुना सकती हैं।
1: अपने मैम मैंने खुद लिखा है, सुना दो।
0: तो लड़कों की टीम से शब्द आ चुका है, शब्द है संभालना, जो कि अनिल जी ने दिया है। तो संभालना शब्द से अगर आपको गाना गाता है तो आप डेफिनेटली गा सकती हैं संभालना।
1: संभालना मुझे नहीं आता।
0: ओके कोई बात नहीं। तो रिवांशी को संभालना से गाना नहीं आता, लेकिन अगर लड़कियों की टीम से किसी को आता है तो डेफिनेटली आप गाना गा सकती हैं और अपनी टीम को पॉइंट्स दिला सकती हैं। एंड यस लड़कों के लिए वर्ड ऑलरेडी चैट रूम में पड़ा हुआ है, शब्द है एक्टर, एक्टर से गाना गाना है, लड़कियों को संभालना से गाना गाना है। थैंक यू सो मच अनिल जी और अनूप जी और बाकी सारे लिसनर से मैं यही कहूँगी, मैंने ये कंडीशन इसीलिए रखी जिससे ज़्यादा आपके मेम्बर जो है वो पार्टिसिपेट करें, एटलीस्ट चैट रूम में आएंगे तो वो अपनी टीम का सपोर्ट करेंगे। तो इसी वजह से मैंने ये कंडीशन रखी कि जो गा नहीं रहे हैं वो एटलीस्ट शब्द दे के अपनी टीम का सपोर्ट करें। सो देखते हैं लड़कियों की टीम से कौन आ रहा है संभालना से गाना गाने के लिए।

भाई संभालना से भी कोई गाना नहीं गाएगा क्या? मतलब लड़के लड़कियां एक दूसरे को फंसाने में लगे हैं क्या? कुछ देर के लिए तो मैंने मलेशिया भी शब्द समझ लिया था, फिर मैंने कहा कि अरे सबलू जी ने तो शब्द दिया था, अब इनका शब्द कहाँ से कंसीडर हो पाएगा। तो फिलहाल चलिए देखते हैं कौन आता है खेमे में और अपनी टीम को दिलाता है पॉइंट झकाझक। फिलहाल ये इंतजार, हाँ हाँ हाँ क्या बात है, मैम स्विच ऑफ बता रहा है, ओ माय गॉड यहाँ पे तो ऑन है फोन, क्यों नहीं कॉल आ रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल अगर आप लोग को गाना आता है तो आप चैट रूम में बता दीजिए, मैं आपको पॉइंट दे देती हूँ। मेरे फ़ोन में मतलब मेरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं दिखा रहा है, जिस भी कंपनी का है ये मतलब फ़ोन जो है नो नेटवर्क, ओ माय गॉड ओके मैं इसको थोड़ा सा चेक करती हूँ। तो चलिए जिसको भी गाना आता है संभालना से वो चैट रूम में शब्द बता सकता है और मैं उसको पॉइंट दे दूंगी। एंड इसी की तरह एक्टर से भी लड़कों की टीम से अगर किसी को गाना आता है तो वो चैट रूम में बता सकता है, लेकिन लड़कियों के बाद। तो लड़कियों की टीम से गीता जी, आशु जी, प्रीति जी, एनीवन जिसको भी आता है संभालना से गाना वो अपनी टीम को पॉइंट दिला सकता है। ओके ओके ओके ओके यस यस यस आप लोग टाइप कर दीजिए। एंड यस थोड़ा सा टेक्निकल यानी कि नेटवर्क इशू है, बादल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं जिस वजह से शायद नेटवर्क नहीं दिखा रहा है, फ्लाइट मोड करने पे भी ये सही नहीं हो रहा। एंड अगेन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है कॉल के लिए। तो फिलहाल आप चैट रूम में जल्दी से गाना बता सकते हैं, दिल संभालने से संभलता नहीं। आहा क्या बात है आशु जी, बिल्कुल सही कहा आपने और ये गाना बिल्कुल सही है इस शब्द के लिए। और इसी के साथ लड़कियों की टीम के पॉइंट थे 400 और इसी के साथ 440 पॉइंट के साथ लड़कियों की टीम आगे हो जाती है। एंड लड़कों की बारी है गाना बताने की और लड़कों के लिए शब्द है एक्टर। तो लड़कों की टीम से हमारे साथ अनिल जी हैं, सबलू जी हैं, कमल जी हैं, अनूप जी हैं, अरविंद जी हैं और कौन कौन है भाई, कुमार हैं। कुमार के साथ साथ हमारे प्यारे प्यारे दोस्त लोग जितने भी सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूँगी कि आप लोग को अगर एक्टर से गाना आता है तो जल्दी से लिख के भेजिए। देखिए जरा संभावना मेरी जान, जरा संभलना मेरी जान, थोड़ा सा लेटर की वो दिक्कत हो गई। लड़कियों की टीम से 2-3 गाने सुनने को मिल गए हैं, अरे वाह क्या बात है यार, चैट रूम से तो मज़ा ही आ जाए। और अगर ऐसा मेरे चैट रूम में सिस्टम हो कि चैट रूम से भी आप गाना गा सकते हैं तो मज़ा आ जाए। फिलहाल कोई बात नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है तो क्या हो गया, जो है हम उसी के साथ खुश हैं। फिलहाल 440 नहीं 460 पॉइंट, क्योंकि एक गाने के आपको 60 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। आई एम नॉट एन एक्टर, आई एम नॉट अ स्टार, आई इवन हैव ऑन माय कार, ओ माय गॉड कौन सा गाना है ये, पोएम तो नहीं है, ये गाना मैंने नहीं सुना भाई। ओ माइकल लॉरेंस 1991, ओके मतलब कि चैट रूम में गाना गाने को बोल दिया गया तो फायदा उठाया जा रहा है बॉस। ओके कोई बात नहीं, आप लोगों ने गेस किया और मेरी मजबूरी को समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मजबूरी दैट इज कि नेटवर्क इशू एंड अभी भी फोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं दिखा रहा है, हे भगवान आ जाता मेरा लास्ट राउंड पूरा हो जाता। एंड यस चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ करती हूँ अगर मुझे नहीं मिलता है तो। इसी के साथ मैं आप लोग को क्या दूंगी, एक और मौका दूंगी जिसमें आप लोग को गाना गाने का मौका मिलेगा। फिलहाल नेटवर्क के लिए मैं पूरी जो कहते हैं ना संभावनाएं बना रही हूँ। लड़कों की टीम भी पहुंच जाती है 400 पे और कहाँ पे थी लड़कों की टीम, यस यस यस 300 यस कहाँ पे थे लड़कों, 340 पे थे लड़के और इसी के साथ लड़कों की टीम आगे आ जाती है 400 पे। थोड़ा सा मेहनत और आप भी अपनी टीम के साथ साथ बराबर आ जाएंगे। तो लड़के हैं 400 पे, लड़कियां हैं 460 पे और अब बारी है नेक्स्ट राउंड की। लेकिन नेक्स्ट राउंड के लिए मैं गाना प्ले करूंगी जिससे कि तब तक मेरे गाने मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ जाए। 1 मिनट राउंड के लिए आप लोग बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो जाइए, 1 मिनट मिलेगा दोनों ही टीमों को और दोनों टीमों को 1-1 मिनट गाना गाने के साथ साथ आज आपके साथ कंडीशन भी मैं लगा रही हूँ। आपके गाने जो हैं ध्यान दीजिएगा, आपके गाने 90s के नहीं होने चाहिए, गौर फरमाइएगा। एक गाने का ब्रेक मिल रहा है, आप चाहे तो गाने लिख के गा सकते हैं। आपके जितने भी गाने होंगे वो 90s के नहीं होने चाहिए, यानी कि 2000 से 2026 तक के जितने भी गाने आपको मिल जाते हैं आप गा सकते हैं, गाना रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ लड़कियों ने जो गाना गाया वो लड़के गा सकते हैं, लड़कों ने जो गाना गाया वो लड़कियां गा सकती हैं, ठीक है। तो इस बार शुरुआत लड़के पहले करेंगे फिर लड़कियां करेंगी, ठीक है। तो कोई पहले वाला सिस्टम नहीं होगा, इस बार पहले कॉल लड़के करेंगे फिर लड़कियां करेंगी।
जी, आपने जिस शब्द से गाना नहीं गाया था आपको याद होगा, एक शब्द था जिससे आप गाना नहीं गा पाए थे, उसी वजह से आपके पॉइंट्स नीचे आ गए थे। और लड़कियों ने एक गाना गा दिया था जिसकी वजह से इनके पॉइंट्स आगे बढ़ गए थे। अनूप जी, वही शब्द जिससे आपने गाना गाया था और वो कंसीडर नहीं किया गया था, आपको याद है? याद आ गया होगा। जी हाँ, शब्द था मैं बता देती हूँ, शब्द था अजंता था, आप ही की टीम को दिया गया था, आप नहीं गा पाए थे। लड़कियों ने गाया था लेकिन वो गाना कंसीडर मैंने नहीं किया था, ठीक है? तो जो शब्द आपने दिया था आपकी टीम ने, उससे लड़कियों ने गाना गाया था और उनको पॉइंट मिल गया था। चलिए तैयारी कर लीजिए, आपको 1 मिनट में गाने तो गाने हैं, लेकिन आपको गाने गाने हैं, फर्क आपको याद आ गया होगा अनूप जी, वहीं पे जो गाना आपने नहीं गाया था उसी का पॉइंट आपका नीचे हो गया, वहीं पैरेलल में जो शब्द आपने दिया लड़कियों ने उससे गाना गा दिया और पॉइंट्स बराबर हो गए। यस, तो चलिए हम सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, पर मैं हर बार मतलब पॉइंट जो हमारे ऑपरेटर हैं वो तुरंत अपलोड कर देते हैं, स्पेशली अंताक्षरी के लिए ऑपरेटर को बुलाती हूँ मैं। तो चलिए सुनते हैं ये लेटेस्ट वाले गाने आप लोग के साथ, करिए एंजॉय मेरे साथ।

हरा हरा, फिर भी मैं हूँ इश्क का दुलारा, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा था। आपको बताइए आपको क्या सुनाई दे रहा था। कभी कभी कुछ शब्द ना ऐसे गाए जाते हैं ना कि समझ ही नहीं आता यार कि क्या गाया जा रहा है। तो आप लोग को मैं एक बात की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अब आप कहेंगे कौन सी, नेटवर्क आ गया है मेरे फोन में और आप लोग मुझसे मुखातिब हो सकते हैं। यस यस यस। तो जैसे आप लोग को एक एक मिनट का टाइम देना है, तो आप लोग भी मुस्कुरा रहे होंगे कि हैं भाई आरजे वीना ने आज तो हम लोग की मतलब क्या कहना है, मतलब कंडीशन पे कंडीशन लगाए जा रही है आरजे वीना। देखिए थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना अपनी अंताक्षरी का। आप लोग इतना बढ़िया ऑन एयर खेलते हो, और आपको पता होना चाहिए कि रेडियो पे मतलब ये पहली दफ़ा, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने बहुत सारे रेडियो स्टेशन ध्यान से सुने हैं कि लाइव अंताक्षरी लिसनर्स, वैसे आरजे के साथ लोग खेलते हैं लेकिन लिसनर्स आपस में खेल रहे हैं, एंड दैट्स अ बिग डील। तो चलिए कौन गाने के लिए तैयार है जल्दी से कॉल करेगा लड़के और लड़कियों की टीम से। दोनों को एक एक मिनट का टाइम मिलेगा, मैंने आप लोग को टाइम भी दे दिया था सोचने का। सन 2000 से लेके 2026 तक के कोई भी गाने आप गा सकते हैं, लेकिन 90s का गाना नहीं एक भी होना चाहिए। एक्टर से गाना देखिए आशु जी, वो नेटवर्क नहीं था ना, तो मैंने चैट रूम में ही गाना मांगा था। तो अनूप जी ने ये लिख के दिया है ना, आई एम नॉट एन एक्टर, आई एम नॉट एन स्टार, आई डोंट इवन हैव ऑन कार। इन्होंने बता भी दिया किस फिल्म का गाना है, माइकल लॉरेंस 1991 में गाना आया था। तो इन्होंने सारी चीज़ें बता दी थी, इसी इनकी टीम को पॉइंट भी मिल गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन आता है खेमे में लड़कियों की टीम से और लड़कों की टीम से। तो सबसे पहले गाना लड़के गाएंगे, तो जल्दी से कौन गाने वाला है हाथ उठा ले और अपने टीम को पॉइंट दिला दे। भाई भाई भाई, तो जैसे कि मैंने शब्द अभी गाया था ना, हरा हरा मिश्क में हरा हरा, मैं इश्क का दुलारा, दुलारा सुनाई दिया मुझे। वैसे लिरिक्स क्या है मैंने ध्यान से पढ़ी नहीं, सुनी भी नहीं, और ऐसे गाना था जो बड़ा मतलब मुझे तो हमेशा से यही लगा यार। आप लोग बताओ आप लोग को क्या सुनाई दिया ये, खुट्टी मोहब्बत में अंगड़ाई ले। भाई मुझे हमेशा कुत्ती मोहब्बत सुनाई दिया, हमेशा मुझे कुत्ती मोहब्बत सुनाई दिया। अभी भी ध्यान से सुनती हूँ तब कहीं थोड़ा थोड़ा लगता है हाँ उठी है शायद। भाई मुझे हमेशा से यही सुनाई दिया, आप लोग बताओ। तो चलिए देखते हैं कौन आता है लड़कों की टीम से लास्ट बॉल पे सिक्सर लगाने, क्योंकि लड़के सिक्सर लगाएंगे तभी तो बात बनेगी। और देखिए मैंने थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाया है, डिफिकल्टी नहीं इसको कहेंगे भाई, डिफिकल्टी अगर होती, अगर मैं कहती सल्लू भाई के गाने गाने, डिफिकल्टी तब होती जब मैं कहती किसी शब्द के गाने गाने, डिफिकल्टी तब होती जब मैं कहती एक जेनरा के इस टाइप के गाने गाने, तो डिफिकल्टी नहीं है। ये साल बस मैंने आपको दिए, 25 साल का टाइम है, 25 साल में बहुत सारी फिल्में आई हैं, ठीक है ना। तो गानों की फरमाइश अभी थोड़ी देर में प्ले हो जाएगी, बिल्कुल घबराने की, डरने की, पछताने की जरूरत नहीं है, बस लड़कों के कॉल का इंतज़ार है कौन कॉल करता है। एनीवे कोई भी कॉल कर सकता है, लड़के या लड़कियों की टीम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने नहीं वाली हूँ। कौन है भाई, कौन आने वाला है, कौन गाना सुनाने वाला है इतना स्लो, माय गॉड। दिल के अरमा आंसू में बहते नजर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं गाइज, मतलब क्या हो रहा है ये।

0: मेरे फोन में फिलहाल नेटवर्क पूरा है, आप लोग कॉल करेंगे तो आवाज आएगी। तो चलिए, जब तक आप लोग कॉल करते हैं तब तक मैं सुन लेती हूँ ये प्यारा सा गाना, मैशअप वाला।
1: मैं तो हैरान हूँ यार, आज के टाइम पर भी इतने बुरे लोग होते हैं। डू दे इवन एग्जिस्ट? एक तो परवरदिगार के बारे में ना बोलिए और फिर एतबार के बारे में ना बोलिए, आपका हम कत्ल भी कर सकते।

क्या बात है भाई, लड़कियों की टीम से भी कोई गा के गाना सुना सकता है। इसी गाने का टाइम है आपके पास, इसी गाने के बीच में अगर आप कॉल कर देंगे तो आपकी टीम को पॉइंट मिल जाएंगे।

0: लग जाता है, एक जाने लग जाता है आपके पैरों से।
1: फिलहाल एक दीवाना आ चुका है या दीवानी आ चुके, आवाज सुनने के बाद ही पता चलेगा कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो,
2: फोन नहीं किया क्या अभी?
1: चलिए लड़कों की टीम से हमारे अनूप जी ने फोन कर दिया। और अभी चैट रूम में कोई भी लिख रही रहा था कि अभी दो ही लड़के हैं हमारी टीम में जो गाना सुना सकते हैं, एक सबलू और एक हमारे अनूप जी। तो चलिए अनूप जी गाना सुना दीजिए।
2: मैम किसी ने फोन नहीं किया क्या अभी?
1: अगर फोन किया होता जनाब तो मैं आपकी टीम का अनाउंसमेंट ही ना करती। कह रही थी ओ माई गॉड, लड़कियों की टीम भी इंतजार कर रही थी कि लड़के पहले गाना गा दें फिर हम लोग अपना टाइमर लगा के बढ़िया गाने गाएंगे दो चार एक्स्ट्रा। फिलहाल अभी किसी ने गाना नहीं गाया तो अपने शुरुआत कर देनी है। तो अगर आपकी टीम गा देगी और लड़कियों की टीम नहीं गाएगी तो लड़कियां जीत जाए लड़के जीत जाएंगे। तो चलिए आपका टाइम शुरू करती हूँ मैं अब, अगर आपकी शुरुआत अगर आप मौका दें। रूल पता है आपको?
2: हाँ हाँ, आपने बताया ना कि 2000 के बाद के गाने, तो बहुत सारे गाने हैं।
1: ओ क्या बात है, किसी ने मतलब तसल्ली से कहा तो, नहीं तो बाद में आप लोग कहते कितने टफ रूल लगा रही हैं अर्जबीना।
2: नहीं मैम, लेकिन वो जो जनता, वो अजंता कोई वर्ड ही नहीं है।
1: किसी लड़की, अब
2: मैंने इसीलिए गूगल पे सर्च मार के देख लिया, ईमानदारी।
1: अजंता से गाने हैं लेकिन अजंता से गाने,
2: लेकिन अजंता से, अजंता के तो बहुत सारे हैं, मतलब
1: किसी अजंता की पैट्रियोटिक
2: सॉन्ग है
1: एक गाना है।
2: हाँ हाँ, बहुत सारे हैं।
1: वेल कोई बात नहीं, हम नहीं कंसिडर करते हैं। एनीवे चलिए आपका टाइम शुरू करूं अगर आपकी इजाजत है।
2: यस मैम।
1: तो लड़कों की टीम से अनूप जी आ गए हैं, एक मिनट वाला जो कहते ना कि मौका अपने हाथ में लेके चौका लगाने, फिलहाल इनको चौका नहीं छक्का लगाना पड़ेगा क्योंकि इनका पॉइंट थोड़ा सा लड़कियों से कम है। फिलहाल के लिए आप ध्यान से सुनते रहिए और गाने गिनते रहिए, अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग भी जरा गिन लीजिएगा। अभी के लिए टाइम शुरू होता है अब।
2: हर घड़ी बदल रही प्रेटी वुमन, सूरज हुआ मध्यम चन्ना, मेरे ना मेरे चांद सिफारिश पी लू तेरे गीले गीले कजरा रे बोले चूड़ियां, तुमसे ही दिन होता है खुदा जाने क्यों, कैसे मुझे तुम पहली नजर में कैसा था, हमको हमी से तेरा होने लगा 10 बहाने करके, ओ देसी गर्ल इट्स द टाइम टू, जिसको जिया धड़क धड़क बोलना हल्के हल्के, मैं यहाँ हूँ यहाँ, कभी खुशी कभी गम, पैरों में बंधन है, नगाड़ा नगाड़ा नगाड़ा बजा आओगे जब तुम, दिल चाहता है जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, मर जावा जावा तुम्हें जो मैंने देखा, वादा रहा प्यार से कर ऐसा जादू डाला रे, दिल में मेरे है दर्द जिसको मैं अगर कहूँ, तुम सा नहीं कोई, तुम सा नहीं कोई, तुम सा नहीं मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, अब तो आदत सी है मुझको, तू ही मेरी शब है या आली, झलक दिखला जा।
1: स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आपने पूरे 39 गाने गाए हैं। 39 अनूप जी, 39
2: जी।
1: कैसे पूछना चाहती हूँ कैसे, मतलब मैं होती तो मेरा तो एक दो गाना निकल ही जाना था पुराना वाला।
2: मैं बताऊँ आपसे क्या, हमने जैसे मूवी लिखी पहले, फिर मैंने लिखी जब भी मैट, उसके 3 गाने आते वो तीनों मैंने गा दिए, फिर लिखी मोहब्बतें उसके 3 गाने आते वो मैंने गा दिए, ऐसे किया मैंने।
1: अच्छा क्या बात है, मतलब बेमानी तो नहीं कहूंगी लेकिन हाँ जो भी किया बहुत बिंदास किया। इसी के साथ आपकी टीम के बड़ी ही खुशी के साथ पॉइंट्स हो जाते हैं 3, 4, 3, 7 और 790 points, नॉट बैड। 790 पॉइंट्स के साथ लड़कों की टीम पहुंच चुकी है काफी आगे, अब देखते हैं लड़कियों की टीम।
2: फिर से मैं एक बात कहूंगा कि मतलब shame on to boys, shame on to।
1: लेकिन फिर भी आपके कहने पे 2-3 लड़कों ने आके मतलब अपना जज्बा दिखाया।
2: अनिल जी आए और वो आए, कमल नयन जी आए,
1: कमल आए और अमित भी आया, अमित ने भी, अमित को मैं हमेशा से ये कहूंगी कि मतलब एक शायद आप लोग के लिए लकी है, कुछ लड़कों के लिए अमित ने मतलब कोई शायद ही ऐसा वेंसडे होगा जब अमित ने गाना ना गाया हो, ही ऑलवेज बी रेडी टू सपोर्ट हिज टीम। हो सकता है नेटवर्क की वजह से वो गाना ना गा पाए, बाकी आपकी टीम में वो, बट मैं ये भी कहूंगी एक दो बार आप नहीं आए लेकिन वो अमित ही थे जो उन्होंने मतलब आके ही ट्राइड, एंड जुगल लास्ट टाइम जुगल ने भी बहुत अच्छे से मतलब गाया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अनूप जी की टीम में भाई आ चुके हैं 790 पॉइंट्स। अब बारी है लड़कियों की, देखते हैं कौन आ रहा है छक्का लगाने। वैसे लड़कियों की टीम में सब पक्के पक्के खिलाड़ी लाइव दिख रहे हैं मुझे, और देखते हैं कौन आ रहा है पक्का खिलाड़ी। मैं जब छोटी थी ना, तो हम लोग जब कबड्डी खेलते थे ना, तो हम लोग ये कहते थे पक्के वाले को भेजो। जब टीम हारने वाली होती थी ना, तो थोड़े से भी कमज़ोर खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं किया जाता था। एंड मेरी जो क्या थी, मतलब मैं कबड्डी खेलने में बहुत एक्सपर्ट थी, तो कबड्डी में क्या था कि मेरी जो थी, मैं रेड करने नहीं जल्दी आती थी, क्योंकि मैं रेड करती थी, मुझे कोई पकड़ लेता था ना, तो मैं जानबूझ के ही सांस छोड़ देती थी कि अभी ये लोग खींचे खाचेंगे, इससे अच्छा है पहले ही हार मान लो। मैं कभी रेड करने नहीं जाती थी, लेकिन जब मेरी टीम में कोई आता था रेड करने, तो मैं सबसे पहले पैर, मतलब इतने जैसे कोई नागिन आकर डसती है ना, मेरा मुझे सब नागिन करते थे कि कितना मतलब स्टाइल से जाके पकड़ती है। तो फिलहाल अभी लड़कियों की बारी है, लड़कियों को आना है, और अभी गाना बचा है, और इस गाने के दौरान देखते हैं लड़कियां भी कॉल करती हैं या फिर लड़कों को जीतने देती हैं। लेट्स लिसन दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: फिलहाल मैं किसी का दिल नहीं काटूंगी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और अभी कॉल आ चुका है मेरे प्यारे लिसनर्स का। तो प्रीति जी आज क्षमा चाहूंगी क्योंकि थोड़ा नेटवर्क हमारे तरफ भी वीक था जिस वजह से आप लोग के कॉल्स बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं हो पाए। तो वापस से स्वागत है आपका और मुझे पता है आप आई हैं तो कुछ समझ के आई होंगी, कोई डाउट नहीं है। सन 2000 के बाद के गाने गाने आपको, तैयार है?
1: हाँ मैम।
0: आफ्टर 2000?
1: जी मैम जी।
0: तो चलिए देखते हैं, मतलब अब लड़कों की टीम की थोड़ी सी हालत खराब हो सकती है क्योंकि प्रीति जी आई हैं। प्रीति जी
1: मैं इतना तो नहीं आता है, लेकिन जो आता है
0: नहीं, जैसे मतलब ये होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है सामने कौन बैठा है उसको देख के भी बहुत निर्भर करता है। आपके सामने आपसे बहुत पक्का खिलाड़ी बैठा हो तो आपका कॉन्फिडेंस कितना भी हाई हो वो तुरंत जीरो हो जाता है। एनीवे लड़कों की टीम में बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने गेन किए हैं, लड़कियों के 440 पॉइंट हैं। चलिए देखते हैं आपके गाने लड़कियों को कितने पॉइंट्स दिलाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट।
1: सोना प्यार है तुम दिल की धड़कन, आंखें खुली हो या बंद अपन बोला तू मेरी लय, कभी खुशी कभी गम दिन जाए पाए दिल जाए रहना है तेरे दिल में, हवाओं ने ये कहा छोड़ के ना जा छोड़ जिंदगी में तुझे पे लुटाऊंगा, दिल में दर्द सा लगा है दिल है तुम्हारा तुमसे अच्छा कौन है, बोले चूड़िया बोले अल्लाह के बंदे अल्लाह तेरे नाम कर दिया जादू है नशा है मेरे हाथ में, 10 बहाने करके ले गई कजरारे 10 में मौत नहीं याद है।
0: 8 सेकेंड 7 6 5 4 3 2 1 फिलहाल मतलब आपने इतने मतलब कम एनर्जी के साथ भी आपने बहुत गाने गाए, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ओके 25 गाने गाए हैं, तो यानी कि 250 पॉइंट्स आपकी टीम को मिल जाते हैं और 250 पॉइंट्स मिलने के बाद आपकी टीम के पॉइंट्स हो जाते हैं, जोड़ना पड़ेगा मुझे। फिलहाल अच्छा ये बताइए मैं आपसे पूछूं, आपने भी कहीं गाने वाने लिखे थे या फिर बस ऐसे ही?
1: मेरे इधर के तो मैं ज्यादा आते नहीं है, थोड़े बहुत आते थे, बाद में अब सोच सोच के लिखना पड़ेगा।
0: तो आपने लिखे नहीं एक भी गाने?
1: मैम नहीं, थोड़ा बहुत मदद लिया है ज्यादा नहीं।
0: मैंने इसीलिए गाने का ब्रेक दिया था जिससे सब लोग मतलब गाने को जो है वो एक बार लिख लें, तो लड़कियों की टीम के हो जाते हैं मतलब थोड़ा सा अगर आपने मतलब मन लगा लिया होता और थोड़ा सा मदद इधर उधर ले ली होती तो आपकी टीम के पॉइंट भी पहुंच जाते हैं, लड़कों की टीम के पॉइंट के एटलीस्ट बराबर। और अभी आपकी टीम के पॉइंट हैं 710, नॉट बैड। मतलब एक कंडीशन रखने के बावजूद, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग मतलब गाने सुने हैं और लेकिन आप लोग की पकड़ जो है 90s के हजारों गाने आपसे एक साथ सुने जा सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा
1: इधर आप लगा दिए रूल तो मैम अब इधर ध्यान देंगे,
0: अब थोड़ा सा सुनना शुरू करिएगा। क्या बात है, मजा आ गया। और नेक्स्ट टाइम से मैं पहले ही बता देती हूँ, एक रूल और रहेगा आपका, बॉलीवुड सॉन्ग क्विज होगा जिसमें किसी बड़े म्यूजिशियन से जुड़े क्वेश्चन या किसी बड़े गाने से जुड़े क्वेश्चन या ऑस्कर में कौन सा गाना पहुंचा, ऐसे करके क्वेश्चंस दिए जाएंगे और मतलब एक ऐसा राउंड होगा जिसमें आपके आंसर देने पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ना सिर्फ गाने पे। तो ये मैं इस बार से ही आप लोगों को बता देती हूँ, तो अगली बार इस राउंड के लिए भी तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच द बोथ ऑफ द टीम एंड प्रीति जी, आपने लास्ट में आके बहुत अच्छा गाया। तो आज थोड़ा सा नेटवर्क के लिए आरजे बिना आप लोगों से माफी मांगती है, एंड यस कांग्रेचुलेशंस, वन मैन नहीं थ्री मैन आर्मी टीम, तीनों लड़कों ने आके गाना गाया, कमल अमित एंड अनूप जी, और तीनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड सेम टाइम पे हमारी लड़कियों का तो जज्बा ही मतलब क्या कहने, हर वक्त आती है मतलब कहते हैं एनर्जी लेके आती हैं, और सच्ची बताऊं ना आप लोगों पे तो मैं पूरी मतलब दुनिया वार दूं, क्या कहना क्या कहना। और इसीलिए लड़कियों के लिए एंड लड़कों के लिए स्पेशल गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगी, वारू, द वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग फ्रॉम मिर्ज़ापुर। और इस गाने को मिर्ज़ापुर से ज़्यादा मैं अपने लिसनर्स के लिए डेडिकेट करना चाहूँगी। सच में वारू का मतलब होता है नज़र उतारूँ, एंड यस टुडे इज़ द डे दैट मैं अपने दोनों टीम के मेम्बर्स की नज़र उतारूँ, नज़र ना लगे। आप लोग सच्ची बहुत अच्छे, बहुत अमेजिंग है, क्या गाने गाते हैं, मतलब फटाफट क्या सोचते हैं, शब्द कितने बढ़िया निकालते हैं। एंड यस द टीम पावर ऑफ गर्ल्स इज फैंटेबुलस, लड़कियों की टीम की कहने की बात नहीं है, हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में रहती है। थैंक यू सो मच, ये वारू गाना मेरी दोनों टीमों के लिए। एंड यस ये बोनस पॉइंट वाला जो खेल था, अगर चाहते तो आप लोग पॉइंट्स कमा सकते और टीम जीत सकती थी लड़कियों की भी, लेकिन ये शब्द अजंता, मुझे नहीं पता गाना, लास्ट टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम मैं कहूँगी कि लड़कियों की टीम से मैं ज़रूर सबसे पहले अजंता से गाना सुनूंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन बॉयज़ टीम, स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन टू द नो जी, क्या बात है अनूप जी, क्या बात है।

सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो फॉर माय शिव विद्यार्थी सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं डेफिनेटली रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून एवरीवन, वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल है पब्लिक? सब बढ़िया ना? एवरीथिंग इज ऑल राइट? नो, होना भी चाहिए, जरूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले अगर हम हाल चाल पूछ ही रहे हैं, सलाम दुआ कर ही रहे हैं, तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पूरी की पूरी महफिल अभी 9:30 बजे तक एकत्रित रहेगी और हम एक दूसरे के दिलों की बात को सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली, माय गॉड, खोलो ना अपनी फरमाइशी की गठरी को, टटोलो ना एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा और लगा दो ना हमारी प्लेलिस्ट में हजारों लाखों करोड़ों चांद। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपकी, और यह आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी। कैसे हो दोस्तों, क्या है हाल चाल? वेलकम इन योर शो। अनुष्का श्रावस्ती से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, शशि सिंह जी गोंडा से, राजेश कुमार जी मालवे नगर गोंडा से, मोहित मालवे नगर गोंडा से, सबलु सावंत मुंबई से, उषा कश्यप जी गोंडा से, और राजेश कुमार जी सिंचाई विभाग गोंडा से, निधि कश्यप सीतापुर से, राजू सीतापुर से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, विजय रावत, मीनू कश्यप सीतापुर से, आपका भी स्वागत है, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, अनूप मिश्रा जी गोंडा से, जेके शाह, सुरेश कुमार जी चौक से, निबजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, आप सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम इन योर शो। और चलिए एंजॉय करते हैं बिना बिना बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। सुदिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि पहली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की। उनको सुनना है गाना ओ माय गॉड हाउसफुल का। सो एंजॉय करते हैं मीका सिंह और सुनिधि चौहान की इस बुलंद आवाज में, ये बहुत ही बुलंद सा गाना, ये सुपर डुपर हिट हाई एनर्जी हाई बीट नगमा सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। नमस्ते गीता श्रीवास्तव जी फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड। आहा ओहो

0: सा हमने एंजॉय किए हैं मिका सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में हाउसफुल का ये धन्नो गाना हमारे धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। चलेंगे लेकिन उसके पहले धर्मेश त्रिपाठी का कुछ कहना है, सुनते हैं इनका कहना है कि आपकी पसंद का कोई जवाब नहीं, आप जैसा कोई लाजवाब नहीं, जनाबे अली गाने की फरमाइश पूरी की आपने, आज सिंपल जी आपके इस प्यार का कोई हिसाब नहीं, दिल से शुक्रिया आपका और आपका भी दिल से शुक्रिया। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आवाज विकास, गोंडा से रवि और नागेश्वर धाकड़ इंडिया से आपका भी स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सोनिया तिवारी की, गोंडा से सोनिया तिवारी को गोंडा से सुनना है गाना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे आहा से। एंजॉय करेंगे एक बार फिर से मिका सिंह की आवाज में एक बुलंद गाना, सलमान खान का गाना, अनुष्का शर्मा का गाना, सुल्तान का गाना, सिर्फ और सिर्फ सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आहा ओहो दिल मेरा जैसे कोई डिश एंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था। अच्छा
1: जैसे

0: लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। हमने एंजॉय किया सोनिया तिवारी की फरमाइश पर, मीका सिंह की आवाज में सुल्तान पिक्चर का ये गाना। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों स्वागत करते हैं दादा यादव का बजाज चीनी मिल गोंडा से। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से, और अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना जुगनी जुगनी, वो भी डीजे रिमिक्स वाला गाना, बॉलीवुड डांस मिक्स वाला गाना, एकदम पार्टी एंथम के अंदाज में, इको साउंड के साथ में हम एंजॉय करेंगे अनुष्का की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। सो हमारे लिसनर्स ने ठान लिया है कि आज के दिन भैया इनको एकदम से रिलैक्स होके नहीं बैठना है, बैक टू बैक पार्टी वाले गाने आ रहे हैं। क्या बात है, किसी के घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है क्या, कहीं पार्टी शार्टी चल रही है क्या, कहीं दाल मखनी और कहीं ये पनीर के जो भी कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर बने हुए हैं क्या, या फिर पनीर भुर्जी बनी हुई है क्या, ओह माय गॉड, या फिर हलवा बना हुआ है क्या, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, किसी भी चीज़ का हलवा हो भाई, हलवा तो हलवा होता है, या फिर कोई खीर, या फिर कोई रायता, ओह माय गॉड, जस्ट सेलिब्रेशन, सिर्फ एंटरटेनमेंट और पेट पूजा नहीं, नथिंग एनी काम दूजा। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, मींस अनुष्का की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: हो मेरे माही दा रंग,
0: ओह
1: सुनहरा लगे है।
0: अच्छा जी, अब माही लोग सुनहरे भी लगने लगे हैं, कमाल की बात है।

दिल काले, ओ माय गॉड, हमने एंजॉय किया है ये गाना अनुष्का की फरमाइश पे, जो कि श्रावस्ती से ये बुलंद गाना हमने एंजॉय किया है, या वर्जन वाला पार्टी एंथम वाला गाना अनुष्का की फरमाइश पे बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों शशि सिंह जी की, उनको सुनना है कुमार सानू की आवाज में नगमा। सो एंजॉय करते हैं एक सूदिंग सा, रिलैक्सिंग सा, आई मीन रोमांटिक सा गाना सिर्फ और सिर्फ शशि सिंह जी की फरमाइश पर। और इनको सुनना है गाना धड़कता था पहले दिल मेरा, अब क्या नहीं धड़कता है। सो एंजॉय करेंगे अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में कर्तव्य पिक्चर का ये नगमा सिर्फ और सिर्फ शशि सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: तो दोस्तों हमने एंजॉय किया ये गाना शशि सिंह जी की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना गोरे हाथों पे ना जुलम करो। से एंजॉय करेंगे मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ।
1: गोरे हाथों

गोरे हाथों पे ना जुल्म करो, हाजिरी ये बंदा हुक्म करो। एंजॉय किया है हमने मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में। मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर ये नगमा एंजॉय करते हैं। हमारी आज की अगली फरमाइश दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवीय नगर गोंडा से। मोहित को मालवीय नगर गोंडा से साजन चले ससुराल पिक्चर का गाना एंजॉय करना है, गाना सुनना है। सो कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में एंजॉय करते हैं गोविंदा और करिश्मा कपूर का ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, सिर्फ और सिर्फ मोहित की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो दोस्तों, ये फरमाइश थी मोहित की मालवे नगर गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप की गोंडा से, और उषा कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना सब कुछ सीखा हमने, सीखी ना होशियारी। सो एंजॉय करते हैं अनाड़ी पिक्चर का ये ओल्ड इज गोल्डन नगमा उषा कश्यप की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। सब कुछ सीखा।

सच है दुनिया वालों कि हम है अनाड़ी, हमने एंजॉय किया है ये नगमा उषा कश्यप की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राजेश कुमार की, सिंचाई विभाग गोंडा से। राजेश कुमार को सिंचाई विभाग गोंडा से सुनना है गाना तू प्यार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता। तो अक्षय कुमार, रवीना टंडन का ये गाना अलका याग्निक, सोनू निगम की आवाज में हम इंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। आप लोग चैट बॉक्स में इतना ज्यादा खाना पीना की बात कर रहे हो कि आपकी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल की पेट में चूहे कूदने लगे हैं दोस्तों। स्टे ट्यून्ड।

बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही मजेदार गाना हमने एंजॉय किया है दोस्तों, हमारे राजेश कुमार जी की फरमाइश पर, जो की है सिंचाई विभाग से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू की सीतापुर से। राजू को सीतापुर से सुनना है, गाना आने वाली है मिलन की घड़ी। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ राजू की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया ये गाना सिर्फ और सिर्फ आने वाली है मिलन की घड़ी राजू की फरमाइश पे जो की है सीतापुर से। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में निधि कश्यप की सीतापुर से, और निधि कश्यप को सुनना है गाना आवाज हमारी इसी वादी में रहेगी। एंजॉय करते हैं ये गाना इसी फरमाइशी गीत के। उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से जाके पेट पूजा कर लेना, फिर आके हमारी फरमाइश की महफिल में आनंद लेना और अपने घर पर विश्राम करना। स्टे ट्यून्ड।

0: तुम्हें चाहने की आदत सी हो गई है, तुम्हें चाहने की आदत सी हो गई है, माफ करना थोड़ी हिमाकत हो गई है। नियत तो तुमसे दोस्ती की थी मगर, नियत तो तुमसे दोस्ती की थी मगर, खामखा तुमसे मोहब्बत सी हो गई है। सो एक बार फिर से इस्तकबाल और स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। और अब इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है कार्तिक कश्यप की, गोंडा से। कार्तिक कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना मेरी मर्जी। सो एंजॉय करते हैं गैम्बलर पिक्चर का ये गाना, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं
1: चाहे वहाँ जाऊँ, गोरे को मैं कहूँ कला, जीजा को मैं बोलू साला, नदी को मैं बोलू नाला, चाबी बिना खोलू ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो बोलना नहीं, मुझे समझाना मत झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही।

फरमाइश थी कार्तिक कश्यप की गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है विजय रावत की। विजय रावत को सुनना है गाना कल हम जिससे। सो इंजॉय करते हैं अनुराधा जी की आवाज में ये नगमा सिर्फ और सिर्फ विजय रावत की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, उदालक शर्मा मनकापुर से। स्टेट

हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। जेके शाह को सुनना है गाना आसमान से आया फरिश्ता। से एंजॉय करते हैं जेके शाह की फरमाइश पर मोहम्मद रफी की आवाज में। ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आसमान से आया फरिश्ता, हमने एंजॉय किया मोहम्मद रफी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। चलते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मीनू कश्यप की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना मैं तेरे मन की मैं ना होती। से एंजॉय करते हैं ये हाउ रोमांटिक गाना हलचल पिक्चर का, काजोल और अजय देवगन का, सिर्फ और सिर्फ मीनू की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

था, अब हमने एंजॉय किया है ये हलचल का बहुत ही रोमांटिक सा गाना। अब एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आश्रम मिश्रा जी की लखनऊ से, और उनको सुनना है गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो सच में आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो सच में बेईमान है, जो लोग मिंगल हैं उनके तो क्या पूछने। स्टे ट्यून्ड।

मौसम बड़ा बेईमान है, हमने एंजॉय किया ही बहुत ही खूबसूरत सा गाना लोफर का एंजॉय करते हैं। हमारी आज की अगली फरमाइश है आवाज विकास गोंडा से रवि की, उनको सुनना है गाना माता की चौकी। सो एंजॉय करते हैं ये गाना सिर्फ और सिर्फ आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर।

शर्माइश थी आवाज विकास गोंडा से रवि की नाउ लेट्स गो टू होने वाली डिमांड की तरफ। आज की अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों नागेश्वर धाकड़ की और दादा यादव की बजाज मिल गोंडा से। दादा यादव और नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर हम इंजॉय करेंगे ये दिल वालों की बस्ती है और इसी के साथ अब लेना चाहूंगी अलविदा। सो दोस्तों बस यही तक कहना चाहूंगी कि लेकिन इसी के साथ में उदालक शर्मा का कहना है कि आज उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है, मनीष पाल जी पिता बने हैं जो कि मऊ से हैं, तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ दी जाए। सो बहुत सारी बधाइयाँ आपके लिए और इनका इनकी फरमाइश थी कि एक सोहर को प्ले किया जाए विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज अब वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा लेने का। सो मनीष पाल जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ और आप के आपका बच्चा ऐसे ही उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े और आप उसको हमेशा ऐसे खिलते हुए खेलते हुए देखें और खुश रहें। सपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समर स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं कल। इसी के साथ में जेके शाह का कहना है कि तेरी मुस्कान में जो नूर है, तेरी मुस्कान में जो नूर है वो इस पूरी दुनिया में कई दूर है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, एंजॉय करते हैं ये वाला।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी

0: इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9286-9976-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं और रेडियो गणेश 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। और आज दिन हमारा नहीं होता, आज तो दिन आपका होता है। जी हाँ, आज तो आप होते हैं श्रोता और हम बन जाते हैं वक्ता। जी हाँ, और जी इसी के साथ ही साथ मेरे पास कोई फ़ोन आ चुका है, देखते हैं कौन मेरे साथ। हेलो,
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: जी नमस्कार
1: सर, मैं अर्चना।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है, मतलब आपको नहीं पहचानेंगे तो गोंडा में कहाँ रह पाएंगे, जिंदगी में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा आहार ही वही है, मतलब सुबह उठकर हम वही खाते हैं।
1: जी
0: जी चना, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: जी जी, आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, ईश्वर की अनुकंपा, माता पिता का आशीर्वाद। बहुत अच्छा लगा कि आज हमारी बोहनी बहुत अच्छी होने वाली है। तो मतलब आज आपसे क्या सुनने वाले हैं?
1: सर मैं गाऊंगी आज अरिजीत सिंह का एक सॉन्ग, भीगी भीगी सड़कों पे तेरा इंतजार करूं।
0: हाँ क्या बात है, और उसके बाद हम आपसे सुनेंगे नजरिया।
1: नजरिया आप क्यों सुनते हैं बार बार?
0: क्योंकि मतलब पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जिसने भी गाया है वास्तव में उससे अच्छा आप गाते हैं।
1: स्टार्ट करें?
0: जी जी निसंदेह निसंदेह।

0: हरे।
1: क्यों जब आप गाती हैं तो कोई गाना खत्म हो जाता है, इसका अफसोस रहता है मुझको। हेलो,
0: जी सर,
1: हमने कहा जब आप कोई गीत गाती हैं तो वो खत्म हो जाता है तो उसका बड़ा अफसोस होता है मुझको। मैं चाहता हूँ कि वो गीत चलता रहे चलता रहे चलता रहे, आप गाती रहे और गाती रहे।
0: ऐसी भी कोई बात नहीं है।
1: नहीं, ऐसी बहुत प्यारी बात है और भाई बहुत प्यारा, क्या बात है, तू मेरा सनम हुआ रे, क्या बात है। तो भाई हम नजरिया तो सुनेंगे आपसे
0: जी जरूर।
1: जी। और आपको बताएं कि मतलब जो बहुत ही प्रतिभा के धनी है श्री तेजनाथ शुक्ल जी, सबसे पहले आपको चरण स्पर्श, और उन्होंने कहा नाइस सिंगिंग, मतलब बहुत ही प्यारा गाया
0: थैंक यू
1: आपने
0: सो मच लिसनर्स।
1: जी। तो फिर नजरिया हो जाए,
0: जी बिल्कुल।
1: बिल्कुल हो जाए।

0: एक ही दिल है कितनी बार जीतेंगे आप,
1: थैंक यू
0: मतलब अगर
1: सर, थैंक यू
0: सैकड़ों
1: सो
0: दिल
1: मच।
0: होते तो कुर्बान कर देता इस आपकी इस गजल पर तो कुर्बान। मतलब ये गीत, ये गजल या तो फिर उन्होंने ही गाई जिन्होंने गाई, और उसके बाद फिर अर्चना जी ने ही गाई, बीच में कोई नहीं गाया।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है। और हम नहीं, ये बात बहुत ही प्यारी हमारी गायिका है श्रीमती सविता शास्त्री जी चरण स्पर्श करते हैं, उन्होंने भी लिखा है, नाइस सॉन्ग, बहुत प्यारा गाती हैं आप, बहुत प्यारा गाती हैं। और आज मैं बहुत सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि आज आपको गोंडा सुन रहा है, कुछ आसपास के ज़िले सुन रहे हैं, और एक दिन आपकी आवाज़ पूरे भारत में सुनी जाएगी।
1: थैंक यू सो मच सर,
0: बहुत अच्छा लगा अर्चना जी आपको, बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: जी प्रणाम, जी प्रणाम जी। आप देखते हैं कौन हमारे साथ पुनः फिर। हेलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: सर, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
2: कैसे हैं सर आप?
0: जी आपका आशीर्वाद।
2: जी जी सर, पहचाने सर?
0: अब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है ये वही है जिन्होंने हमको भारत का विश्व कप दूसरी बार जितवाया था।
2: यस सर।
0: जी, महेंद्र सिंह धोनी उर्फ माही।
2: जी जी जी सर,
0: मैं सही हूँ ना?
2: यस सर, आप बिल्कुल सही हैं।
0: जी, कैसी हैं आप?
2: सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: आशीर्वाद आपका।
2: जी सर, सर मेरा आशीर्वाद सर आपका आशीर्वाद है तो मैं ठीक हूँ।
0: नहीं नहीं, मतलब कन्याओं का आशीर्वाद होता है ना, अब तो नौलाद भी आने वाली है।
2: जी सर, तो सर आज क्या सुनना चाहेंगे, गाना या कविता?
0: नहीं, गाना सुनाएंगे।
2: गाना, ओके सर। तो सर आज थोड़ा हम लोग भक्ति मूड में चलते हैं।
0: जी।
2: कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, एक माया लिया जब घनी रात था,

तक सुनता हूँ उसका जीवन समय जाता है, सुनता हूँ उसका जीवन

0: क्या बात है, दिले तस्वीर है यार, जब भी गर्दन झुकाई मुलाकात कर ली, पता ढूंढने की आवश्यकता कहीं नहीं है, अगर रब हृदय में नहीं है तो कहीं नहीं है।
1: ये तो बहुत ही सही बात आपने बोली है
0: जी। मुझको लगता है कि अगर वहाँ है तो हर जगह है, और वहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है।
1: जी जी सर, अगर हृदय में नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है।
0: कहीं भी नहीं।
1: जी सर, तो एक कविता है जो मैंने अभी खुद से लिखी है।
0: जी जी, क्या बात है,
1: तो उसको मैं सुनाऊं?
0: जी जी जी।
1: सन्नाटे में बैठा हूँ, कोई पास नहीं है, दिल में हलचल है पर कुछ एहसास नहीं है।
0: क्या बात।
1: चाय रखी है मेज पर, चाय रखी है मेज पर, धुआं उठ रहा है, मैं खुद से ही बातें करूं, वक्त कट रहा है।
0: क्या बात है।
1: भीड़ तो बहुत देखी, मेले भी देखे, ये भीड़ तो बहुत देखी, मेले भी देखे, पर सुकून तो बस अकेले में ही देखी। ना कोई शिकायत है, बस खुद से ही मिलने की एक है।
0: क्या बात है, क्या क्या गहरी बात कह दी आपने, बस खुद से ही मिलने की हसरत है। क्या बात है।
1: तो ये एक्चुअली मैं बहुत अलोन बैठी हुई थी, तो उस टाइम मैं अपने मूड में बैठी हुई थी, तो उसको मैंने बहुत शांति से ही लिखा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने।
1: जी सर, थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको।
1: जी सर, थैंक यू सर।
0: ये हमारे साथ भाई माही जी रही, और हमारे साथ जेके शाह जी हैं। भाई वेलकम जी, आपका भी खैर मकदम अभिवादन, वंदन और नमन। और हमारे साथ विजय रावत जी हैं, नमस्कार सर जी, आपको भी नमस्कार। और जेके शाह, दर्द वही देता है जिससे उम्मीद सबसे ज़्यादा हो। अरविंद जी हमारे साथ हैं, शुभ संध्या जी, आपको भी शुभ संध्या। और अब चलते हैं, देखते हैं भाई कौन है हमारे साथ, और रूबरू होते हैं उनसे। श्री तेजनाथ शुक्ल जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको। श्रीमती सविता शास्त्री जी हैं, पुनः चरण स्पर्श आपको। और अमित यादव ने लिखा है, इतना जी कदम, मैं बहराइच से हूँ, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत मैम जी, और लगातार लिखते रहिए, शुभकामनाएं। क्या बात है। और यही कहा जाता है कि एक कवि, एक कवि की लेखनी को पहचानता है और उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं। जी हाँ, तो यही तो आपकी असली पहचान होती है, कि मतलब आप चाहते हैं कि, और हमें आश्चर्य है कि आज हमारे दादा अभी तक नहीं दिखाई पड़े हमको। भाई श्रीमती सविता शास्त्री जी, जिनके बिना अपूर्ण है वो, नहीं तो अब तक लिख कर आ गया होता शुभ संध्या मनु, और अभी वो संदेश लगता है हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। फिलहाल हम चलते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ।
2: हेलो।
0: हेलो
2: सर जी, नमस्कार।
0: हाँ जी सर जी, क्या बात है, बहुत बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी।
2: नहीं ऐसा नहीं है सर, फोन इंगेज जा रहा था।
0: अच्छा, फोन नहीं, हम पिछले बुधवार की बात कर रहे थे, मतलब एक हफ्ता हो गया।
2: हाँ सर, पिछला थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाते हैं सर, इसी चक्कर में नहीं हो पाता सर।
0: नहीं, जान लीजिए कि बड़ी उतनी शिद्दत से इंतजार भरत ने नहीं किया होगा भगवान राम का 14 वर्षों तक।
2: नहीं सर, धन्यवाद आपको कि आपने इतना हमारा इंतजार किया।
0: जी जी जी जी। और भाई विश्व के सबसे गहरे महासागर है अर्थात प्रशांत जी हमारे साथ हैं।
2: जी जी सर, पहले आप सर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके सर, हम पहले बिटिया का गाना सुनते हैं।
0: हाँ क्या बात है, हमारी बिटिया रानी आ गई है, क्या बात है।
3: हेलो
0: जी, चरण स्पर्श जी, अब आप हमको मत मस्ती कीजिए, कुछ दिन बाद नवरात्रि आने वाली है, तो आप हमको आशीर्वाद दीजिए। जी कहिए, खुश रही है?
3: खुश रही
0: जी। और कैसी हैं आप?
3: अच्छे हैं सर।
0: एग्जाम्स अच्छे हो गए आपके?
3: हाँ हो गए।
0: रिजल्ट आ गए?
3: रिजल्ट अभी आने बाकी है।
0: नंबर पता चल गए?
3: हाँ नंबर पता चल गया।
0: सब कुछ ठीक ठाक है?
3: हाँ अच्छा है।
0: पापा नाराज तो नहीं है?
3: नहीं।
0: बस यही बहुत अच्छी बात है कि नंबर आ जाने के बाद माता पिता नाराज ना हो, तो समझिए बच्चों की सबसे बड़ी खुशी वही है। तो तन्वी जी, आज आपसे हम क्या सुनने वाले हैं?
3: आज पलक मुच्छल का एक सॉन्ग है, कौन तुझे, वो
0: सुनूंगा। आह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारा गीत।
3: जी शुरू करूं?
0: जी जी निसंदेह।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है एकदम। मतलब मुझे वही याद आ गया। और मैं आपको एक बात बताऊं
0: जी,
1: जो मेरे रिंगटोन में मतलब प्लेबैक में जो गीत चलता है, आपने कभी नोटिस किया है?
0: नहीं।
1: ये वही गीत है जिसको आपने गाया है, लेकिन उसको किशोर कुमार गुनगुना रहे हैं। यकीन न हो तो सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिए, आपको सुनाई पड़ रहा है
0: जी।
1: अब बताइए ये धुन वही है कि नहीं?
0: वही है।
1: क्या बात है। और आज आपने बहुत प्यारा गाया।
0: हम
1: कैसे लिखते हैं बैराइज से कि नाइस सिंगिंग, बहुत बहुत खूबसूरत गाया आपने जी। अब चलते हैं उनकी तरफ। जी जी, क्या बात है भाई। कहीं क्या बेटी को संगीत की शिक्षा दिला रहे हैं आप, लगता है?
2: देखिए सर, ऐसा है
1: जी
2: कि मेरा ये मानना है, हालांकि शिक्षा तो देना ही चाहिए और शिक्षा दिलाना चाहिए, और हर लोग लगभग प्रयास भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा असली स्तर पे वही गेन कर पाता है जिसकी स्वयं की लालसा हो शिक्षा गेन करने की।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर अंडे के अंदर बच्चे बनने के गुण है तो मुर्गी उसे सेकर अंडा बच्चा निकाल देगी। और अगर
2: मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे के लिए कोई स्कूल मायने नहीं रखता, कोई छोटा बड़ा स्कूल नहीं होता। जिस बच्चे के अंदर अपने पढ़ने की क्षमता नहीं होगी, जो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, उसको दुनिया के किसी भी बड़े स्कूल में लिखा दिया जाएगा, वो नाम वो कहीं सक्सेस नहीं हो पाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये इस बात से मैं शत प्रतिशत सहमत हूं।
2: और जो बच्चा मतलब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे समाज में सेट है, मैंने देखा है कि जो छोटे से स्कूल से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिए हैं।
1: तमाम सारे प्राइमरी के बच्चे
2: ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो बहुत बड़े स्कूल से आके और बहुत गलत दिशा में चले गए हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: तो शिक्षा का सबसे बड़ा स्तर मेरा मानना यही है कि अपना ललक होनी चाहिए।
1: और मुझे लगता है कि आपकी बेटी को आपसे अच्छा इंस्पिरेशन कहीं मिल नहीं सकता, और आपकी माता जी स्वयं बहुत अच्छा गाती हैं, तो आपके घर में तो स्कूल खुद ही मौजूद है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: नहीं, आपकी माता जी बहुत प्यारा गाती हैं और आप इतना प्यारा गाते हैं तो बेटी को कहीं और जाने की जरूरत है नहीं
2: जी। सर, आज हम आपको सर एक मोहम्मद रफी जी का गाना सुनाने वाले हैं।
1: हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
2: आपके हसीन रुख पे आज बड़ा नूर है,

घटा से जय से छन रही सुबह, सुबह की धूप है

0: क्या बात है भाई, आज बड़े रोमांटिक मूड में आपने गाया, और इतना ही नहीं, तारीफ आपकी जो है वो बारिश हुई नहीं। अच्छा अच्छा ये हाँ, क्या बात है, क्या मतलब, आज आपने साबित किया कि आपसे पुलित नारायण नहीं है, मतलब आप रफी जी के गाद भी बहुत अच्छे गा सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल सर, कोशिश करते हैं सर।
0: लेकिन हम चार लाइन उदित नारायण जी की सुनना जरूर चाहेंगे आपसे।
1: उदित नारायण जी का आपका गाना सुनाते हैं सर। ये

0: लो। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, आपने तो हमें झूमने पर मजबूर कर दिया। और मैं ही नहीं, आशु मिश्रा जी भी कहती है भाई बहुत खूब गाया आपने, वाह वाह क्या बात है, वेरी नाइस। और गोंडा के किशोर कुमार, अब तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि ये लता जी के भी गीत बहुत अच्छा गा सकते हैं। श्रीयार के श्रीवास्तव ने लिखा है, वाह क्या बात है, मतलब ट्रिपल स्टार। मतलब क्या
0: धन्यवाद आप लोगों को।
1: नहीं नहीं, वास्तव में भाई, भाई वास्तव में आप महासागर है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस।
1: आपकी प्रतीक्षा शनिवार को भी रहेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर
1: जी। प्रणाम
0: प्रणाम प्रणाम।
1: यहाँ देखते हैं भाई हमारे साथ और कौन जुड़ चुका है। हेलो,
2: नमस्कार।
1: जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। मतलब दर्द कुमार जी आ चुके हैं हमारे साथ। कैसे हैं आप? प्रणाम।
2: प्रणाम, ठीक है भैया।
1: हाँ, मतलब बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। और कैसे हैं आप?
2: और ठीक है।
1: तो आज
2: और ये जो है
1: जी,
2: बारिश के ऊपर गीत है।
1: हाँ, बारिश आज हुई भी है, बारिश के ऊपर गीत भी है जी।
2: इत्तेफाक है कि ये गीतकार आनंद बख्शी है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक के आ रहे हैं।
1: क्या बात है।
2: और गाया इसको लता रफी, जितेंद्र और लीना चंद्रवर्कर के ऊपर फिल्माया गया
1: है। और राजेश कुमार सिंह ने पहले ही आपको प्रणाम कह दिया है।
2: नमस्कार भैया, नमस्कार
1: जी।
2: इत्तेफाक है कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दिवाली के दिन पैदा हुए थे।
1: हाँ, क्या बात है।
2: इसलिए उनका नाम
1: जी। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो हेलो, हेलो
3: हेलो
1: जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़ अब नहीं आ रही। हेलो, अब आप बोलिए।
3: तो शुरू करते हैं।
1: जी जी जी जी।
3: हाय रे हाय, नींद नहीं आए।
1: क्या बात है।
3: दिल में तू समाए आया, प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। हाय रे हाय, नींद नहीं आए। दिल में तू समाए आया, प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। कोई रोक ले अगर गम न कर, कोई रोक ले अगर गम न कर। मुझे तो लग रहा है डर क्यों, मगर रुस सुना रही है प्रेम की कहानियां। हाय रे हाय, मस्त घटा छाए, आग प्यास न बुझाए, आग सी लगाए आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। हो आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना।

ने दिल से क्या कहा, क्या पता। दिल ने दिल से क्या कहा, क्या पता। जरा सा मेरे पास आ क्यों भला, और तुझे मैं दे दूँ प्रेम।

हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो जी हाँ, ये कुछ नेटवर्क लगता है कि बारिश की वजह से अब व्यवधान डला। और भाई राजेश कुमार सिंह लिखते हैं, भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। और श्री आर के श्रीवास्तव ने लिखा है भी, एक सुपर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। वास्तव में भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बारिश का ये मौसम और उसके ऊपर से ये कातिलाना गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: चरस पर
1: गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।
0: अरे अरे सर,
1: खुश रहिए खुश रहिए।
0: जी जी, आप हमको आशीर्वाद दिया कीजिए।
1: और बताइए,
0: आपका आशीर्वाद।
1: नहीं, बिल्कुल आशीर्वाद हमेशा है, तो कहने की बात है।
0: जी जी जी जी, वो हम महसूस करते हैं।
1: देखिए, कल्चर होता है कि भाई, अब जब हमने कॉल किया है तो मेरा ही होता है कि भाई गुड इवनिंग वगैरह किया जाए।
0: अरे नहीं नहीं,
1: सभी लोग,
0: बस आप
1: सभी लोगों को गुड इवनिंग हमने कहा है
0: भाई। जैसे आपकी आवाज पहुंचती है, मैं जान जाता हूँ ये गोंडा के किशोर कुमार बोल रहे हैं।
1: अरे सर, आप तो ये आपका बड़प्पन है, और जो है हमने कहा कि आज बुधवार है, अभी लौटे हैं, तुमने कहा लाओ याद वाद करके एक आध गाना उना गा दे प्रोग्राम को। हमारी आवाज ठीक आ रही है ना?
0: अरे क्रिस्टल क्लियर, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आपकी आवाज गूंज रही है।
1: चलिए, तो समय न गवाया जाए और दो चार लाइन जो याद है वो सुना देते हैं।
0: ठीक है,
1: तो आज रफी साहब का सुना रहे।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है।
1: सुनिए। तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला

जाएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं

0: है और सहारा लिया था बाहों का, वो शमा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। और सुना दें, हेलो
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पगला कहीं का
0: एक स्टैंजा और याद है, सुना दें।
1: जी जी

0: मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, आज तो आप पगला कहीं के मोहम्मद रफी साहब बन गए।
0: अरे नहीं, बस थोड़ा बहुत शौक है, वही एंजॉय करते रहते हैं।
1: नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी से हम बहुत प्रभावित हैं। मतलब जिस उम्र में लोग जीने की उम्मीद छोड़ते हैं, वहां से आपने जीना शुरू कर दिया है।
0: अरे चलिए सर, अब मिलिएगा तो बहुत सी बातें आपको बताएंगे।
1: जी जी, मतलब बहुत
0: चलिए ठीक है,
1: प्रतीक्षा
0: लोगों को। हाँ जी,
1: प्रतीक्षा है कि आपसे बहुत प्यारी सी मुलाकात हो हमारी।
0: नहीं नहीं, होगी होगी, जल्दी होगी, थोड़ा इधर कुछ काम में उलझे हैं।
1: जी जी
0: ठीक है, आप थोड़ा दूसरे को मौका दीजिए, टाइम भी कम है।
1: जी क्षण स्पर्श,
0: खुश रहिए, खुश रहिए।
1: जी हाँ भाई, तो ये हमारे साथ श्री आर के श्रीवास्तव जी रहे, और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। और फिर देखते हैं भाई, अब चलते हैं और देखते हैं कौन हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: हाँ नमस्कार भैया।
1: जी नमस्कार, अरे आप सुरेश कुमार ना कहा कीजिए, आप कहा कीजिए दर्द कुमार।
2: तभी हमारा वो गीत कनेक्ट हो गया, वो पूरा नहीं सुना पाए।
1: अरे कोई बात नहीं, मतलब पूरा अब सुनाएंगे आप। तो क्या सुनने वाले हैं आपसे हम?
2: रफी क्या
1: जी? जी हेलो हेलो हेलो,
2: आवाज नहीं आ रही है?
1: आवाज पूरी आ रही है, आप सुनाइए।
2: अच्छा।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय,

0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
1: लेता जो पखेरू में मैं रख लेता मोती के दाने देता सीने से रहता लगाए याद न जाए बीते दिनों जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए तस्वीर छिपा के रख दूं जहां जी जाए तस्वीर उनकी छिपा के रख दूं जहां जी जाए मन में बसी है मूरत मन में बसी है मूरत लेकिन जी न मिटाए कहने को है वो पराए याद न जाए बीते दिनों की जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल

बहुत प्यारा गीत गाया आपने, बहुत प्यारा। अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी हाँ, तो ये हमारे साथ थे हमारे श्री दर्द कुमार और सुरेश कुमार जी। तो आप जाइए भाई, हमारे पास 5 मिनट शेष हैं और ये 5 मिनट जो शेष हैं वो बहुत विशेष हैं। आशु मिश्रा जी हमारे साथ हैं लखनऊ से। बता दें सर जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सब जगह क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। जी हाँ, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। तो कहा जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और अश्री आर के श्रीवास्तव ने जिक्र लिखा है, बहुत खूब सर जी। और सुशील यादव जी को बहुत दिन के बाद देख पा रहा हूँ मैं, रिश्ते निभाई लेकिन अपनी कीमत खोकर नहीं।

जी भाई, हम चाहेंगे कि ये जो हमारे पास अब 4 मिनट शेष हैं, ये बहुत विशेष हैं, इसका उपयोग कर लिया जाए पूरी तरीके से। जे के शायद लिखते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या बात है, क्या बात कही। और भाई, श्रीमती सप्ता शास्त्री ने वादा किया था कि बुधवार तक वो एकदम ठीक हो जाएंगी और प्रयत्न करेंगी, तो उनकी उस कोशिश की भी प्रतीक्षा है हमको। अब देखते हैं भाई, अब आज का कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है और देखते हैं कि इस कार्यक्रम को आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। आप सभी हैं भाई, हमने कभी आज तक जेके साहब, और जी हाँ, अमित यादव जी, आपको बता दूं कि नंबर है, नोट कर लीजिए, 6393316429। एक बार पुनः नोट कर लीजिए, 6393316429। आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं बहराइच से, और आपको अगर रेडियो का नंबर नहीं पता है, जी हाँ, तो आपका दूरभाष क्रमांक यही रहेगा हमेशा, 6393316429। और जी हाँ, चलते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ जी हैं। लेकिन इसके पहले कि हम देख सके कि कौन है, फ़ोन स्वतः कट गया भाई, नेटवर्क की समस्या है। और जिसने भी किया है उनसे करबद्ध निवेदन है कि एक बार पुनः कर लें। और ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये गीत हमको सुशील यादव जी सुनाने जा रहे हैं, हम जहाँ तक हमको उम्मीद है, क्योंकि आज तो भाई, आज तो आप ही गाते हैं और हम सुनते हैं। तो देखते हैं, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, 10:28, ये स्वतः फोन कट जा रहा है भाई, क्यों कट रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और

0: जी बिल्कुल, देखते हैं कौन है मेरे साथ। हेलो हेलो
1: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
0: हेलो,

0: बड़ी खुशियाँ बता रही हैं कि आप जन्मत लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बाहर गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो 9.6 FM, ये गोंडा ही नहीं अब बन चुका है हम सभी के दिलों की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: गोंडा शहर की धड़कन, मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी फलक तक चल। काव्या और आदित्य की शादी को अभी कुछ ही घंटे हुए थे। घर में मेहमानों की आवाजाही और शादी की रस्मों की चहल पहल पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि काव्या अपने कमरे में रखे बैग में कपड़े रखने लगी। आदित्य भी बिना कुछ कहे अपना सामान बैग में जमा रहा था। काव्या की उंगलियां कपड़े तय कर रही थीं, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने एक पल के लिए आदित्य की तरफ देखा, आदित्य ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। अचानक आदित्य की छोटी बहन नेहा ने कमरे की खिड़की से ये सब देख लिया। नेहा घबरा कर बाहर भागी और अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ भैया और भाभी अपना सामान पैक कर रहे हैं। आदित्य की माँ चौंक गई, उन्होंने हैरानी से पूछा, सामान पैक कर रहे हैं? शादी को तो अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, कहीं दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? नेहा ने पता नहीं कि मुद्रा में सिर हिलाया। उसने कहा, मुझे नहीं पता माँ, लेकिन भाभी रो रही हैं और भैया भी बहुत परेशान लग रहे हैं। आदित्य के पिता भी तुरंत कमरे की ओर बढ़े। कुछ ही क्षणों में पूरा परिवार कमरे के बाहर खड़ा था। आदित्य की माँ ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, बेटा आदित्य दरवाजा खोलो, क्या हुआ है? कहीं काव्या से कोई बात हो गई है क्या? अंदर से कुछ क्षण तक कोई आवाज नहीं आई। फिर आदित्य ने दरवाजा खोला, सामने पूरा परिवार खड़ा था। आदित्य की माँ की नजर काव्या की नम आंखों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत काव्या का हाथ पकड़ लिया, भावुक होकर पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। काव्या कुछ बोल पाती उससे पहले आदित्य ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन चेहरे पर एक सैनिक जैसी मजबूती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ हमें जाना होगा। आदित्य की माँ ने घबरा कर पूछा, कहाँ जाना होगा? आदित्य ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है फलक तक चल। अब तक आपने सुना काव्या और आदित्य की शादी अभी कुछ ही समय पहले हुई थी और एयरबेस से उनका बुलावा आ गया था। अब आगे कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आदित्य के पिता ने गंभीर आवाज में पूछा, कोई इमरजेंसी है क्या? आदित्य ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ पिताजी, हमें अभी निकलना होगा। तभी काव्या ने अपने आंसू पोंछे। उसने परिवार की ओर देखा और कहा, माँ आप चिंता मत करिए, हम दोनों बिल्कुल सही सलामत वापस आएंगे। आदित्य की माँ ने हैरानी से काव्या की ओर देखा और पूछा, तुम भी जाओगी? काव्या ने बिना झिझक के जवाब दिया, हाँ माँ, आपको तो पता है ना, मैं भी वायुसेना में हूँ। परिवार को जैसे एक साथ कई बातें समझ में आ गईं, जिसे वो शादी के बाद अपने बेटे के लिए नए जीवन की शुरुआत करते देखना चाहते थे। वो लड़की भी देश की वर्दी पहनती थी। दोनों की शादी हुई थी, लेकिन दोनों की पहली पहचान सैनिक की थी। आदित्य की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने काव्या को गले लगा लिया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बहू बनाकर घर में लाया था, लेकिन आज मुझे तुम पर बेटी से भी ज्यादा गर्व हो रहा है। काव्या ने अपनी सास के पैर छुए और बोला, माँ आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आदित्य ने अपने पिता के पैर छुए। आदित्य के पिता ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, देश तुम्हें बुला रहा है, जाओ बेटा, लेकिन वापस जरूर आना। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की आंखें तुम्हारा रास्ता देखेंगी। आदित्य ने पिता की आंखों में देखा और कहा, पिताजी मैं पूरी कोशिश करूंगा। काव्या और आदित्य ने अपना सामान उठाया और घर से निकल पड़े। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते आदित्य की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। वो अपने बेटे और बहू को रोते हुए विदा नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने हाथ उठाकर दोनों को आशीर्वाद दिया। आदित्य की मां ने कहा, तिरंगे की शान हमेशा ऊंची रखना। काव्या ने दृढ़ आवाज में कहा, मां हम अपनी आखिरी सांस तक इसकी शान रखेंगे। दोनों एयरबेस पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि स्थिति सामान्य नहीं थी। एक विशेष सैन्य अभियान की तैयारी चल रही थी। आदित्य को मुख्य हवाई मिशन का हिस्सा बनाया गया था, जबकि काव्या को एयरबेस की ऑपरेशनल टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों जानते थे कि आने वाले कुछ घंटे उनकी जिंदगी के सबसे कठिन घंटे हो सकते हैं। काव्या ने आदित्य को एक सुरक्षित कमरे के बाहर रोक लिया। उसने आदित्य की तरफ देखा। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पति पत्नी के रूप में उनकी जिंदगी शुरू हो चुकी थी, लेकिन देश ने उन्हें फिर सैनिक बना दिया था। काव्या ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और बोला, आदित्य एक बात कहूं? आदित्य ने कहा, कहो। काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारी अभी अभी शादी हुई है, शायद हमें साथ बैठकर बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी,
शायद मुझे तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी के सपने देखने चाहिए थे, लेकिन मुझे गर्व है कि हमारी जिंदगी की पहली परीक्षा देश के लिए हो रही है।

ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है फलक तक चल। अब तक आपने सुना शादी के तुरंत ही बाद काव्या और आदित्य का एयरबेस से बुलावा आ गया। दोनों ने घर वालों से विदा ली और एयरबेस पहुंच गए। वहां पहुंचकर टीम को ज्वाइन करने से पहले दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। अब आगे आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, काव्या मुझे डर लग रहा है। काव्या कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने आदित्य का हाथ और कसके पकड़ लिया और बोला, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आदित्य ने पूछा, अगर मैं वापस नहीं आया तो? काव्या की आंखों से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर आ गया, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, तो मैं तुम्हें रोकर याद नहीं करूंगी, मैं तुम्हें गर्व से याद करूंगी। आदित्य ने उसकी ओर देखा। काव्या ने कहा, तुम मेरे पति हो, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम देश के सैनिक भी हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। आदित्य ने भावुक होकर कहा, तुम इतनी मजबूत कैसे हो सकती हो? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, मैं भी इसी मिट्टी की बेटी हूं। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे, फिर काव्या ने कहा, एक वादा करो। आदित्य ने पूछा, क्या? काव्या ने कहा, वापस आने की पूरी कोशिश करना। आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, और तुम मेरा इंतजार करना। काव्या ने कहा, आखिरी सांस तक। अभियान शुरू हुआ। आदित्य ने अपने फाइटर विमान में बैठने से पहले कंट्रोल रूम की तरफ देखा। वहां काव्या अपनी ड्यूटी पर थी। दोनों की नजरें मिली। काव्या ने बिना कुछ कहे हाथ उठाकर उसे सलाम किया। आदित्य ने भी सलाम किया। कुछ ही क्षण बाद विमान ने उड़ान भर ली। कंट्रोल रूम में सभी अधिकारी अपनी अपनी स्क्रीन पर नजरें टिकाए हुए थे। काव्या भी ऑपरेशनल स्क्रीन के सामने खड़ी थी। विमान अपने निर्धारित क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। कुछ समय बाद पहला अपडेट आया। एक अधिकारी ने कहा, पहला विमान लक्ष्य क्षेत्र के पास पहुंच चुका है। काव्या ने गहरी सांस ली। कुछ क्षण बाद दूसरा अपडेट आया। ऑपरेटर ने कहा, मिशन प्रगति पर है। काव्या की नजर लगातार स्क्रीन पर थी। तभी अचानक एक विमान से संपर्क कमजोर होने लगा। ऑपरेटर ने कहा, सर पहले विमान का सिग्नल अस्थिर हो रहा है। कमरे में मौजूद अधिकारी सतर्क हो गए। कुछ ही क्षणों बाद संपर्क पूरी तरह टूट गया। काव्या के चेहरे का रंग बदल गया। उसने खुद को संभाला। काव्या ने दृढ़ आवाज में कहा, घबराइए मत, वैकल्पिक संपर्क प्रणाली जांचिए। कुछ समय बाद खबर आई कि विमान सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल चुका है, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। आदित्य का विमान लक्ष्य क्षेत्र में पहुंच चुका था। कंट्रोल रूम में सभी की नजरें स्क्रीन पर थीं। एक अधिकारी ने कहा, आदित्य के विमान से मिशन कंफर्मेशन मिल गया है। काव्या ने आंखें बंद करके राहत की सांस ली। उसके होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी स्क्रीन पर आदित्य के विमान का सिग्नल अचानक गायब हो गया।
कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है फलक तक चल। अब तक आपने सुना शादी के तुरंत बाद ही एयरबेस से बुलावा आने पर काव्या और आदित्य घर वालों की इजाजत लेकर चले गए। वहां पहुंचकर आदित्य विमान लेकर चला गया और काव्या कंट्रोल रूम में थी। आदित्य के विमान का सिग्नल नहीं मिल रहा था। अब आगे काव्या कुछ क्षण तक स्क्रीन को देखती रही। उसने धीमी आवाज में पूछा, सिग्नल वापस क्यों नहीं आ रहा? ऑपरेटर ने कहा, मैडम हम दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। काव्या ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके सामने उसका पति नहीं था, वहां सिर्फ स्क्रीन का एक सिग्नल था और अब वो सिग्नल भी गायब था। समय बीतता गया, काव्या अपनी जगह से नहीं हिली। एक अधिकारी ने उसके पास आकर कहा, काव्या आप चाहे तो कुछ देर आराम कर सकती हैं। काव्या ने सिर हिला दिया, नहीं सर मैं यहीं रहूंगी। अधिकारी ने कहा, हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं। काव्या ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया, सर इस वक्त मैं उनकी पत्नी नहीं हूं, मैं उसकी टीम का हिस्सा हूं। जब तक उसकी लोकेशन नहीं मिलती मैं अपनी ड्यूटी से नहीं हटूंगी। अधिकारी कुछ नहीं बोले। काव्या की आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसने अपने मन में बस एक ही बात दोहराई, आदित्य वापस आएगा। कुछ समय बाद फिर घोषणा हुई कि लापता विमान की तलाश तेज कर दी गई है। एयरबेस पर चिंता बढ़ती जा रही थी। काव्या के मन में बार बार आदित्य की कही हुई बात घूम रही थी, तुम मेरा इंतजार करना। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, मैं इंतजार कर रही हूं आदित्य, तुमने कहा था वापस आओगे, अब अपना वादा निभाओ। इसी बीच एक तकनीकी टीम ने दूर के क्षेत्र से एक कमजोर सिग्नल पकड़ लिया। ऑपरेटर ने उत्साहित होकर कहा, सर एक सिग्नल मिला है। सभी अधिकारी तुरंत स्क्रीन की तरफ बढ़े। एक अधिकारी ने पूछा, किस विमान का? ऑपरेटर कुछ क्षण तक स्क्रीन देखता रहा, फिर उसकी आवाज बदल गई। ऑपरेटर ने कहा, सर ये आदित्य के विमान का सिग्नल हो सकता है। काव्या की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर बाद रनवे की तरफ से एक आवाज सुनाई दी। दूर आसमान में एक विमान दिखाई दे रहा था। काव्या ने स्क्रीन से नजर हटाकर बाहर देखा। विमान धीरे धीरे एयरबेस की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आता गया काव्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर उतर गया। विमान रुकते ही काव्या दौड़कर वहां पहुंची। आदित्य कॉकपिट से बाहर निकला। उसके चेहरे और हाथ पर चोटें थीं। वर्दी खून से सनी हुई थी, लेकिन वो जिंदा था। काव्या ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। कुछ क्षण तक दोनों कुछ नहीं बोल पाए। काव्या रो रही थी, लेकिन ये डर के आंसू नहीं थे, ये उस इंतजार के खत्म होने के आंसू थे। आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, मैंने कहा था ना तुम्हारा इंतजार बेकार नहीं जाने दूंगा। काव्या ने रोते हुए कहा, और मैंने भी कहा था ना कि तुम्हें वापस आना ही होगा। आदित्य मुस्कुराया और कहा, मुझे रास्ते में कई बार लगा कि शायद मैं वापस नहीं पहुंच पाऊंगा,
काव्या ने उसकी ओर देखा और पूछा, फिर तुम वापस कैसे आए? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी आवाज याद थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। आज की कहानी है फलक तक चल। अब तक आपने सुना, शादी के तुरंत बाद ही एयरबेस से बुलावा आने पर काव्या और आदित्य को ड्यूटी वापस ज्वाइन करनी पड़ी। मिशन के दौरान आदित्य का विमान बार बार सिग्नल छोड़ दे रहा था। कंट्रोल रूम में काव्या की सांसें अटकी हुई थीं और फिर एक पल ऐसा आया जब आदित्य विमान सहित सुरक्षित लैंड करके वापस आ गया। काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब आगे काव्या ने हैरानी से पूछा, मेरी आवाज? आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने कहा था ना कि डर को कमजोरी मत बनने देना, वही बात मेरे दिमाग में घूमती रही। काव्या ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। काव्या ने कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। कुछ समय बाद आदित्य को उसकी बहादुरी और असाधारण साहस के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मानों में से एक से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में जब आदित्य से पूछा गया कि कठिन मिशन के दौरान उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन थी, तो उसने बिना किसी झिझक के कहा, मेरी पत्नी काव्या। सामने बैठे सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। आदित्य ने आगे कहा, काव्या सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, वो खुद भी देश की सेवा करती है। जब मुझे लगा कि शायद मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा, तब भी उसने मुझे कमजोर नहीं होने दिया। उसने मुझे रोका नहीं, बल्कि मेरा हौसला बढ़ाया। कुछ क्षण के लिए आदित्य रुका और बोला, उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, देश के सामने हमारी मोहब्बत छोटी नहीं है, बल्कि हमारी मोहब्बत ही हमें अपने फर्ज के लिए और मजबूत बनाएगी। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गर्व था। आदित्य ने मंच से नीचे उतरकर सबसे पहले काव्या की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया। उनकी शादी को भले ही कुछ ही समय हुआ था, लेकिन उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता उसी दिन समझ लिया था। शादी सिर्फ दो लोगों को एक दूसरे का जीवन साथी नहीं बनाती, कभी कभी शादी दो ऐसे सैनिकों को जोड़ देती है जो एक दूसरे की कमजोरी नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। काव्या ने आदित्य को युद्ध भूमि में जाने से नहीं रोका। आदित्य ने काव्या के सपनों को अपने सपनों से छोटा नहीं समझा। दोनों ने एक दूसरे से सिर्फ प्यार नहीं किया, दोनों ने एक दूसरे के कर्तव्य, साहस और देश प्रेम का सम्मान किया। क्योंकि सच्चा प्रेम वो नहीं होता जो किसी को उसके फर्ज से रोक दे, सच्चा प्रेम वो होता है जो मुश्किल वक्त में हाथ पकड़ कर कहे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और शायद यही भारतीय नारी की सबसे बड़ी शक्ति है। वो अपने पति से प्रेम भी करती है और देश के प्रति उसके कर्तव्य का सम्मान भी करती है। वो आंसू बहाती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हीं आंसुओं को अपनी ताकत बना लेती है। धन्य है वो प्रेम जो देश के काम आए, धन्य है वो पत्नी जो अपने पति को रोकने के बजाय उसका हौसला बढ़ाए, और धन्य है भारत की वो नारी जिसके दिल में परिवार के लिए ममता और तिरंगे के लिए सम्मान दोनों एक साथ बसते हैं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी फलक तक चल। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे, होगी सुरों की बरसात। हो जाइए, थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर भारतीय सिनेमा का सब आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाकया हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे आपको।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं, वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिमझिम रिमझिम। संगीत सम्राट आरडी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिमझिम रिमझिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

0: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।
1: ओ सजना

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया, सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है, पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यहीं कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं, अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा। संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन्न पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।

0: ये मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।